किशोरदा की आवाज, आरडी बर्मन का म्यूजिक और गुलशन बावरा के बोल। कुछ गाने जो है ना वो 5 मिनट में ही हमारे दिल की सारी बातें जाहिर कर देते हैं, और जब शब्द ना मिले तो बस गाने प्ले करके सुना देना चाहिए, वैसे भी समझने वाले समझ जाते हैं। खैर, सुबह के 5:31 हो चुके हैं। आकाशवाणी के दिल्ली का FM गोल्ड चैनल पर मैं हूँ पंकज, आपके साथ शो का नाम है भोर सुहानी। और जून जुलाई की गर्मी बस सह लीजिए, फिर तो अगस्त में सावन और त्योहार शुरू हो जाते हैं। इस गाने के बाद आपसे मिलता हूँ, और बस ऐसे गानों का मसाले लेते रहिए, झूमते रहिए।

देवकी पंडित की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना था फ्रॉम द मूवी साज। और जून की गर्मी में आम तो देखिए अभी बाजार में तो बहुत आए हुए हैं और खा भी रहे हैं लोग, और पूरा बाजार जो है वो आमों से सजा हुआ है। और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में आमों की बड़ी प्रशंसा की थी, और यहां तक कि मिर्जा गालिब भी ना आम खाने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने आम पर एक फारसी में प्रसिद्ध मसनवी यानी आम की तारीफ दर सिफत अबाह में लिखा है कि आम में बस दो खूबियां होनी चाहिए, एक तो वो बहुत मीठे हों और दूसरा बहुत सारे हों। तो गर्मी के फलों और शरबतों का आप लुत्फ लीजिए। बाकी अगले घंटे सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे अर्पण बबीता शर्मा के साथ, और इस गाने के साथ ही मुझे यानी पंकज को दीजिए बहुत सुहानी से अनुमति। दोबारा जल्दी मिलूंगा, सुनते रहिए 24 घंटे हर दिन आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और आम जैसे मीठे मीठे गानों का मजा लीजिए। नमस्ते।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है और आइए आज हम आपको बता दें आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आज रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण, जिसमें बबीता शर्मा आपके साथ होंगे। सुबह 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान बाल कांड भाग 80। सुबह 7:10 पर बबीता शर्मा के साथ आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। म्यूजिकल दिल लगी, इस कार्यक्रम को सुबह 8:45 पर बबीता शर्मा के साथ आप सुन पाएंगे। सुबह 9:10 पर इसी कार्यक्रम को म्यूजिकल दिल लगी को आप सुबह 9:10 पर नाज शेख के साथ सुन पाएंगे। सुबह 10:30 का समय रहेगा रिक्वेस्ट बेस्ड कार्यक्रम का दिल का मेल बॉक्स।

नाज शेख इसमें आपके साथ रहेंगी। सुबह 11:10 पर आप सुनेंगे तस्वीर कार्यक्रम, जिसमें आज आप लद्दाख पर आप जानकारी सुनेंगे। दोपहर 12:10 पर महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे, जिसमें आज कई विषय होंगे। 90 सालों का हम सफर आकाशवाणी फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत होगी, साथ में लू से बचाव, रखे सेहत का ध्यान, योग का महत्व और अन्य विषयों पर आप जानकारी सुन पाएंगे गीत और संगीत के साथ। इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी शबनम। दोपहर 1:10 पर शबनम के साथ आप सुनेंगे कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज की अभिनेत्री हैं सारिका। दोपहर 2:30 का समय रहेगा कार्यक्रम उन्नत किसान का। इस कार्यक्रम में आज विशेषज्ञ होंगे राज सिंह अध्यक्ष सदस्य विज्ञान संभाग। विषय रहेगा स्मार्ट कृषि, नवाचार खेती में डिजिटल क्रांति। इस कार्यक्रम की संचालक होंगी शबनम। दोपहर 3:10 पर रूमी मलिक आपके लिए लेकर आएंगे रिक्वेस्ट शो मन भावन। दोपहर 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम AIR@19 के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग। इस कार्यक्रम में रूमी मलिक आपके साथ होंगी और अतिथि रहेंगे डॉक्टर ऋतु राजपूत, पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी। शाम 4:10 पर रूमी मलिक के साथ आप सुनेंगे फिल्मी सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम। शाम 4:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम परिक्रमा। शाम 5:10 पर रूमी मलिक आपके साथ होंगी कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। इस कार्यक्रम में आप 90s के एरा के गाने भी सुन सकते हैं। रूपा धवन आपके लिए लेकर आएंगी शाम 6:10 पर कार्यक्रम सदाबहार गीत, जिसमें आप अपनी पसंद के गीत गाने सुनेंगे और साथ ही साथ दिल्ली शहर की जानकारी और मौसम की जानकारी और अन्य जानकारियों का आप ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। शाम 7:10 पर रूपा धवन आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम स्पेशल बायलिंगुअल प्रोग्राम्स सीरीज 12 इयर्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका विषय रहेगा मध्यम वर्ग कल्याण। तो ये थी आज आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कुछ रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की

0: किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 4-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including ministers of foreign affairs, economy and finance, and science and technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit. The discussions will be focused on exploring avenues of cooperation in the areas of trade, investment, energy, renewable energy, healthcare, and pharmaceutical. External Affairs Ministry said that the Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. Senior Congress leader D.K. Shivakumar will be sworn in as the Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavar Chand Gehlot will administer him the oath of office and secrecy at Lok Bhavan in Bengaluru at 4 p.m. Mr. Shivakumar's appointment comes days after Mr. Siddaramaiah stepped down as Chief Minister, paving the way for his deputy to take over the top post.

बुधवार की इस सुहानी सुबह में आइए अपने इष्टदेव की आराधना करते हैं अर्पण के जरिए। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज साथ हूं मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

प्रशंसापरक और उत्साहवर्धक शब्द बोलकर यदि किसी में नवजीवन संचार किया जा सके तो निसंदेह ये सहायता बड़े से बड़े धन सहयोग की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान सिद्ध हो सकती है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

वक्त हुआ है 6:27 आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को लाया नहीं जा सकता, मगर हौसले और विश्वास से अब आने वाले हर पल को खूबसूरत जरूर बनाया जा सकता है।

विचारों को पढ़कर छोड़ देने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। विचार तभी बदलाव लाते हैं जब विचारों को जीवन में उतारा जाता है।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं,

0: साम्प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मू वर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचित मार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े, तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्च न्यायालयस्य पञ्च न्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, संजीव सचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्च न्यायालयीय न्यायविद समितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्ति विषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पंचायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य द्विचत्वारिंशत् संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पंचायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां चतुस्त्रिंशत् ग्राम पंचायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च अष्ट पंचायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्तुविभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामि दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा, चण्डीगढ, दिल्ली, छत्तीसगढ, झारखण्ड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्रान्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तरप्रदेशेषु तीव्रझंझावातेन सह गर्जनस्य तडित्पातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडावार्तासु, महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैण्ड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैण्डेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैण्डेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की दो दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की दो बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 4-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit. The discussions will be focused on exploring avenues of cooperation in the areas of trade, investment, energy, renewable energy, healthcare and pharmaceutical. Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavarchand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of the new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4 p.m. Mr. Shivkumar's appointment comes days after Mr. Siddaramaiah stepped down as chief minister, paving the way for his deputy to take over the post. West Bengal government will launch a major social welfare initiative, Annapurna Yojana, today. Chief Minister Suvendu Adhikari will formally inaugurate the scheme. The launch will be a massive synchronized event spanning the entire state. While the Chief Minister leads the central inauguration, beneficiaries of the Annapurna Yojana will participate virtually across all blocks, municipalities and municipal corporations. The centre has signed Memorandum of Understanding with 4 states under the Jal Jeevan Mission 2.0 to enhance safe drinking water supply across rural India. The agreement has been signed with Arunachal Pradesh, Jharkhand, Tamil Nadu, Nagaland and Union Territory of Puducherry. The Ministry of Jal Shakti said the reform-linked MOU promotes a Gram Panchayat-led, service-based and community-centered approach to rural water governance. The initiative aligns

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गोल्ड सुप्रभात में आप सभी का स्वागत है। सुबह की इस खूबसूरत वेला में बेहतरीन गीतों की सौगात लिए मैं हूं आपके साथ बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

0: कहाँ है
1: कहाँ प्यार है तुमसे वो जाना कहाँ प्यार है तुमसे।
2: गर्मियों के मौसम में तापमान थोड़ा सा भी कम होता है ना तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। तापमान 44 डिग्री के पार जा रहा था लेकिन अब तापमान में हल्की गिरावट महसूस की जा रही है। बात करें आज के तापमान की तो आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सूर्य उदय हो चुका है 5:25 पर और सूर्यास्त का वक्त होगा 7:12 पर। चलिए इसी मौसम को एंजॉय करते हैं और सुनते हैं फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: खुशी एक महक की तरह होती है। जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे, दूसरों को कैसे महका सकते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात। और आइए अब सुनते हैं बातों बातों में फिल्म का ये गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: उठ सबके कदम, देखो रंग

la la la la la la la. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। इजाजत दीजिए बबीता को और आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: मतभेद बारिश के समान होने चाहिए जो बरस कर समाप्त हो जाएं, लेकिन प्रेम और विश्वास हवा के समान होना चाहिए जो दिखाई भले ना दे लेकिन हमेशा महसूस किया जा सके और आपके साथ रहे। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड हे देयर लिसनर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। राइज एंड शाइन एंड गेट सेट फॉर अनदर इंटरेस्टिंग एडिशन ऑफ आज सवेरे व्हिच इज अबाउट टू बिगिन फ्रॉम आवर स्टूडियोज। मुकेश, लेट अस स्टार्ट विद सम न्यूज हेडलाइंस।
0: जी बिल्कुल। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। विदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आधारित आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
1: The center has signed memoranda of understanding MOUs with 4 states.

0: under the Jal Jeevan Mission 2.0 to enhance safe drinking water supply across rural India. The agreement has been signed with Arunachal Pradesh, Jharkhand, Tamil Nadu, Nagaland and the Union Territory of Puducherry. The Minister of Jal Shakti said the reform-linked MOU promotes a Gram Panchayat-led, service-based and community-centered approach to rural water governance. The initiative, aligned with the objectives of Jal Jeevan Mission 2.0, aims to ensure that every rural household has access to quality drinking water supply in adequate quantity on a regular basis through strengthened community participation.
1: और श्रोताओं, भारतीय दर्शन में अतिथि देवो भव की सद्भावना को अंगीकार करते हुए, जैसे कि भारत में विदेशी राजनयिकों का आना जारी है, इसी कड़ी में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 5 दिन की भारत की यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।
0: Senior Congress leader D.K. Shivakumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavarchand Gehlot will administer the oath of office in secrecy to Mr. Shivakumar and members of new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4 p.m. Mr. Shivakumar's appointment comes days after Mr. Siddaramaiah stepped down as Chief Minister, paving the way for his deputy to take over the top post. The development marks the culmination of a prolonged power tussle within the Karnataka Congress, with Mr. Shivakumar long seen as the contender for the top post since the party's victory in the 2023 assembly polls.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित है और संविधान के रूप से गलत है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या वो चिकित्सा कारणों से समय से पहले सेवानिवृत्त होता है, तो सरकार परिवार के किसी सदस्य को उसके स्थान पर नौकरी देती है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी को शामिल नहीं किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एक महिला द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था जो एक मृतक व्यापारी की विवाहित बेटी है।
0: The Department of Higher Education has invited applications for the Prime Minister Research Chair PMRC Scheme 2026. The flagship national initiative aims to connect global Indian talent with India's scientific and innovation future. The scheme will link global Indian talent with the country's rapidly expanding research, development, innovation and technology ecosystem across 13 thematic areas of national priority, including advanced computing, semiconductors and cyber security. Detailed guidelines, eligibility criteria and application procedures are available on the PMRC portal.
1: और श्रोताओं, सरकार ने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
0: Indian nationals will no longer require an airport transit visa when travelling to a third country through German airports beginning today. German Embassy in India announced that the exemption will simplify travel for Indian citizens transiting through Germany on their way to other international destinations. The embassy described the decision as a reflection of the growing partnership between the two countries. It said the move underlines the German government's commitment to deepening ties between the two countries, facilitating the movement of people. The move is expected to benefit thousands of Indian travelers, including students, professional business travelers and tourists, who use German airports as transit hubs for

0: destinations across Europe, North America and other regions.
1: और अब एक खेल से जुड़ी खबर. तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है. इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया. इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. एलिस कैप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला. और अब रुक करते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों की खबरों का. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि 6 मई से राजधानी दिल्ली में संचालित मोबाइल हीट रिलीफ यूनिटों के माध्यम से अब तक 4 लाख से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई है. श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस दौरान 1 लाख लीटर से अधिक पेयजल वितरित किया गया है. इसके तहत लोगों को गर्मी से राहत के लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को तेज धूप से बचाने के लिए मेट्रो स्टेशनों जैसे नांगलोई, रोहिणी, पीराघड़ी और प्रमुख बाजारों में अस्थायी शेड स्थापित किए जा रहे हैं. मध्य जिले में इन शेडों के माध्यम से अब तक 5,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है. वहीं पश्चिमी जिले की अगर बात की जाए तो 920 लोगों को इस सुविधा का लाभ मिला है. मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे अत्यधिक गर्मी के समय में अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, ORS के घोल का सेवन करें और हीट वेव से बचाव संबंधी सभी सावधानियों का पालन करें. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने राजधानी में पानी से संबंधित समस्याओं के निपटान के लिए जल वितरण व्यवस्था में व्यापक सुधारों की शुरुआत की है. एक संवाददाता सम्मेलन में जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि ये सुधार जल के समान वितरण, पानी की कमी, पुरानी जल अवसंरचना के आधुनिकीकरण और शोधित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने पर केन्द्रित हैं. अगर बात की जाए मुंबई की तो मुंबई के निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित वित्तीय मांगों को जल्द समाधान मिलने की संभावना है. इस संबंध में हुई बैठक में 7वें वेतन आयोग के तहत अप्रैल 2016 से लंबित बकाया राशि सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई. राज्य में हजारों शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इन लंबित मुद्दों पर सरकार के अनुकूल निर्णय की प्रतीक्षा में हैं. इसके अलावा बृहन मुंबई नगर निगम अनाधिकृत 10 जून से अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त रेहड़ी पटरी वालों को QR कोड आधारित पहचान पत्र जारी करना शुरू करेगा. मुंबई में लगभग 10,000 लाइसेंस प्राप्त फेरी वाले हैं. शहर के प्रमुख इलाकों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए चलाए जा रहे नए अभियान के तहत निगम ने शहर भर में 20 ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां बहुत अधिक भीड़ भाड़ रहती है और जहां अनाधिकृत फेरी वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की जाएगी. अगर बात करें मुंबई से जुड़ी ही एक रेलवे संबंधी खबर का तो पश्चिमी रेलवे ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के अंतर्गत मुंबई के गोरेगांव और बोरीवली के बीच हार्बर लाइन के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्यों हेतु 86 करोड़ रुपए से अधिक की निविदाएं जारी की हैं. इसमें मिट्टी का काम, बड़े और छोटे पुलों का निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, रिटेनिंग वॉल जैसे कार्य शामिल हैं. अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का. तो पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का राज्य में शुभारंभ करेगी. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे. मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे. प्रत्येक ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे. राज्य सरकार ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. और अब रुक करते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का.
0: Yes, Mukesh, starting with news from Chennai, the Directorate of Private Schools has ordered all private nursery, primary matriculation, the CBSE and other board schools in the state must display their approved tuition fee details on their notice boards on or before June 5th. The schools must print and provide class-wise tuition fee details and student admission application forms. Instructions have been issued to inspect schools in their jurisdiction and ensure compliance and submit a report to the directorate before the 10th of this month. Photo evidence along with acknowledgement of compliance will be obtained from schools and

0: Promote healthier lifestyles, support sustainable cities and create a cleaner environment for future generations.
1: और श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में 40% लोग काम पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं?
0: Yes, of course.
1: ये संख्या विश्व में सर्वाधिक है। 12 जून 1817 को जर्मनी के मैनहेम में बैरन कार्ल वॉन ड्रेस ने दुनिया की पहली साइकिल पेश की थी। ये लकड़ी से बनी थी और इसमें पैडल, गियर या किसी प्रकार की कोई चेन नहीं थी। उन्होंने खुद को पहले एक पैर से और फिर दूसरे पैर से धकेला। उन्होंने इसे लाइफ मशीन यानी कि जर्मनी में चलने वाली मशीन कहा। और अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आजादी के बाद से ही साइकिल देश में यातायात व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा रही है। खासतौर पर 1960 से लेकर 1990 तक भारत में अधिकतर परिवारों के पास साइकिल ही थी। ये व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफायती साधन रहा। और अगर हम बात करें कि साइकिल से जुड़ी मेमोरीज की, तो अपने आप में सभी के पास, आपके पास भी, हमारे पास भी साइकिल से जुड़ी कुछ यादें होंगी, जिन्हें हम ऐसे देख सकते हैं कि शायद हम में से कुछ लोग बचपन में अपने माता पिता या अपने चाचा या अपने और भी अग्रजों के साथ आगे की सीट पर साइकिल में जो छोटी वाली लगी होती थी उस पर बैठकर साइकिल की यात्रा करते थे और अपने बचपन को आनंदित महसूस करते थे।
0: यू कैन स्टिल बाय बाइसिकल एंड स्टार्ट, ओके, स्टार्ट का मैं पेडलिंग फ्रॉम होम, ओके।
1: जी बिल्कुल।
0: ओके, नाउ लेट्स मूव टू सम हिस्ट्री नाउ।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, ये था सफर साइकिल का। अब बात करते हैं आज की तारीख यानी 3 जून क्यों है अपने आप में खास। आज की तारीख को भारत के इतिहास और भूगोल को बदलने वाले दिन के तौर पर याद किया जाता है। वर्ष 1947 में आज ही की तारीख को बरतानिया हुकूमत से भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे का ऐलान किया था। इस घटना को 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के तौर पर जाना जाता है।
0: 1818 मराठा वॉर्स बिटवीन ब्रिटिश एंड मराठा कन्फेडरेसी इन इंडिया एंडेड। 1844 द लॉस कन्फर्म्स स्पेसिमेंस ऑफ द ग्रेट ऑक वर किल्ड इन आइसलैंड लीडिंग टू द स्पीशीज एक्सटिंक्शन।
1: और 1918 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था।
0: एंड 1965 द फर्स्ट अमेरिकन स्पेस वॉक हैपेंड। एस्ट्रोनॉट एडवर्ड एच व्हाइट स्टेप्ड आउट ऑफ द जेमिनी 4 स्पेस क्राफ्ट कंप्लीटिंग द फर्स्ट एवर स्पेस वॉक बाय एन अमेरिकन। एंड 1985 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड अ 5-डे वर्क वीक फॉर इट्स सेंट्रल सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स।
1: और इससे पहले 1972 में देश के पहले आधुनिक युद्धक पोत नीलगिरी को देश को समर्पित किया गया था। 1994 की अगर बात करें तो भारत सहायता क्लब का नया नाम भारत सहायता मंच भी आज ही की तारीख को किया गया था।
0: So let's get to some personalities now, Mukesh, starting with Muhammad Ali, the legendary boxer known as the greatest, passed away this day in 2016. Of course, his legacy extends beyond the ring, as he was also a prominent social activist and the symbol of civil rights movement. And
1: श्रोताओं, आज भारत में दुग्ध क्रांति और जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है, उनके जनक वर्गीज कुरियन के साथ मिलकर इस महान विभूति ने देश में सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखी। इनका नाम है त्रिभुवन वनदास कृषि भाई पटेल। आज इनकी पुण्यतिथि है। वर्गीज कुरियन तथा त्रिभुवनदास पटेल ने मिलकर दूध के पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क तथा बच्चों के लिए मिल्क फूड का भारत में पहला संयंत्र स्थापित किया। ये दुनिया में ऐसा अनोखा प्लांट था जो भैंस के दूध को पाउडर में बदल सकता था, और इस तरह अमूल की स्थापना हुई। सामुदायिक नेतृत्व के लिए त्रिभुवनदास पटेल को वर्ष 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। वर्ष 1964 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: Hollywood actor Tony Curtis was born this day in 1925, popular Hanson actor who enjoyed playing a variety of roles, both comedies and drama. One of his daughters, of course, is Jamie Lee Curtis, who continues to be a popular actress, and also American poet from New Jersey. Allen Ginsberg took birthdays in 1926. His epic poem, Howl, 1956 is considered to be one of the most significant products of the Beat movement. Mahakavi G from Kerala, whose name was G. Shankar Kurup, was born this day, known as one of the greats of Malayalam poetry. He was the first recipient of the Gyan

भारत में लड़कियों के बाल विवाह की बड़ी चिंताजनक प्रथा थी। इन्होंने केंद्रीय असेंबली से इसे रोकने के लिए 1925 में एक बिल पेश किया, शारदा बिल के नाम से। ये प्रसिद्ध बिल सितंबर 1929 में पास हुआ और 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू किया गया। इस बिल को पास करने का श्रेय जाता है हरविलास शारदा को, आज उनकी जयंती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कुरीति को रोकने का काम उन्होंने ही किया था? आज भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास शारदा की जयंती है। हरविलास शारदा का जन्म 3 जून 1867 को अजमेर राजस्थान में हुआ। बाल विवाह प्रथा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बहुचर्चित शारदा एक्ट उन्हीं के नाम पर था। हरविलास जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के सचिव के रूप में भी काम किया। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदू सुपीरियोरिटी है। इस ग्रंथ में उन्होंने सम्प्रमाण सिद्ध किया कि इतिहास काल में सभी क्षेत्रों में हिंदू सभ्यता अन्य देशों से बहुत आगे थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं महाराजा कुंभा, महाराजा सांगा, शंकराचार्य और दयानंद, और लाइफ ऑफ स्वामी श्रद्धानंद दयानंद सरस्वती। उन्हें राय बहादुर और दीवान बहादुर की पदवियों से भी अलंकृत किया गया।

0: समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो कार्यक्रम आज सवेरे समाप्त करने की मुकेश और सुभद्रा को दीजिए इजाजत।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रूपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
6: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।

0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: लगभग 1 साल दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों

0: और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, एक महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं

0: को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं। विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें न विचारधारा की चिंता रहती है और न ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रूपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा, इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela Delcy Rodriguez will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
2: Our correspondent has filed this report.
4: India and Venezuela share friendly relations, particularly in the areas of energy and trade. The visit is expected to strengthen bilateral ties and deepen cooperation between the two countries across several sectors. The Venezuelan delegation will visit facilities related to the energy, pharmaceutical and automobile sectors. The visit aims to explore opportunities for collaboration and gain insights into India's technological and industrial capabilities. With Ishani and Dipendra, Tripti Srivastava, Akashvani News, Delhi.

0: Hindustan Times opens with the headline, CBSE Chairman, Secretary shunted amid outcry, while the Tribune adds, Government forms panel to probe on-screen marking. Pioneer reports, CBSE re-evaluation portal faces new cybersecurity challenges. Indian Express on its editorial page writes, Girls rewrite G-script, campus must keep pace. For the first time, more than 10,000 girls have qualified for admission to premier engineering institutions, including IITs. This year, G witnessed a striking improvement that has pushed the number of successful females up by almost 89% since 2019. In international news, Asian Age mentions Israel PM calls off Beirut strike after heated call with Trump, while the Pioneer reports Trump slams Netanyahu over Lebanon offensive. Times of India informs El Nino is rapidly developing and is set to impact global temperature and rainfall patterns under the headline World Meteorological Organization's El Nino Alert raises odds of severe impact on monsoon with 80% chance of onset during June-August period. And finally, under a piece titled Tigress Zenith Gives Birth to Four Cubs in Odisha Simlipal, the Hindu informs the translocation effort aimed at enhancing the genetic diversity of tigers in Odisha's Simlipal Tiger Reserve has reserved major boosting, adding a proud chapter to Odisha's natural resources and wildlife conservation efforts. With that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a five-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. And in women's cricket, host England beat India by 6 wickets in third and final T20 International to seal 3-match series to 1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपए माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजरकर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलाकवामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। अब खबरें तफसील से। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वो भारत वेनेजुएला के ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा बातचीत करेंगी। दोनों ममालिक तिजारत सरमायाकारी तवानाई काबिल तजदीद तवानाई हिफ्जान सेहत और दवा साजी समेत अहम शोबों में बाहमी तआवुन के इम्कानात का जायजा लेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के उमूर खारजा मईशत खजाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वजरा पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी मोहतरमा रोड्रिग्स भी के हमरा भारत पहुंचेगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: भारत और वेनेजुएला के दरमियान खासतौर पर तवानाई और तजारत के शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तहकम होने और मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। वजीर आजम के साथ बातचीत के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी तजारत और सरमायाकारी दवासाजी हिफजान सेहत नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वेनेजुएला का वफद तवानाई दवासाजी और ऑटोमोबाइल से मुतालिक शोबों से

0: जन आरोग्य योजना ने 43.52 करोड़ हेल्थ कार्ड्स बनाए हैं, जिससे सेहत की देखभाल के तहफ्फुज तक रसाई में इजाफा हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना स्कीम जन औषधि केंद्रों के जरिए 50% से 80% कम कीमतों पर मयारी जेनरिक अद्वियात फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर अद्वियात मार्केट के मुकाबले इंतहाई सस्ती कीमत पर दस्तयाब हैं।
1: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। डॉक्टर रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के लिए कराए गए इंतखाब में कामयाबी हासिल हुई है। उन्हें 99 वोट मिले, जबकि इस कसीर मुल्क निजाम के लिए कुब्रुस के खसूसी सफीर एंड्रिस काकोरिस को 91 वोट मिले। अकवामे मुत्तहिदा के आला मुजाकिराती पॉलिसी साज और नुमाइंदगी करने वाले इदारे के सरबराह के तौर पर उनकी 1 साल की मुद्दत सितंबर में शुरू होगी। ये सदारत अलग अलग खित्तों के पास बारी बारी रहती है और इस मुकर्रर उसूल के मुताबिक 81वें सेशन के सदर को एशिया बहरुल काहिल ग्रुप से मुंतखब किया जाना था। अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मुंतखबा सदर डॉक्टर रहमान ने कहा कि वह अपनी मुद्दत कार के दौरान इस इदारे का काम इंसानी हकूक पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए करेंगे और सभी रुकन मुल्कों को फाल रखेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सदर मुंतखब होने पर डॉक्टर रहमान को मुबारकबाद दी है। भारतीय शहरी जब जर्मन हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे मुल्क जाएंगे तो उन्हें आज से ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। भारत में जर्मन सिफारतखाने ने ऐलान किया है कि इस छूट से उन भारतीय शहरियों के सफर में सहूलत हो जाएगी जो जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे मुल्क जाते हैं। भारत ने अपने शहरियों के लिए ट्रांजिट वीजा को खत्म करने के लिए जर्मनी के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने कहा कि यह ऐलान इस साल जनवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है, जब जनाब फ्रेडरिक भारत के दौरे पर आए थे। वजारत ने कहा कि इस नए इंतजाम से दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग हासिल होगा। जम्मू कश्मीर में रियासती इंतखाबी कमीशन आज से आला सतह की 2 रोजा मीटिंग मुनाकिद करेगा। ये मीटिंग जिला इंतखाबी अफसरान और दीगर शख्सियतों के साथ की जाएगी, जिसका मकसद मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में पंचायत और जिला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रियासती इंतखाबी कमिश्नर शांत मनु इस मीटिंग की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और ब्लॉक तरक्याती काउंसिलों का कामकाज 9 जनवरी 2024 को रोक दिया गया था। बल्दियाती इदारों की मुद्दत कार 2 अक्टूबर 2023 और जिला तरक्याती काउंसिलों की मुद्दत कार 24 फरवरी 2026 को मुकम्मल हो गई थी। हुकूमत ने साल 2026 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यह बावकार अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अता किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तूफानी झक्कड़ की सूरत हाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने केरला और माहे में अगले 2 से 3 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कल तक अंडमान और निकोबार जजायर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और शिमाल मशरकी खित्ते में गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। खवातीन क्रिकेट में कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हेथर नाइट और एलिस कैप्सी की शानदार शराकतदारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की بہترین

0: खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खवातीन ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 18.3 ओवर्स में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं।

नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी, और आज साथ हूं मैं आपके बबीता।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं जयश्री अरोरा, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो की लत मुझे बिल्कुल बचपन से पड़ी थी। मेरी माता जी रेडियो प्रेस सुनने की बहुत शौकीन थी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं रेडियो आर्टिस्ट भी बन गई और प्रोग्राम किए, इतना कुछ सीखा। बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स निर्मला अग्रवाल, दीनानाथ जी, सत्येंद्र, शरद, शैलेंद्र जी, सुशील बैनर्जी, कमल दत्त, सुदर्शन जी, दानिश इकबाल,

इन सबके साथ काम करके इतना कुछ सीखा। और जब टेलीविजन के लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ ये आकाशवाणी की देन है। तो आज इस उपलक्ष्य पर हम सब इतने खुश हैं, और तरक्की करें आकाशवाणी, और इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

8:54 आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए मार्केट में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ई मोबिलिटी क्षेत्र में भी इसकी मांग बढ़ी है। इसलिए आईआईटी दिल्ली के कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम यानी सीआईपी ने एडवांस प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी शुरू किया है। 6 महीने के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम 23 अगस्त से शुरू होकर 21 फरवरी 2027 तक चलेगा। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपये भेजना शुरू किया जाएगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन भी करेंगी। इस सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वाली मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। लेकर हाजिर हूं म्यूजिकल दिल लगी, जहां ढेर सारी बातों के बीच एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक सॉन्ग, तो कुल मिलाकर माहौल होगा एकदम म्यूजिकल। और साथ में होगा आज का सवाल भी, जिसका जवाब आप देंगे कहां और कैसे ये भी सुनते जाइए। आज का पहला गाना मैं आपको सुनाऊं उससे पहले FM गोल्ड AIRDelhi@gmail.com पर आप करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज। आप भेजेंगे 9868687533 पर और फिर क्या करेंगे, झूम के नाचेंगे आप वहां और मैं यहां, क्योंकि सोना नहीं चांदी नहीं ना सही, लेकिन मैं और आप तो मिले हैं म्यूजिकल दिल्लगी में। तो लेट्स एंजॉय।

और अब चैन और सुकून जब मिल ही गया है तो फिर क्यों ना हो जाएं थोड़ा सा सीरियस, क्योंकि अब आने वाला है आपके लिए आज का सवाल। जी हाँ, आज आप मुझे बताएंगे कि तड़के सुबह आकाशवाणी पर बजने वाली मंगल ध्वनि में जो खूबसूरत शहनाई की धुन गूंजती है और जो एक तरह से आकाशवाणी की पहचान भी बन गई है, उस खूबसूरत और मशहूर धुन को किसने प्ले किया था? माने जो कुछ भी जानते हैं आप उस खूबसूरत धुन के बारे में सब कुछ लिख भेजिए fmgoldair@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप अगर खुला हुआ है फोन में तो कीजिए उसी का इस्तेमाल और जल्दी से भेज दीजिए वो नाम जो है आज के सवाल का सही जवाब। और हाँ, प्रोग्राम के एंड में अपना नाम सुने बिना कहीं मत जाइएगा, और अगर दिया किस्मत ने साथ और आपने सही वक्त पर मेरा फोन उठा लिया तो सीधे फोन लाइन पर भी हो जाएगी आपकी और हमारी बात। बाकी बातें होती रहेंगी आज के दिन यानी 3 जून के बारे में भी, और साथ में सुनते रहेंगे म्यूजिकल दिल लगी की प्लेलिस्ट में सजे एक से बढ़कर एक तराने जो मुझे यानी नाज को आपके लिए है बजाने।

अच्छा ये बताइए, आप में से किस किस ने साइकिल चलाई है? यकीनन सभी ने चलाई होगी, अभी ना सही पर बचपन में तो जरूर चलाई होगी। भाई मेरा हाल तो ये था कि जब तक मेरी खुद की अपनी साइकिल नहीं आ गई ना, तब तक बाकायदा बिजनेस डील करी है मैंने साइकिल चलाने के लिए। मतलब कि 1 रुपए के बदले कभी 2 तो कभी 3 चक्कर।

जैसी डील पक्की हो जाए। भाई कमाल का क्रेज था तब साइकिल चलाने का, नहीं बल्कि दौड़ाने का यूं कहिए। ये बात अलग है कि कई बार अपने घुटनों पर चोटें भी खाई हैं, लेकिन मजाल है जो साइकिल चलाने का क्रेज जरा भी कम हुआ हो। पर अफसोस कि आज जब हमारे एनवायरनमेंट को साइकिल की बेहद जरूरत है, तब हमारा क्रेज साइकिल को लेकर खत्म होता जा रहा है। देखिए फायदे क्या क्या हैं और कितने हैं साइकिल चलाने के, ये हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो साइकिल की इस जरूरत को महसूस करने की, और आज का दिन यानी 3 जून इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे यानी विश्व साइकिल दिवस, जो दुनिया भर में साइकिल चलाने के अनगिनत फायदों को याद दिलाने और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से मनाया जाता है। और इस साल यानी 2026 में इस खास दिन की थीम है हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना, यानी साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। तो बात बस इतनी सी है जनाब कि साइकिल चलाना सरल है, किफायती है, भरोसेमंद है और हमारे पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के लिए तो बेस्टम बेस्ट है। तो थाम लीजिए मेरे साथ अपनी साइकिल का हैंडल और एंजॉय कीजिए ये अगला गाना।

अच्छा, एक छोटा सा कंफ्यूजन मुझे आपका दूर करना है कि सवाल मैंने ये पूछा है कि मंगल ध्वनि आकाशवाणी की जो सुबह सुबह आप सुनते हैं उसमें शहनाई का स्वर किसका है, ये नहीं पूछा कि उस धुन को कंपोज किसने किया या वायलिन किसने बजाया। ये सारी जानकारी जो आप भेज रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आज के सवाल का जवाब नहीं है। दोहरा रही हूँ आपके लिए आज का सवाल। आपको बताना है कि आकाशवाणी में सुबह सुबह बजने वाली मंगल ध्वनि में शहनाई जो कि एक वाद्य यंत्र है, उसका स्वर किसका है, किसने उस वाद्य यंत्र को प्ले किया है, ये आपको बताना है।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

म्यूजिकल दिलगी में लगी है सुपर हिट सॉन्ग्स की झड़ी, जिसे एंजॉय कर रहे हैं आप मेरे यानी नाज के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर। और हम एंजॉय करें अगला तड़कता फड़कता गाना, उससे पहले मुझे आपको है कुछ बताना। देखिए, गर्मी जबरदस्त पड़ चुकी है, अभी फिलहाल राहत है थोड़ी सी और आगे जबरदस्त पड़ने भी वाली है, तो ऐसे में पानी की जरूरत और इसकी अहमियत हम सबको समझनी होगी, है ना? क्योंकि चौतरफा डेवलपमेंट के बावजूद अब भी हमारे देश में ऐसे कई इलाके हैं जहां पानी की किल्लत है। देश के साथ प्रमुख राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारत सरकार के सौजन्य से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित अटल भूजल योजना हमें यही सिखाती है कि कैसे पानी का सही इस्तेमाल करें और पानी का सही प्रबंधन कर उसे बचाए भी। क्योंकि देखिए, बात सीधी सी है कि भले ही हमारी पृथ्वी 71% नीली है यानी पानी से घिरी है, लेकिन हमारे पीने के लिए उसमें सिर्फ 1.69 यानी 1.69%, मतलब अब 2% भी पूरा नहीं है। ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल की यहाँ पर बात हो रही है, जिसे हम पीने लायक मीठा पानी भी कहते हैं और जिसका लेवल लगातार कम होता जा रहा है। अटल भूजल योजना के तहत पहले तो अलग अलग इलाकों का वाटर बजट तय किया जाता है और फिर उसी आधार पर जल सुरक्षा योजना तैयार की जाती है, मतलब कि कैसे पानी की आपूर्ति को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ पानी की मांग को भी नियंत्रित किया जाए। कुछ समझदारी भरे तरीकों को अपनाकर, जैसे ब्रश कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं या फिर बर्तन धो रहे हैं, तब भी पानी लगातार न बहाएं। नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। वॉशिंग मशीन में थोड़े थोड़े कपड़ों की जगह उसकी क्षमता के अनुसार कपड़े धोएं। और घर में अगर कहीं पानी की लीकेज है तो उसे बिना देरी तुरंत ठीक करवाएं। आरओ से निकलने वाले रिजेक्टेड वाटर को इकट्ठा करें, घर के दूसरे कामों में इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी, जब भी बारिश हो तो उसे थोड़ा सा जतन करके वापस उसके पानी को जमीन तक पहुंचाएं, यानी वाटर साइकिल को अपनी धुरी पर घूमने दें, उसमें रुकावट ना बने। और क्या करें, साथ में एंजॉय करें ये अगला ट्रैक भी।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

भारत के आखिरी वॉयसराय लॉर्ड माउंट बेटन ने आज ही के दिन साल 1947 में भारत के बंटवारे का ऐलान किया था, जो भारत के इतिहास और उसके भूगोल को भी बदलने वाला था। यही वजह है कि भारत के बंटवारे की इस घटना को 3 जून योजना या फिर माउंट बेटन योजना के तौर पर भी याद रखा जाता है, जिसके तहत भारत के विभाजन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान को सत्ता के हस्तांतरण का विवरण कैसे किया जाए ये तय किया गया था। 2 जून 1947 को कई दौर की बातचीत के बाद अगले दिन यानी 3 जून 1947 को माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह के साथ ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे और फिर यहीं से इस योजना की सिलसिलेवार जानकारी देश को मिली। बातों का सिलसिला बिल्कुल इसी तरह रहेगा आगे भी जारी, पर उससे पहले आ गई है अगला ट्रैक सुनने और उसे एंजॉय करने की बारी।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com।

0: म्यूजिकल दिल्लगी का जारी है सफर, जहां आपकी हम सफर हूं मैं यानी नाज। और अब चूंकि घड़ी ने बढ़ा दी है अपनी गति, तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल का सही जवाब और उससे जुड़ी कुछ और जानकारी भी, जो आप सबने इतनी मेहनत से ढूंढी है और हमें लिखकर भेजी भी है। तो जनाब, बिल्कुल सही हैं आप। भारत रत्न से सम्मानित, दुनिया भर में मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के हैं वो सुर, जिन्हें आप आकाशवाणी पर सुबह सुबह बजने वाली मंगल ध्वनि में सुनते हैं। एक खास रिकॉर्डिंग के जरिए उस्ताद जी ने साल 1957 में HMV के माध्यम से एक खास LP यानी लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड तैयार किया था, जिसमें सुबह और शाम के समय गाए जाने वाले अलग अलग 7 रागों को 3-3 मिनट की अवधि के लिए बजाया गया और फिर कुल 14 रागों का यही संग्रह आगे चलकर आकाशवाणी के साथ साथ हम सब के दिन की शुरुआत बन गई। और यही वजह रही कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक भी कहा गया। और चलिए अब जान लेते हैं वो सभी नाम जिन्होंने लिखकर भेजा बिल्कुल यही और सही जवाब आज के सवाल का। तो भाई, सबसे पहला जो जवाब आज आया वो आया राजेश कुमार जी का, जिनसे अभी हम कुछ ही देर में फोन लाइन पर बातें करेंगे। वो कर रहे हैं थोड़ा सा इंतजार। उससे पहले डॉक्टर मंजुषा उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, नवीन भाटिया मोतीनगर नई दिल्ली से ही, आशीष गायकर मुंबई से, कृष्ण कुमार गुप्ता भटीपुरा महोबा UP से, अनु बड़जात्या मुंबई से, अशोक कुमार शर्मा अलवर राजस्थान से, हेमा गुरुग्राम से, काव्या कन्नालवर महाराष्ट्र से, संतोष सक्सेना मुंबई से, अंशु भार्गव, प्रकाश गोगिया, इन्होंने भी दिया बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आज के सवाल का। और देखिए, राजा जी ने भी भेज दिया आपसे कुछ ही देर पहले बिल्कुल सही जवाब। जयप्रकाश दुबे साहब ने भी भेज दिया, और इसके साथ ही महेश अग्रवाल जी ने भी भेज दिया आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। और भी कई जवाब आए हैं, सुदर्शन मुखी जी हैं जिनमें शामिल, अमरजीत सिंह शामिल हैं, देवदत्त परसौलिया शामिल हैं, और कौन शामिल है, मनोहर लाल गांधी विजयनगर गाजियाबाद से। और अब देखिए, ज्यादा इंतजार मैं राजेश जी को नहीं करवा सकती हूँ, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया
0: जी। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कैसे दिन की शुरुआत करते हैं, आकाशवाणी उसमें कितना हिस्सेदार रहता है?
1: मैं 3 चीजें करता हूँ
0: जी।
1: सबसे पहले रेडियो खोलता हूँ, फिर मोबाइल चार्ज के लगाता हूँ।
0: अच्छा।
1: फिर ये हेडफोन चार्ज के लगाता हूँ।
0: वाह, क्या बात है
1: उठते ही।
0: कहीं कोई कमी ना रह जाए, है ना
1: जी। और मेरे को शुरू से ही आदत है समाचार सुनने की
0: जी।
1: अच्छा। मैं रेडियो पे बहुत विश्वास करता हूँ, इसी का ही समाचार सुनता आया हूँ बचपन से।
0: अच्छा, तो सिर्फ समाचार सुनते हैं या गानों के भी शौकीन है और हमें भी सुनना पसंद करते हैं?
1: गाने वाले फिल्में वगैरह मैं इतना शौक नहीं रहा, पहले था शुरू में, अब
0: अच्छा
1: नहीं है।
0: तो मतलब
1: लेकिन 10 बजे तक मैं सुनता हूँ, 10 बजे तक मैं रेडियो सुनता हूँ।
0: अच्छा, ओके।
1: एक्सरसाइज भी करता रहता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी दिन की शुरुआत आप करते हैं, सभी को इसी तरह से दिन की शुरुआत करनी चाहिए सर। और बताइए कुछ अपने बारे में कि आकाशवाणी सुनकर। और
1: मैं आकाशवाणी रेडियो बचपन से सुनता था
0: जी,
1: 75 से लगा लीजिए मैं लगाता सुन रहा हूँ। हमारे घर में रेडियो आया था, तो पिताजी हमारे बरामदे में लगा के सुनते थे हम सारे शाम को इकट्ठे रात को।
0: क्या बात,
1: मैं 11 बजे तक सुनता था।
0: अरे वाह,
1: समाचार सुनने के बाद फिर मैं सोने जाता था, उसी दौरान मैं पढ़ता भी रहता था।
0: वाह,
1: पढ़ाई चलती रहती थी।
0: बिल्कुल अप टू डेट रहते होंगे आप। तो गानों के आप बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है आपने बताया, लेकिन फिर भी कोई तो जी।
1: नहीं, गानों के शौकीन है, पुराने गानों के बहुत शौकीन हूँ मैं।
0: अच्छा,
1: पुराने गाने FM गोल्ड इसीलिए चुना है, उसमें पुराने ही गाने आते हैं।
0: तो बताइए फिर कोई एक ऐसा गाना जिसे आप बहुत पसंद करते हो, जिसे हम आपके
1: मैं क्या मेरे मेरे जितने भी जानने वाले हैं सभी को

0: है कि मेरे को एक ही गाना पसंद है, वक्त फिल्म का है,
1: अच्छा
0: मेरी जोहर जबी।
1: अरे वाह सर, बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है, तो सुनेंगे हम मन्ना डे साहब की आवाज में जरूर कुछ ही पलों में, लेकिन उससे पहले आपकी आवाज में सुनना तो बनता है सर, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए।
0: नहीं मैडम मुझे आता नहीं है
1: सर, थोड़ा सा, दो लाइनें तो बनती हैं सर।
0: ठीक है
1: जी।
0: मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक हंसी और मैं जवान,
1: क्या बात है,
0: कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
1: अरे वाह सर, इतना अच्छा तो आप गाते हैं, गाते रहिए, इसको कंटिन्यू कीजिए, अगली बार हम फिर आपसे थोड़ा और लंबा सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और
0: धन्यवाद मैडम, आकाशवाणी का भी धन्यवाद, सभी रेडियो श्रोताओं का धन्यवाद
1: जी,
0: सब लोगों का धन्यवाद,
1: थैंक यू सो मच सर। तो ये थे राजेश जी, और बड़े ही खूबसूरत गाने की इन्होंने फरमाइश हमसे की, और साथ ही उसे गुनगुनाया भी। सुनेंगे ये गाना, लेकिन उससे पहले मुझे है आपको याद दिलाना कि आप जाएंगे कहीं नहीं, इस गाने के उस पार आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, देश और दुनिया से जुड़े, और ठीक 10:30 बजे फिर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि दिल का मेल बॉक्स खुला रहेगा और मैं यानी नाज करूंगी आपका इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपये भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पूर्व में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Kapoor and Ruthvika Shivani Gadde won against Taiwan Hu Ling Fang and Yang Po Xuan today in mixed doubles round of 32. Today in men's singles, H.S. Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wing Hong Yang. In women's cricket, England sailed to a 6-wicket win over India in the third and final T20 international to clinch the series 2-1 at the County Ground Taunton in England last night. India set a target of 181 runs against England. In reply, England scored 184 for 4 in 18.3 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। तिब्बत में चीन के नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध के निर्धारण संबंधी विधेयक अमरीकी प्रतिनिधि सभा में पेश। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा और लोगों को संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि चीन ने मौजूदा क्षेत्रीय संकट के दौरान ईरान को सैन्य सहायता दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास चीन में बने कुछ सैन्य उपकरण जरूर हैं, लेकिन हाल के संघर्ष में चीन की किसी भी ऐसी कार्रवाई का पता नहीं चला है जिससे सैन्य संतुलन प्रभावित हुआ हो। श्री रूबियो ने चीन से अपील की कि वो संयुक्त राष्ट्र में अधिक रचनात्मक भूमिका निभाए, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री यातायात सुचारू रखने के प्रयासों में। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य नीति का मजबूती से बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पारंपरिक हथियारों की क्षमता को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। श्री रूबियो ने दावा किया कि हाल के अमरीकी सैन्य अभियानों

0: से ईरान की सैन्य क्षमता में काफी गिरावट आई है। ईरान की नौसेना अब काफी कमजोर हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी कार्रवाई में ईरान के ड्रोन उत्पादन ढांचे को भी निशाना बनाया गया, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। अमरीका की सेना ने कहा है कि कुवैत और बहरीन की ओर दागी गई ईरान की मिसाइलें या तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाईं या उन्हें बीच में ही रोक लिया गया। सेना ने यह भी कहा कि इसके बदले में अमरीका ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमान के अनुसार ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट क्वेश्म द्वीप पर स्थित ईरानी सैन्य जमीनी नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाकर किए गए। इस द्वीप पर एक डिसेलिनेशन संयंत्र भी है। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी सेना ने कहा कि कुवैत की ओर दागी गई दो मिसाइलें रास्ते में ही नष्ट हो गईं, जबकि बहरीन की ओर दागी गई मिसाइलों को अमरीका और बहरीन की सेनाओं ने बीच में ही रोक लिया। स्थानीय मीडिया खबरों के अनुसार ये घटनाक्रम तब सामने आए जब ईरान ने युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने के संबंध में मध्यस्थों से बातचीत बंद कर दी। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि बातचीत जारी है। एक अन्य घटनाक्रम में अमरीका की सेना ने कहा कि उसने अमरीकी नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए ईरानी बंदरगाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे तेल टैंकर को रोकने के लिए एक मिसाइल दागी। सेना ने कहा कि नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में रोका गया ये सातवां जहाज था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा के सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है जिसके अंतर्गत विदेश विभाग को यह निर्धारित करना होगा कि क्या चीन ने तिब्बत के लोगों के खिलाफ नरसंहार या मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं। इससे मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर चीन पर कांग्रेस का दबाव और बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यूजर्सी के रिपब्लिकन सांसद क्रिस स्मिथ और न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट सांसद टॉम स्वोजी ने कल तिब्बत अत्याचार निर्धारण अधिनियम पेश किया। इसके अंतर्गत विदेश मंत्री को अधिनियम लागू होने के एक वर्ष के भीतर तिब्बत में चीन की कार्रवाइयों का आकलन करते हुए कांग्रेस को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस विधेयक में तिब्बत के बौद्ध धर्म के चीन के अनुसार और तिब्बती भाषा और संस्कृति के दमन के उद्देश्य से चीन की सरकार की कार्रवाइयों की समीक्षा का भी प्रावधान है। रिपोर्ट में विदेश विभाग के निष्कर्षों और तीसरे पक्ष के विश्लेषणों का उपयोग किया जाएगा और प्रतिबंधों, वीजा प्रतिबंधों और राजनयिक उपायों सहित अमेरिका की संभावित प्रतिक्रियाओं की सिफारिश की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के तहत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के तहत अब प्रथम वर्ष के 100 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 7,500 श्रीलंकाई रूपये की सहायता दी जाएगी। ये सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान प्रांत में खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाए गए अभियानों में 17 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना के अनुसार पिछले महीने क्वेटा के निकट हुई ट्रेन बम विस्फोट की घटना के बाद मस्तुंग, नुश्की, जेहरी, खुजदार और केच जिलों में ये अभियान चलाए गए। इस विस्फोट की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। आज विश्व साइकिल दिवस है। ये विशेष दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल स्थायी परिवहन साधन के रूप में मान्यता देना है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिल गया। SAAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का सामना सेमीफाइनल में भूटान से होगा। ये मुकाबला गोवा के मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम ग्रुप बी में सभी मैच जीतकर शीर्ष पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 5 दिन की

नमस्कार, ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेलबॉक्स, जहां मैं यानी नाज आ गई हूं आपसे बातें करने और आपको आपकी फरमाइश के गीत सुनाने भी। आप क्या करेंगे ये भी याद दिला दूं आपको। fmgoldairdelhi@gmail.com पर भेजेंगे अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, और इसके साथ ही कुछ शेरो शायरी हो जाए तो बस बात ही बन जाए, है ना। व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं हमें, नंबर नोट कर लीजिए 9868687533। और दोस्तों, इसके साथ ही टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी, क्योंकि मैं एक बार फिर लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक खूबसूरत सा म्यूजिक पीस, जिसे प्रोग्राम के बीच बीच में आप सुनते रहेंगे और मुझे बताएंगे कि ये म्यूजिक पीस किस सॉन्ग का प्रिल्यूड यानी शुरुआती हिस्सा है। तो जरा ध्यान से सुनिए।

तो अगर पहचान लिया है गाना तो टाइम बिल्कुल नहीं है गवाना, जल्दी से लिख भेजिए गीत के बोल और फिलहाल एंजॉय कीजिए ये मस्ती भरा गीत जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे जी की ओर से। शाहजी नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से आई है ये फरमाइश।

जी बिल्कुल सही बात है, जीवन चलने का नाम है और हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आपके ईमेल और मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। तो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ये मैसेज आया है राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया और चारू जटोलिया जी की ओर से, दिल्ली नागलोई से ये आया है मैसेज, और साथ ही भेजी है अपनी फरमाइश जिसे हम पूरा करने की कोशिश जरूर जरूर करेंगे। एक और मैसेज आया है, लिखा है कि नाज आई तो कलियां मुस्कुराने लगी, हवाओं में तेरे आने का पैगाम आने लगा, पेड़ों ने ओढ़ ली हरियाली की चादर, गोया जमीन ने दुल्हन का लिबास पहन लिया, पतझड़ में जो दरख्त उदास थे नाज ने आकर सबको हरा भरा कर दिया, सूखी टहनियों पे भी फूल खिल जाते हैं, नाज जब आती है तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। उफ, फिलहाल तो मैं पिघल गई हूँ अनुजी आपकी इस बात से। बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, मुंबई से लिखकर भेजा है, डियर नाज प्योरली डेडिकेटेड टू यू, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस ब्यूटिफुल मैसेज। और भी लिखा है, पढ़े बिना रहा नहीं जा रहा मुझसे, चांद को देखूं तो तेरा चेहरा नजर आता

क्या है, तारों को देखूं तो तेरी हंसी सुनाई देती है, ये कैसा स्नेह है मुझको तुमसे, ये कैसा स्नेह यानी प्यार है मुझको तुमसे, हर चीज में सूरत तुम्हारी दिखाई देती है। कितने कमाल की बात है ना, न मेरी सूरत आपने देखी है, हालांकि मैंने तो आपकी देख ली है क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज मैं आपका पढ़ रही हूँ जिसमें आपकी प्रोफाइल पिक भी लगी हुई है और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं आप। और साथ ही लिखा है कि चांदनी रात है, तारों की बारात है, दिल का हर कोना आज तेरी यादों से आबाद है, काश तुम भी यहाँ होती मेरे साथ, ये चांद भी कहता कि इश्क लाजवाब है। लेकिन सवाल ये है कि दिन में आपको चांद कहाँ से नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, आपके जज्बात मैं अच्छे से समझ रही हूँ और एक बड़ा सा थैंक यू बोल रही हूँ इस खूबसूरत से मैसेज के लिए। एक साइकिल पर भी आपने कविता लिखी है लेकिन चूंकि मुझे और भी मैसेजेस शामिल करने हैं तो इस बार के लिए सॉरी। और चलिए अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं। लगातार भाई मेरी उम्मीद से बहुत अलग हैं आप लोग, सच में मुझे लगा था कि आज का म्यूजिक पीस जो मैंने आपके लिए प्ले किया उसे पहचानने में थोड़ा तो वक्त लगाएंगे आप, शायद हो सकता है कि कुछ ही जवाब आए तो मुझे मेहनत कम करनी पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार आप लोग जवाब भेज रहे हैं और ये भी बता दूं कि बिल्कुल सही जवाब भेज रहे हैं आप सभी। चलिए इसी बात पर एक बार और वो म्यूजिक पीस सुना देती हूँ आपको और फिर करूंगी बातें।

तो यही था वो म्यूजिक पीस जिसे आपने पहचानना है और लिख भेजना है गाने के बोल। और चलिए इसी के साथ अगला मैसेज भी शामिल कर लेते हैं जो कि आया है सीधा चंडीगढ़ से सतीश अनेजा जी, बिमला अनेजा जी के साथ। इन्होंने बड़ी ही खूबसूरत कविता एक बार फिर से लिखकर भेज दी है जिसे मुझे पढ़ना ही होगा। लिखते हैं, तरन्नुम भी असर क्यों ना दिखाए, दिल में बजे जो साज, गोल्ड की बात करते हो वो तो हो चुका परवाज, गूंजेंगे गूंजेंगे अब नगमे, महकेगी अब दिलकश सी आवाज, नहीं नहीं भाई कोई और नहीं, वो तो मेरी बहना है नाज, काबिले तारीफ पेशकश और दिलकश सा है अंदाज, सबको मिले जो भागीदारी, नहीं होता कभी कोई नाराज, वाह रे प्रसार भारती वाह, क्या दी है हमें दिलकश सौगात, मनोरंजन करे गम भगाए और शिद्दत से सुने हमारी बात, ऐप की बदौलत अब तो बन चुका हर जगह गोल्ड सरताज, ये बगिया तो महकेगी ही जिसे संभाले बहना नाज, आपकी मेहनत और निष्ठा से मिली खुशियों की लहर, नाज बहना आप खुश रहो ये भाई दुआ करे तीनों पहर। उफ भाई, देखिए आप ना मेरे इमोशंस को चैलेंज कर रहे हैं। एक बात बताइए, ऑन एयर में रोती हुई अच्छी लगूंगी क्या आपको? चाहते हैं आप कि मैं रो दूं, कैसी लगूंगी सोचिए। चलिए कोई बात नहीं, मैंने संभाल लिए हैं अपने आंसू और पढ़ रही हूं मैं आपके मैसेजेस, लेकिन जो प्यार आप भर भर कर भेज रहे हैं उसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया कहूं कम ही रहेगा, ठीक है ना। और अगला मैसेज आया है सत प्रकाश सनोठिया जी की ओर से, रोहिणी से आया है, सवाल का जवाब लिख भेजा है जो कि बिल्कुल सही है और साथ ही भेजी है अपनी फरमाइश। लेकिन फिलहाल मैं ढूंढ रही हूं एक और कोई ऐसा मैसेज जिसमें लिखी हो कोई बढ़िया सी बात, कोई अच्छा सा शेर, कोई शायरी, जो कि मुझे अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगला सॉन्ग सुन लेते हैं उसके बाद ट्राई करेंगे, है ना। और ये अगला गाना जो आप सुनने वाले हैं बड़ा ही खूबसूरत गाना है ये, सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, कृष्णा पार्क दिल्ली से आई है फरमाइश, पंखा रोड जनकपुर से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबरॉय ने फरमाइश भेजी है जनाब।

0: घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य

भाई पिछले प्रोग्राम में आपने मेरा शीशाए दिल तोड़ दिया। उफ, झालमुड़ी खाकर आपने मेरा शेर तो पढ़ा लेकिन मेरा नाम छोड़ दिया। लेकिन मुझे इस बात पर अचरज कि आपको कैसे पता कि मैंने आज झालमुड़ी खाई। लेकिन कमाल का शेर लिखा और उम्मीद है कि अब आपकी नाराजगी भी दूर हो गई होगी। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष के साथ ये मैसेज आया है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से और साथ ही भेजी है अपनी फरमाइश। लेकिन आज की धुन नहीं पहचानी आपने। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, अभी भी थोड़ा सा वक्त बाकी है। तो चलिए एक बार और सुना दो धुन आपको, उसके बाद बात करते हैं।

तो कोशिश करते रहिए और इसी तरह मैसेज भेजते रहिए जैसे कि आप सभी भेज रहे हैं अभी। तो अगला मैसेज जल्दी से शामिल कर रही हूँ। कृष्ण कुमार गुप्ता जी ने भेजा है भटीपुरा महोबा से, लिख रहे हैं, दिल को सुकून रूह को आराम आ जाता है, दिल को सुकून रूह को आराम आ जाता है जब नाज जी की प्रस्तुति में दिल का मेल बॉक्स आ जाता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा शेर आपने लिखकर भेजा है। इसके साथ ही अगला मैसेज आ गया है गांधी चौक बाड़मेर से, आया है राजस्थान से। बबलेश पवार जी लिख रहे हैं कि नाज शेख साहिबा जी आदाब, मेरी प्यारी एफएम गोल्ड रेडियो के उस पुराने सुर में एक अलग ही अपनापन है। एफएम गोल्ड के मीठे गीतों में जैसे बीता हुआ बचपन है। सपनों की उन लहरों पर गांठ लगाती पुरानी धुने, मन को छू जाते हैं जो गीत तो बार बार हम फिर से सुने। दूर कहीं किसी कोने से आरजे नाज की वो प्यारी आवाज, एफएम गोल्ड और गीतों का आज भी सबसे अलग है साज। पुरानी यादों की महक लिए हवा में तैरती ये मधुर तान, रेडियो पर बजता हर एक गीत जैसे हो कोई भूला हुआ वरदान। क्या बात है, बहुत ही अच्छी कविता, अच्छी बात आपने लिखकर भेजी है। डैनी पवार और मनीष पवार भी इनके साथ शामिल हैं और अभी भी कुछ लिख रहे हैं, माफ कीजिएगा, आगे बढ़ना होगा मुझे क्योंकि और मैसेजेस भी शामिल करने हैं। तो अगला मैसेज हम शामिल चलिए कर लेते हैं। सतप्रकाश सनोठिया जी ने लिखकर भेजा है कि बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते, अनजान मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, मिलने की खुशी दें या ना दें मगर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और भी लिखा है कि सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो लेकिन धूल हो ही जाती है और इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो भूल हो ही जाती है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए मुझसे भी भूल हो सकती है या हो रही है क्योंकि मैं चाह कर भी वो सभी नाम शामिल नहीं कर पाती हूँ, वो सभी मैसेजेस, वो सभी ईमेल शामिल नहीं कर पाती हूँ जो मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैसेज शामिल कर पाऊँ। और चूंकि देखिए घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है तो मैं जल्दी से कुछ और मैसेजेस या ईमेल शामिल कर लेती हूँ कार्यक्रम में। सईद अब्बासी साहब लिख रहे हैं कि ऐ मेरी जमी के चांद सितारों, नाज आई है एफएम गोल्ड पर, दरिया ने भी मौजों को पुकारा है, श्रोतागण ने भर भर कर मैसेजेस और मेल नाज परवारे हैं, हम भी चुपके से कह देते हैं कि हम भी नाज की प्रस्तुतिकरण के दीवाने हैं। अब ये नाज पर छोड़ा है, वो माने या ना माने हमें तो नाज है नाज पर। क्या बात है सर, कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। और ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से लिखा है ये मैसेज। सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अब्बान अब्बासी के साथ परिवार के सभी सदस्य शामिल हैं इस ईमेल में, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी सुन रहे हैं आपको, क्या खूबसूरत अंदाज है, कोयल जैसी तेरी बोली, गुल है क्या गुल नाज है। ये लिखा है शमशुल कमर राही साहब ने गंज डुंडवारा से, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान के साथ, आपका भी शुक्रिया। और चलिए अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं। प्यारी दीदी नाज जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर है, धन्यवाद, किसी भी सॉन्ग में आप हमें शामिल कर लीजिए। क्या बात है। और लिखा है कि पलट कर देख लेना जब सदा दिल की सुनाई दे, मेरी आवाज में शायद मेरा चेहरा दिखाई दे। आपका चेहरा तो मुझे नजर आ रहा है लेकिन अब ये नहीं पता कि आपका ही है या आपके घर के किसी प्यारे से क्यूट से बच्चे का है, क्योंकि प्रोफाइल पिक में मुझे क्यूट सा बेबी नजर आ रहा है। लालगिरी गोस्वामी जी का ये ईमेल है, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, हेमलता, हर्षित और खुशी गोस्वामी इनमें शामिल है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखिए समय बहुत कम बचा है तो जल्दी से मैं आज की उस धुन के बारे में बात कर लेती हूँ और फिर मुझे वो नाम भी शामिल करने हैं जिन्होंने उस धुन को बिल्कुल सही पहचाना है। तो दोस्तों ये धुन एक
बेहद खूबसूरत गीत का हिस्सा है जो कि साल 1975 में आई फिल्म गीत गाता चल से है। इसके संगीतकार और गीतकार दोनों ही थे दिग्गज रविंद्र जैन जी। आरती मुखर्जी की मीठी आवाज पर अदाकारी करते हुए आप देखते हैं मशहूर फिल्म अभिनेत्री सारिका जी को, जिनका आज यानी 3 जून को जन्मदिन भी है, और बतौर लीड एक्ट्रेस जिनके लिए ये फिल्म और ये गाना भी बहुत कुछ लेकर आया है। गाने की पिक्चराइजेशन एकदम सिंपल है और जो कि सारिका जी की सादगी भरी खूबसूरती पर एकदम फिट बैठी है। जानिए सारिका जी के जीवन और फिल्मी करियर से जुड़ी खास बातें आज दोपहर 1:10 पर हमारी खास पेशकश कलाकार बेमिसाल में। और फिलहाल जानिए वो सभी नाम जो आज की धुन के बने धुरंधर और लिखकर भेजा बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो तुलसी मस्कीन गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, सईद अब्बासी चौखुंटी बुलंदशहर से, मधुबाला तिलंगपुर कोटला दिल्ली से, सज्जन कुमार जांगड़ा हिसार हरियाणा से, भगवती नई दिल्ली से, संजय ढींगिया बागपत से, धर्मेंद्र छीपा राजस्थान से और राजू मिगलानी हांसी से, आफताब अंसारी यूपी गंज टुंडवारा से, कृष्ण कुमार गुप्ता भटीपुरा महोबा, फारूक अली खान गुन्नौर यूपी से, और देखिए अभी भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें शामिल है मनोहर लाल गांधी विजयनगर गाजियाबाद से, और साथ ही मस्कीन दादा भी शामिल हैं, लिख रहे हैं कि जवाब दे दिया है और कई मैसेज छूट जाएंगे, हम तो फिर रह ही जाएंगे ना, ऐसा ना करें, रेगुलर कनेक्ट हैं हम। तो देखिए आपका नाम भी मैंने शामिल कर लिया है। और दोस्तों अब मुझे जल्दी से आपको सुनाना होगा वो सॉन्ग क्योंकि समय अब मेरे पास बहुत ही कम बचा है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपये भेजना शुरू करेंगे। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका के निकेशन द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव के बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a five-day visit to India from today. During the visit, she will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi to review the full spectrum of India-Venezuela relations. The two countries will explore avenues for cooperation in key sectors including trade, investment, energy, renewable energy, healthcare, and pharmaceutical. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said Ms. Rodriguez will be accompanied by a higher-level delegation, including ministers of foreign affairs, economy and finance, science and technology.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
2: Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavarchand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru. More from our correspondent.
4: After Siddaramaiah stepped down as CM on May 28, the Congress Legislature Party had elected 64-year-old D.K. Shivkumar as its leader, paving the way for him to assume the office today. Congress leader Rahul Gandhi, National President Mallikarjun Kharge, Congress General Secretaries K.C. Venugopal and Randeep Singh Surjewala, and some Congress chief ministers, religious leaders, laborers, writers, actors, and prominent businessmen and industrialists have been invited for the swearing-in ceremony. The students of Doddalahalli Government School have also been called for the ceremony as it is the place from where Shivkumar hails from. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
2: Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandaviya has urged India's youth to embrace cycling and lead the movement for a fitter, healthier and greener nation. Sharing a video message on World Bicycle Day today, the minister noted that adopting cycling as a regular habit can encourage a balanced and disciplined lifestyle while also supporting environmental sustainability and cleaner mobility. He added that cycling not only helps individuals maintain physical and mental well-being, but also contributes towards building a healthier and greener nation. The government has decided to gradually phase out the wholesale price index and replace it with a comprehensive producer price index system. The decision was taken to modernize country's inflation and pricing data framework and align it with global best practices. The Commerce and Industry Ministry has said that the government has approved the revision of the base year of the wholesale price index from 2011-12 to 2020-23. Indian nationals will no longer require an airport transit visa when travelling to a third country through German airports beginning today. German Embassy in India announced that the exemption will simplify travel for Indian citizens transiting through Germany on their way to other international destinations. The embassy described the decision as a reflection of the growing partnership between the two countries. It said the move underlines the German government's commitment to deepening ties between the two countries, facilitating the movement of people. Iran launched a major missile and drone attack on U.S. military targets in Bahrain and Kuwait yesterday after American forces struck what Washington described as an Iranian military facility, sharply escalating tensions and raising fresh concerns over the future of a fragile regional ceasefire. According to U.S. Central Command, the confrontation began when American forces enforcing a naval blockade against Iran disabled an oil tanker attempting to reach Iranian ports. U.S. officials said a Hellfire missile struck the vessel's engine room, preventing it from continuing its voyage. The India Meteorological Department has issued an orange alert for thunderstorm conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Andhra Pradesh and Telangana for today. In ZEF Women's Championship, India will face Bhutan in the second semi-final at the Pandit Jawaharlal Nehru Stadium in Margao today. The match will kick

Namaskar. So, swagatam, assalamu alaikum, and have a grand welcome by me, aapki host aur ghumakkar dost, Naz. Tune kiya hua hai aapne Akashwani Delhi ka FM Gold channel 100.1 megahertz par. Aur jahan ke studio ki ghadi mein is waqt time hua hai 11:11 aur 11 seconds bhi. And as you know already, ye samay hai sair sapate ka, क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का. तो खूबसूरत गानों से सजी तस्वीर की आज की प्लेलिस्ट के साथ मैं तो हूं पूरी तरह से तैयार. लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर हां तो ध्यान से सुनिए. आज मैं करवाने वाली हूं आपको जन्नत की सैर. अरे अरे घबराइए मत, इस दुनिया के पार वाली जन्नत का वक्त नहीं आया है अभी. मैं तो बात कर रही हूँ यहीं इसी धरती पर मौजूद जन्नत यानी स्वर्ग यानी हेवन की.

भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा केंद्र शासित प्रदेश जो हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है मौजूद और जिसे कहा जाता है ऊंचे दर्रों की भूमि। बस वहीं की सैर करेंगे आज। तो दोस्तों थाम लीजिए दिल और एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, क्योंकि जगह का नाम तो आप ही मुझे बताएंगे, वो भी इस सॉन्ग के शुरू होकर खत्म होने से पहले।

तो खत्म हुआ इंतजार और अब जान लीजिए कि किस जगह की तस्वीर से होने वाले हैं आप आज रूबरू मेरे यानी नाज के साथ। बिल्कुल सही गेस किया है आपने। किसने? अनु बड़जात्या जी, कैप्टन आईसी शर्मा, कृष्ण कुमार गुप्ता और सुदर्शन मुखी जी ने। ये चार मैसेजेस आए बिल्कुल सही। दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू और कश्मीर और उत्तर में काराकोरम दर्रे के पास शिनजियांग से घिरे लद्दाख की बात करेंगे आज और सैर भी करेंगे, साथ ही लेंगे इस जून की गर्मी में सर्दी का एहसास, क्योंकि लगभग पूरे साल ये जगह बेहद ठंडी और शुष्क रहती है और इसकी वजह ये है कि लद्दाख असल में एक बेहद ऊंचा और ठंडा मरुस्थल यानी रेगिस्तान है, जहां आप कभी भी चले जाइए ठंड आपको मिलेगी ही। फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि मई से सितंबर के बीच अगर आप लद्दाख जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस दौरान यहां बाकी जगहों के मुकाबले तापमान बहुत कम रहता है। जहां दूसरी जगह यानी मैदानी इलाकों में 35 डिग्री से ऊपर आपको टेम्परेचर मिलता है, तो लद्दाख में आपको टेम्परेचर मिलेगा 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच। हालांकि रात में ये तापमान 5 डिग्री तक भी गिर सकता है। मॉनसून यानी जुलाई और अगस्त में अगर आप जाते हैं लद्दाख तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां बारिश बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। और अब जरा मसला सर्दियों का भी सुन लीजिए। तो जनाब, -10 डिग्री से -30

डिग्रीज, मतलब समझ रहे हैं आप कितनी जबरदस्त ठंड पड़ती होगी यहाँ। भारी बर्फबारी यहाँ पर होती है सर्दियों के दौरान, तो इस वक्त यानी अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ का मौसम झेलने की ताकत और हिम्मत अगर आप में है तो पूरी तैयारी से जाइएगा लद्दाख। और फिलहाल सुनिएगा ये अगला ट्रैक, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लद्दाख पहुंचना कैसे है।

और देखिए, लद्दाख की तस्वीर को देखना है अगर जरा करीब से, तो सीधा रूट बनेगा आपका पहले मनाली, फिर वहां से जीस्पा, फिर सरचू होते हुए उपशी और फिर लेह पहुंचेंगे आप, जो लद्दाख का सबसे बड़ा शहर है। दूरी आप तय करेंगे मनाली से यहां तक लगभग 428 किलोमीटर, जिसे तय करने में लगते हैं आमतौर पर 2 दिन। जून की शुरुआत यानी अभी से लेकर अक्टूबर तक यह हाईवे आपके लिए खुला रहता है। इसके अलावा श्रीनगर से अगर आपकी लद्दाख जाने की इच्छा है, तो रूट आप पकड़ेंगे श्रीनगर से सोनमर्ग, फिर द्रास, फिर कारगिल और फिर आखिर में लेह आप पहुंच जाएंगे। 418 किलोमीटर का ये सफर, जिसे आप 2 दिनों में ही पूरा कर पाएंगे, और ये रूट आपके लिए मई से नवंबर तक खुला रहता है। बाय एयर आने के लिए आप लैंड करेंगे लेह में मौजूद कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, जो लद्दाख का एकमात्र एयरपोर्ट है और जिसकी कनेक्टिविटी दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ के साथ साथ जम्मू और श्रीनगर से एकदम सीधी है। दिल्ली से फ्लाइट लेंगे तो मात्र 1.5 घंटे में आप लेह लैंड कर जाएंगे। और फिर क्या करेंगे लद्दाख पहुंचने के बाद, बताऊंगी आपको इस अगले गाने को सुनने और एंजॉय करने के बाद।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं मेरे यानी नाज के साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और आज जहां की सैर आप मेरे साथ कर रहे हैं उस जगह का नाम है लद्दाख। भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है और इसी के साथ ये भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा था। सिंधु यहाँ की मुख्य नदी है और राजधानी यहाँ की लेह है, जहां एंट्री लेने के साथ ही आपको नजर आने लगती हैं बर्फ से ढकी ऊंचे पहाड़ों की ऊंची चोटियां, जो पल पल अपना रंग बदलती रहती हैं। एक ऊंचे रेगिस्तान के तौर पर लद्दाख को जाना जाता है, क्योंकि हिमालय यहाँ पर एक छाया क्षेत्र सा बना देता है जो आमतौर पर मानसूनी बादलों को गुजरने नहीं देता। इसके अलावा मठों और स्तूपों से सजे लद्दाख में और यहाँ के लोगों में भी तिब्बतियन झलक आपको साफ नजर आती है, जो यकीनन आपको खूब पसंद भी आएगी।

बर्फ से ढके पहाड़, साफ झीलें और ऊबड़ खाबड़ जमीन जहां पर आपको मिलेगी, लिहाजा रोमांच की यहां पर कोई कमी नहीं है। क्या कुछ है यहां लद्दाख में एक्सप्लोर करने के लिए, उस पर करेंगे बात। लेकिन पहले ये ट्रैक सुनेंगे और फिर जल्दी से वापस आएंगे।

और अब बात उन लोकेशंस की जो लद्दाख की खूबसूरती को बयां करती हैं। तो यहाँ की राजधानी और सबसे बड़े शहर लेह जब आप पहुंचेंगे तो यहीं की पहाड़ी पर मौजूद सफेद गुंबद वाले शांति स्तूप जरूर जाइएगा, क्योंकि यहां से आपको नजर आएगा एक तो पूरा लेह शहर और खूबसूरत सनसेट की तो बात ही कुछ और है। इसके बाद आप होकर आइए लेह पैलेस, जो 17वीं शताब्दी में बना एक शाही महल है जो तिब्बतियन आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल भी है। 9 मंजिला ऊंची ये इमारत कुछ कुछ पोतोला पैलेस जैसी दिखती है, जो कि तिब्बत के ल्हासा में है। इसके बाद मैग्नेटिक हिल, एक अनोखी जगह है जो कि लेह से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस मैग्नेटिक हिल की एक खासियत आपको बताऊं, यहां मिलेगी आपको एक अनोखी ग्रेविटी या एक तरह का खिंचाव भी आप इसे कह सकते हैं, जिसके चलते बंद गाड़ियां भी अपने आप ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं, है ना कमाल। और भाई कमाल तो ये अगला गाना भी है जिसे सुनना और एंजॉय करना बनता ही बनता है।

और भाई लद्दाख आए हैं तो यहाँ की मैजिकल और मशहूर झीलों से तो रूबरू होना बनता ही है। पैंगोंग त्सो, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है और लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, आपको यहाँ लद्दाख में मिलेगी। जिसकी एक और खासियत यह है कि ये झील दिन के अलग अलग समय पर अपना रंग बदलती है। नीला, हरा और ग्रे रंग आप इस झील की तस्वीर में देखते हैं। और इसके बाद यहाँ जिक्र जरूर करना होगा त्सो मोरीरी का भी, जो कि चांगथांग इलाके में मौजूद एक बेहद शांत और खूबसूरत मीठे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों और वन्य जीवों को देखने के लिए ये एक बेहतरीन साइट है। झीलों के बाद लद्दाख में मौजूद खूबसूरत वैलीज यानी घाटियों की भी चलिए अब बात कर लेते हैं। तो जनाब, नुब्रा वैली आपको जरूर जाना है, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अपने ठंडे रेगिस्तान, सफेद रेत के टीलों और दो कुबड़ वाले ऊंटों की सवारी के लिए ये जगह दुनिया भर में मशहूर है। और यहां पहुंचने के लिए आपको खारदुंग ला दर्रे से होकर गुजरना होगा, जो कि सी लेवल से लगभग 17,582 फीट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक है। और यहां से नजर आने वाली बर्फीली चोटियों का नजारा कुछ अलग ही है। वैसे अलग तो कुछ ये अगला गाना भी है, चाहे जितनी ही सदियां क्यों ना बीत जाए, ये गाना हमारा फेवरेट था, है और हमेशा रहेगा।

सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा

0: आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: तस्वीर सुन रहे हैं आप, जहां खूबसूरत लद्दाख की सैर पर निकले हैं मेरे यानी नाज के साथ, और जहां अब मैं आपको लेकर चल रही हूं थिक से मठ, जो लेह से लगभग 19 किलोमीटर दूर है। 12 मंजिल आप इस मठ में देखते हैं, जो अपनी विशाल मैत्रेय बुद्ध यानी भविष्य के बुद्ध की 49 फीट ऊंची मूर्ति के लिए जाना जाता है। इसके बाद बारी हेमिस मठ की है, जो लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है, और यहाँ हर साल जून या जुलाई के महीने में मशहूर हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ रंग बिरंगे मुखौटों के साथ चैमन डांस का आयोजन होता है। और वाकई ये फेस्टिवल देखने लायक होता है हर तरह से। बर्फ और पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी के बाद जो आपको यहाँ सबसे ज्यादा नजर आएगी वो है भारतीय सेना। और भारतीय सेना की इतनी ज्यादा तैनाती के पीछे कई वजहें हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो कि चीन और पाकिस्तान से मिलती हैं, उसके मद्देनजर नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ी वजह है, और इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का ही हिस्सा है, जहां सेना की मजबूती बहुत ही अहम है। एक ऐसा इलाका जहां टेम्परेचर -30 डिग्री तक जाता है, वहां हमारे जवान पूरी मुस्तैदी और चुस्ती के साथ हमारी रक्षा कर रहे हैं। और भारतीय सेना के इसी शौर्य को अगर आप करीब से महसूस करना चाहते हैं तो जरूर सैर कीजिए हॉल ऑफ फेम म्यूजियम की, जो लेह के पास ही मौजूद है और जिसे भारतीय सेना द्वारा ही संचालित किया जाता है। भारत पाकिस्तान युद्धों की वीर गाथाएं आप यहां करीब से जानेंगे और सुनेंगे भी, साथ ही सेना के हथियार और किस तरह से हमारे जवान वहां सियाचिन में डटे रहते हैं इसकी तस्वीर आप यहां पर देखेंगे। और हाँ, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा शाम के समय यहाँ होने वाला एकदम खास लाइट एंड साउंड शो। और इसके अलावा द्रास में मौजूद कारगिल वॉर मेमोरियल भी आपको जरूर जाना चाहिए और जाननी चाहिए 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय वीरों की कहानी। फिलहाल सुनिए ये अगला ट्रैक, और इसके बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे लद्दाख के लजीज खाने की।

और अब जैसा था आपसे वादा, बताऊंगी आपको कि लद्दाख के लजीज स्वाद में आप क्या क्या चखेंगे, जो कि बहुत हद तक एक तिब्बतियन कुजीन से इंस्पायर्ड है। बेहद ठंडा इलाका है ये, तो जाहिर है कि सब कुछ गर्मा गर्म ही परोसा जाता है और पसंद भी किया जाता है। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में आप सबसे पहले चखेंगे यहाँ थुक्पा, जो लद्दाख का सबसे मशहूर आइटम है। गर्मा गर्म नूडल सूप है ये, जिसे सब्जियों और डिमांड के अनुसार मटन या चिकन के साथ भी तैयार किया जाता है। मोमोज वैसे तो आप कहीं भी चख सकते हैं, लेकिन लद्दाख के स्पेशल मोमोज उनसे काफी अलग होते हैं, टेस्ट में भी और बनाने के तरीके में भी, तो इन्हें टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद एक ट्रेडिशनल पास्ता यहाँ पर मिलता है, जिसे कहते हैं स्कायू, जो बिल्कुल फ्रेशली यहाँ पर तैयार किया जाता है और फिर सब्जियों या मटन के गाढ़े सूप में इसे पकाया जाता है। लोकल ब्रेड और स्नैक्स में आपको मिलेगी यहाँ की ट्रेडिशनल रोटी, जिसे कहा जाता है खम्बीर, और साथ ही भुने हुए जौ से बना सापा भी आप यहाँ पर जरूर चखिए, जिसे नमकीन चाय या फिर छाछ के साथ मिलाकर खाया जाता है। और फिर छुरपे भी आप चख सकते हैं, जो याक के दूध से बना एक सूखा और कड़ा पनीर होता है, जिसे चबाने में जरूर आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ लद्दाख के सख्त मौसम के लिए भी आपको तैयार करेगा। ड्रिंक्स में आप एंजॉय करेंगे लद्दाख की मशहूर गुरगुर चाय, जिसे बटर टी भी कहते हैं। हरी चाय की पत्तियों, याक के मक्खन, दूध और नमक के साथ, जिसे एक खास लकड़ी के बर्तन में मथकर बनाया जाता है, और आपको पता है इसी बर्तन को कहते हैं गुरगुर। उम्मीद है मुझे कि मेरे यानी नाज के साथ लद्दाख का ये सफर आपने जरूर एंजॉय किया होगा। फिलहाल मुझे लेनी होगी आपसे विदा, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए टाटा, खुदा हाफिज और सायोनारा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।

0: आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का बॉल बना के वो खेलते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत, आज भी गांव गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुवर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward.

당근. नमस्कार, स्वागत, प्रणाम। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है घर आंगन। साथ ही आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज है विश्व साइकिल दिवस। यह हर साल 3 जून को मनाया जाता है। ये साइकिल के अनूठे लंबे समय तक चलने वाले बहुमुखी उपयोग को उजागर करता है। साइकिल चलाना सेहत के लिहाज से तो फायदेमंद है ही, इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है और मेंटल हेल्थ भी मजबूत होती है। साथ ही पर्यावरण के लिए भी ये बहुत जरूरी है और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। साइकिल के हर पैडल के साथ एक नया सफर शुरू होता है जो हमें सिखलाता है जीवन भर स्वस्थ रहना और पर्यावरण को सुरक्षित करना। अब सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, जहां पर्दे पर नूतन अपनी सहेलियों के साथ साइकिल चलाती नजर आ रही हैं।

इतने खूबसूरत नगमे हम ले आते हैं आपके लिए, और ये हमारा थोड़ा छोटा सफर नहीं है, ये हमारा 90 सालों का सफर है आपके साथ। रेडियो आपके हर पल में आपके साथ है। जी हाँ, आकाशवाणी आपका 90 सालों से हम सफर रहा है, और आज हम आपको बताएंगे कि आकाशवाणी में फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। 10 जनवरी 1993 को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहली बार फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जी हाँ, दशकों से चली आ रही एक तरफा प्रसारण व्यवस्था को बदलते हुए श्रोताओं को केवल एक निष्क्रिय सुनने वाला नहीं रहने दिया गया, बल्कि उन्हें प्रसारण का एक जीवंत हिस्सा बनने का अवसर मिला। इससे पहले खत भेजे जाते थे, खत आकाशवाणी पहुंचते थे, श्रोताओं की पसंद के गीत बजाए जाते थे, श्रोताओं की पसंद सुनी जाती थी। जी हाँ, लेकिन वो तब उनका संवाद नहीं होता था। संवाद शुरू हुआ फोन इन कार्यक्रम से। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, तकनीक, शिक्षा, सरकारी नीतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर श्रोता सीधे सवाल पूछने लगे, जिससे सूचना का आदान प्रदान हुआ और भी सटीक हो गया। ये सेवा विशेष रूप से इंटरैक्टिव और युवा केंद्रित प्रसारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इस कदम ने रेडियो को अधिक पारदर्शी, संवादात्मक और सहभागी माध्यम में बदल दिया, ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें और जान सकें कि आपके मन में क्या है। और यही वादा हम हमेशा से करते आए हैं। आकाशवाणी 90 सालों से आपके साथ।

0: ताजमहल फिल्म की ये रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को तंबाकू के खतरनाक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर संजय सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर लोगों तक ये संदेश पहुंचाना बेहद जरूरी है कि तंबाकू केवल आदत नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है।
1: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि वर्ल्ड नो टोबैको डे क्यों मनाया जाता है।
2: वर्ल्ड नो टोबैको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाली बीमारियों और मौतों के प्रति जागरूक करना है। यह दिन लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित भी करता है। इस बार की थीम है अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन।
1: तंबाकू किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है?
2: तंबाकू विभिन्न रूपों में यूज किया जाता है, जैसे कि तंबाकू को सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, गुटखे के रूप में, खैनी, पान मसाला, हुक्का और ई सिगरेट जैसे कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें मौजूद निकोटिन व्यक्ति को लत का शिकार बना देता है।
1: तंबाकू से शरीर को किस तरह का नुकसान होता है?
2: तंबाकू शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। इससे मुंह और गले और फेफड़ों का कैंसर होता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है, सांस की बीमारियां होती हैं, दांत और मसूड़ों की समस्याएं होती हैं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बुरा असर होता है। ये सभी तंबाकू के गंभीर दुष्प्रभाव हैं।
1: क्योंकि मैंने सुना था, पहले कहते थे तंबाकू से कैंसर हो सकता है, लेकिन अब हो गया है कि तंबाकू से कैंसर होता ही है, तो 100% कैंसर हो सकता है।
2: बिल्कुल।
1: क्या तंबाकू का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो खुद इसका सेवन नहीं करते?
2: जी हाँ, तंबाकू का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो इसका खुद सेवन नहीं करते हैं, जिसे हम सेकेंड हैंड स्मोक भी कहते हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के आसपास मौजूद लोग भी धुएं के जरिए हानिकारक रसायनों के संपर्क में आते हैं और ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद ही खतरनाक होता है।
1: यानी जो व्यक्ति खुद सिगरेट पी रहा है वो तो नुकसान है ही, आसपास के लोगों के लिए भी नुकसानदायक है।
2: बिल्कुल सर।
1: आजकल युवा पीढ़ी तेजी से तंबाकू की ओर आकर्षित हो रही है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: युवाओं को समझना होगा कि तंबाकू कोई स्टाइल या फैशन नहीं है। यह धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। स्वस्थ जीवन, खेल, योग और सकारात्मक गतिविधियां अपनाना ज्यादा बेहतर है।
1: जी हाँ, मतलब कहना चाहते हैं आप कि अगर खेल में या गेम जो पसंद है, कोई हॉबी उनकी है, अगर उसमें लग जाए तो स्मोकिंग और सिगरेट से और तंबाकू से दूर हो सकते हैं वो लोग।
2: बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि स्मोकिंग या तंबाकू को यूज करना इस तरह से है जैसे घुन लगना। आदमी के शरीर को अंदर अंदर ये बिल्कुल घुन की तरह खोखला कर देता है, बीमारियां घर कर लेती हैं। ये इसके दुष्प्रभाव हैं, इसलिए तंबाकू को छोड़ना बहुत जरूरी है।
1: अगर कोई व्यक्ति तंबाकू या सिगरेट छोड़ना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए?
2: अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है, पहले तो उसको इच्छा शक्ति रखने की वो तंबाकू छोड़ना चाहता है। परिवार और दोस्तों का सहयोग लें, डॉक्टर या काउंसलर से सलाह लें, तनाव कम करने के लिए योग और व्यायाम करें, तंबाकू की जगह हेल्दी आदतें अपनाएं और इसके साथ ही भारत सरकार की तरफ से एक्यूट लाइन सर्विसेज में भी वो फोन कर सकते हैं, जिसका टोल फ्री नंबर है 1800112356। इस टोल फ्री नंबर पे वो तंबाकू छोड़ने के लिए सलाह दे सकते हैं।
1: आपने सही बताया, क्विट लाइन नंबर आपने बताया हमारे श्रोताओं को 1800112356, जिस पर सलाह लेकर ये टोबैको या सिगरेट छोड़ी जा सकती है। वर्ल्ड नो टोबैको डे का पखवाड़ा चल रहा है, जैसे कि आपने बताया था कि 31 मई से लेकर 14 जून तक ये गतिविधियां की जाएंगी, तो कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती है सर?
2: वर्ल्ड नो टोबैको डे फोर्थ नाइट के पखवाड़े पे हम विभिन्न तरह की एक्टिविटीज करते हैं। उसमें स्कूलों और कॉलेजों में पोस्टर कंपटीशन कराना, जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे हेल्थ टॉक कराना, स्लोगन लेखन, रैली, शपथ ग्रहण, जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि समाज में तंबाकू के खिलाफ जागरूकता बढ़े। साथ ही एनफोर्समेंट ड्राइव भी की जाती है, जिसमें कोटपा 2003 और दिल्ली एक्ट 1996 के तहत कार्रवाई की जाती है।
1: अंत में श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं आपके श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आइए हम सब मिलकर तंबाकू मुक्त जीवन का संकल्प लें। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज के लिए तंबाकू से दूरी बेहद जरूरी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई आज हमारे श्रोताओं को।
2: दोस्तों, याद रखिए, तंबाकू छोड़िए, जिंदगी को अपनाइए। इसी संदेश के साथ डीजे

0: सौतन फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

एफएम गोल्ड से चल रहा है हमारा कार्यक्रम घर आंगन, जो खास महिलाओं के लिए हम लेकर आते हैं। और अभी तंबाकू और सिगरेट सेहत के लिए कितना हानिकारक है, ये डॉक्टर संजय स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर ने आपको बता ही दिया। उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल से जो लोग समझते हैं ना कि फैशन है, ये फैशन नहीं है बल्कि एक बुरी आदत है, और सकारात्मक गतिविधियों से इस पर काबू पाया जा सकता है, जिसमें से एक गतिविधि है योग। जी हाँ, योग के नियमित अभ्यास से शरीर, मन और विचारों में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये केवल वजन घटाने का साधन नहीं है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की एक पूरी प्रणाली है। और 21 जून को हम विश्व योग दिवस भी मनाएंगे, तो शुरुआत क्यों ना अभी से कर दें। बहुत सारे फायदे हैं योग के। फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है शरीर में। मांसपेशियां जो हमारी कैड़ी हो जाती है ना, उनका कड़ापन दूर होता है, शरीर का लचीलापन बढ़ता है। मांसपेशियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं, शरीर की ताकत बढ़ती है, बेहतर मुद्रा हमें मिल पाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जिससे बैठने और खड़े होने का जो पोस्चर है वो सुधर जाता है। वजन तो नियंत्रित रहता ही है, तो सबको ही पता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो योग इसीलिए करते हैं कि उनका वजन ठीक रहे। सूर्य नमस्कार जैसे गतिशील आसन कैलोरी बर्न करने और मोटापा घटाने में मदद करते हैं। और सभी को पता है कि मोटापा ही सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। अगर आपने वजन को नियंत्रित कर लिया तो समझ लिए बहुत सारी बीमारियों से आप दूर हो गए। पाचन क्रिया में सुधार आता है। वज्रासन और पवन मुक्तासन जैसे आसन गैस, कब्ज और अपच की समस्या को ठीक करते हैं। और मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, मानसिक फायदे हैं योग के। तनाव में कमी आती है। प्राणायाम और ध्यान करने से मानसिक तनाव और चिंता और डिप्रेशन भी कम होता है। बेहतर फोकस मिल पाता है, मन शांत रहता है, जिससे काम और पढ़ाई में एकाग्रता रहती है। नींद भी अच्छी आती है क्योंकि दिमाग की नसें शांत रहती हैं। अनिद्रा की बीमारी भी दूर होती है। दिल मजबूत होता है, फेफड़ों की क्षमता भी बहुत अच्छी हो जाती है। प्राणायाम से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। क्या बताऊं, बहुत सारे फायदे हैं। इम्यूनिटी बूस्टर भी है योग। अब देखिए ना, शरीर की बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, तो क्यों नहीं हमारी महिलाएं घर के समय क्यों नहीं निकाल पा रही हैं। अब देखिए ना, अब आज का प्रोग्राम सुनकर आप लोगों को योग के लिए सोच लेना है कि बस हमें योग की शुरुआत कर देनी है। हमें नहीं सोचना कि आज की बात कल पे डालनी है। आज और अभी से हम योग की शुरुआत करेंगे।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत भाभी फिल्म से था। अब हम अपने श्रोताओं से इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी सारी चर्चाएं कर रहे हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं, प्रोग्राम में लेकर आते हैं हम बहुत सारी बातें। अब ये संवाद एक तरफा नहीं रहना चाहिए, आप भी हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। फिर से बता देते हैं fmgoldga@gmail.com। आप ईमेल हमें भेजिए, प्रोग्राम में क्या चाहते हैं और प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अब हम बात करेंगे बिजली बचाने की। देखिए, पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आज के जो हालात है ना, उसमें पर्यावरण जो है वो बहुत जरूरी है कि पर्यावरण को बचाया जाए। देखिए ना, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, ठंड है तो वो बहुत ज्यादा है, तो गर्मी जो इतनी ज्यादा हो रही है, इसके लिए जरूरी है कि आप बिजली बचाइए, एक आदत बनाइए इसको। बिजली बचाना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली और आदत है। जब आप छोटी छोटी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो बिजली की बचत अपने आप होने लगती है। बिजली बचाने के लिए आप कुछ खास काम यानी खास कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत छोटी छोटी आते हैं। कमरा छोड़ते ही बटन बंद कर दें, यानी कि जो स्विच है वो बंद कर दें। कमरे से बाहर निकलते समय वहां की लाइट, पंखा और एसी बंद करने की आदत डालनी चाहिए। और इसके लिए दूसरे जो सदस्य हैं घर में, उनको भी कहिए कि जहां से निकले अगर एक्स्ट्रा लाइट जल रही है तो उसे बंद कीजिए। अब फैंटम लोड पड़ता है जिसे आप गैजेट्स लगे छोड़ देते हैं, टीवी को रिमोट से बंद कर देते हैं, मोबाइल को चार्ज होने के बाद चार्जर को स्विच में लगा छोड़ देते हैं, या एसी को भी रिमोट से बंद कर देते हैं। ये स्विच ऑन रहने पर ये जो उपकरण है लगातार बिजली सोखते रहते हैं, इसलिए मेन स्विच बंद करना जरूरी है। चार्जर, लैपटॉप, टीवी, माइक्रोवेव के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए, खत्म होने के बाद जब आपका काम हो जाए तो मेन बोर्ड से स्विच बंद कर दीजिए। देखिए, इस बारे में हमें और भी बातें करेंगे, एक पहले गीत सुन लेते हैं।

शंकर हुसैन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। बात चल रही थी बिजली बजाने की, जी हाँ, उसमें हमने आपको बता दिया कि स्विचेस बंद करने हैं और प्लग को सॉकेट से बाहर निकालना है। एक चीज और है, सूरज की रोशनी का सम्मान कीजिए, यानी नेचुरल लाइट का इस्तेमाल कीजिए। दिन के समय कमरों की खिड़कियों के पर्दे खोल कर रखिए ताकि प्राकृतिक रोशनी अंदर आ सके और आपको बल्ब या जो रोशनी या आप लाइट जलाते हैं उसकी जरूरत ही ना पड़े। धूप में कपड़े सुखाइए, वॉशिंग मशीन के ड्रायर का इस्तेमाल कम से कम करें। आजकल तो गर्मी है, धूप में कपड़े सूख जाते हैं। कपड़ों को धूप में सुखाने की जो आदत है ना, इससे बहुत बिजली बचती है। फिल्टर की सफाई कराइए, अगर एसी आपका है उसके फिल्टर अगर साफ नहीं है तो भी वो बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं। और फ्रिज में बेवजह जो सामान ठूस दिया जाता है ना कि आप फ्रिज में भरे जा रहे हैं, उससे भी फ्रिज बहुत बिजली खाता है। इसलिए थोड़ी सी जगह खाली रखें ताकि उसमें अंदर एयर सर्कुलेशन यानी हवा घूमती रहे। गर्म खाना सीधे फ्रिज में नहीं रखना है, पहले बाहर ठंडा करना है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिससे आप बिजली बचा सकते हैं। अब गर्मी के दिनों में एसी को 24 डिग्री पर अगर आप चलाएंगे तो ये आदत बहुत अच्छी है, ताकि जो आप ये तापमान है मानव शरीर के लिए आरामदायक है और बिजली के बिल को भी नियंत्रित रखता है। रात को सोते समय टीवी एसी में स्लिप टाइमर लगाने की आदत डालें ताकि वो रात भर बेवजह चलते ना रहे। कई बार चला हुआ टीवी छोड़ देते हैं, अरे ऐसा नहीं है, आप आदत डालिए कि ये चीजें बंद करनी है। सोने से पहले सारा घर एक बार चेक करना है कि कोई बेवजह बिजली तो नहीं चल रही, कोई सॉकेट में कुछ प्लग तो नहीं लगा हुआ। ये आदतें न सिर्फ घर का बजट सुधारेंगी बल्कि देश में ऊर्जा के संकट को भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान देंगी।

अनपढ़ फिल्म की रचना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, और अब बात करेंगे गर्मी की। जो इतनी लू चल रही है ना, इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इन दिनों देश के ज्यादातर इलाकों में लू और प्रचंड गर्मी का असर है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कुछ हिस्सों में लू जैसी समस्याओं को लेकर रेड अलर्ट भी हो गया है। गर्मी के चलते बच्चे, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग, बीमार या पहले से जुड़ी किसी समस्या का सामना कर रहे लोगों को बहुत सजग रहने की जरूरत है। इस लापरवाही से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सूती कपड़े पहने, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें अगर आपको बाहर जाना है। गर्मी के चलते अगर थकान हो रही है तो कुछ लोग इसे सामान्य मानकर टाल देते हैं, जबकि ये शरीर के भीतर बिगड़े संतुलन का संकेत हो सकता है। गर्मी के दुष्प्रभाव से बचने का सबसे आसान तरीका है स्वयं के स्तर पर बचाव करें, लक्षणों को गंभीर होने से पहले ही रोक दें। अगर गर्मी के चलते चक्कर या बेहोशी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो प्रभावित व्यक्ति को तुरंत ठंडी और छायादार जगह पर ले जाना चाहिए। उसे ढीले कपड़े पहनाकर आराम दीजिए, गीले कपड़े लगाएं, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, और पंखा भी किया जा सकता है उसके ऊपर। अगर आप सड़क पर हैं तो हाथ से पंखा कीजिए या किसी कागज से थोड़ा सा उसे साइड में ले जाइए। बेहोशी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। इतनी गर्मी में अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप तेज गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने के लिए पानी की बोतल जरूर साथ रखें। चाय कॉफी का सेवन बिल्कुल कम कर दें। ओआरएस और नींबू पानी को पीना भी लाभदायक हो सकता है।

इंसान जाग उठा इस फिल्म में अभी आपने सुना गीता दत्त और आशा भोसले को। बात चल रही थी गर्मी की। अब गर्मी है तो प्यास तो लगेगी ही। अब बार बार प्यास ना लगे और प्यास लगे तो भी पानी पीते रहे, मतलब ये ना सोचिए कि प्यास लगेगी, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना बहुत जरूरी है। धूप में बाहर निकलते समय सिर को ढक कर रखें, हल्के रंग और सूती कपड़े पहने, दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें, ORS, नींबू, पानी, छाछ ये सब इनको पीते रहें, इनका सेवन करते रहें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। अब सावधानी अगर बढ़ती जाएगी तो शरीर जो है आपका सुरक्षित रहेगा। तेज गर्मी जो लू चल रही ना उसमें शरीर हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। मौसमी फल खाएं, ताजी सब्जियां लें, दही, छाछ, नारियल पानी का सेवन करना भी बहुत जरूरी है। अब किसी को कैसे ही स्ट्रोक लगेगा, ये ना आपको लगता है कई बार, अब हमारे घर की महिलाएं हैं, बच्चा बाहर से ट्यूशन पढ़ के आया, अब पता नहीं चलता कि क्या हुआ, अगर बच्चे को तेज सिरदर्द है, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं या तेज बुखार है, एकदम से शरीर का तापमान बढ़ गया, वो हीट स्ट्रोक हो सकता है। अब डिहाइड्रेशन कैसे होता है, मुंह सूखना, बार बार प्यास लगना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना, इसमें से कोई भी लक्षण है सबसे पहले तो ORS का घोल दिया जाए, नींबू पानी दिया जाए, उसके बाद अगर समस्या ज्यादा है तो डॉक्टर से संपर्क किया जा सकता है। लेकिन लू से बचना बहुत जरूरी है, गर्मी में अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है।

इज्जत फिल्म के इस गीत में आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। अपना और अपनों का ध्यान रखें, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और इस कार्यक्रम से यानी घर आंगन से मुझे यानी राधा पाठक को दें इजाजत। नमस्कार।

0: हर आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री

0: मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. More than 10 people lost their lives and several others are rescued after a fire broke out at a hotel in Malviyanagar, Delhi this morning. According to the Delhi Fire Services, 15 fire tenders rushed to the spot to douse the fire. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, Mr. Modi said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced that an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund will be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also expressed grief over the tragic loss of lives in the fire incident. In a social media post, Ms. Gupta said that immediately after receiving information about the incident, teams of Delhi Fire Services, Delhi Police, District Disaster Management Authority, CATS Ambulance Services and other emergency response agencies were mobilized and launched the rescue and relief operations. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
1: PM Janman Yojana ke तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीवीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं उनके कोई जमीन नहीं जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है.
2: West Bengal former ruling party the Trinamool Congress is in turmoil and on the verge of split. Expelled TMC MLA Rita Brata Banerjee claims the support of nearly 60 MLAs, a number that could decisively shift the control in the assembly. His faction has already written to Speaker Ratindra Bose asking to be recognised as the real TMC. In a counter move, TMC announced Shobhandeep Chattopadhyay as the leader of the House, with Ashima Patra and Nayan Bandopadhyay as deputies and Farhad Hakim as chief whip. Former Chief Minister Mamata Banerjee at a rally in Kolkata accused the BJP of orchestrating the split. The Central Board of Secondary Education CBSE has said that nearly 40,000 students have successfully submitted their re-evaluation applications and completed the application process without facing any issues. CBSE had yesterday opened the online portal for verification of issues, observed and scanned copies of answer books and re-evaluation of answers for Class 12 students. The facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. In a social media post, CBSE informed that payment gateways of SBI, Canara Bank, Bank of Baroda and the Indian Bank are available on the verification and re-evaluation portal for students applying for post-result services. CBSE has clarified that students are not required to hold accounts with any of these banks to complete the payment process. India has surpassed the United States in annual solar capacity additions to become the world's second largest solar growth market in 2025. Highlighting the remarkable achievement, Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi today said that the country's solar growth story is setting global benchmarks and driving record capacity additions through strong policy support, innovation and world-class infrastructure. In Karnataka, Congress Legislature Party leader D.K. Shivkumar will be sworn in as the 25th Chief Minister of the state by Governor Thavarchand Gehlot at 5 past 4 p.m. in Bengaluru today. Former Home Minister Dr. G. Parmeshwar will be sworn in as the Deputy Chief Minister. And that is the end of this news bulletin.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में बातें गुजरे जमाने की एक प्यारी सी चाइल्ड एक्टर की।

जिन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक बेहतरीन काम किया। उनके नाम पर दो दो नेशनल अवार्ड्स हैं, एक एक्टिंग के लिए और दूसरा कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। किन की बात कर रही हूं मैं, जरा सोचिए। अच्छा, गाना सुनाती हूं, उनके ऊपर फिल्माया, आप अंदाजा लगाइए।

गीत गाता चल इस फिल्म से गाना आपने सुना आरती मुखर्जी की आवाज में, जो कि फिल्म आया गया था सारिका पर। वैसे नया नया तो सारिका को लगता ही होगा, वो बहुत ही छोटी सी थी जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया और इस फिल्म में वो एकदम से बड़ी होकर नजर आई पर्दे पर। दोस्तों आज हम अभिनेत्री सारिका ठाकुर की बात करने वाले हैं, यानी कि सारिका की। सारिका स्क्रीन पर जितनी सहज नजर आती उतनी ही ज्यादा मुश्किल रही उनकी जिंदगी। ऐसा कहा जाता है कि सारिका ने एक बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजारी है। दोस्तों सारिका का जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली में हुआ था। वो महज 5 साल की थीं जब पिता के चले जाने के बाद उन पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आन पड़ी। कहते हैं कि जिम्मेदारियों की वजह से सारिका अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी। और भी बहुत कुछ है उनके बारे में जानने के लिए, सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।

राकेश रोशन और सारिका पर फिल्माया गया था ये गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। दोस्तों, फिल्म का नाम है देवता, जिसे आपने ये गाना सुना, और हम बातें कर रहे हैं सारिका की। अभिनेत्री सारिका के करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के तौर पर हुई थी। उनके पहले किरदार का नाम मास्टर सूरज था। जी हाँ, कभी छोटे से लड़के कभी लड़की का किरदार वो निभाया करती थी। 1967 में दोस्तों एक फिल्म आई थी हमराज, आपको बहुत अच्छे से याद होगी ये फिल्म, और इस फिल्म में सारिका को खूब पहचान मिली। हमराज में उन्होंने अभिनेत्री विमी की बेटी का रोल किया था, जिसका नाम सारिका ही था। इसके बाद सारिका बेबी सारिका के नाम से मशहूर हो गई। प्यारी सी मुस्कान और भूरी आंखों वाली सारिका 60 के दशक में एक जानी मानी चाइल्ड एक्टर बन चुकी थी। तो हमराज फिल्म से ही ये गाना मैं आपको सुनाती हूँ।

0: इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर ने और ये मैंने आपको सुनाया हमराज फिल्म से। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं अभिनेत्री सारिका की, जिन्हें बचपन में आप बेबी सारिका के नाम से जानते थे। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया और बहुत ही प्यारी लगती थी वो, इसलिए वो हमें बचपन से लेकर अब तक याद हैं कि उन्होंने कहां कौन से किरदार निभाए। दोस्तों, लीड एक्टर के तौर पर सारिका की जो पहली हिंदी फिल्म थी वो थी गीत गाता चल। इसमें उन्होंने मराठी हिंदी के जाने माने अभिनेता सचिन पिलगांवकर के साथ काम किया था। फिल्म बहुत अच्छी चली और सारिका को पहचान मिली। सचिन के साथ सारिका ने कई मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया है। सचिन और सारिका की जोड़ी एक जमाने में मराठी सिनेमा के दर्शकों की पसंदीदा जोड़ी हुआ करती थी। गीत गाता चल के बाद दोनों ने कई और फिल्मों में साथ काम किया। तो इसी फिल्म से ये बहुत ही प्यारा सा गाना, आप कहीं न जाना।

दोस्तों आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आपने ये गाना सुना बिल्कुल अभी, और हम बातें कर रहे हैं सारिका की। सारिका जो कि बचपन में आपको नजर आई बेबी सारिका के रूप में, बाल कलाकार के रूप में, और बड़े होने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की गीत गाता चल फिल्म से। दोस्तों सारिका ने ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया, जैसे कि क्रांति, राज तिलक, जानी दुश्मन, विधाता, रजिया सुल्तान और ये वादा रहा आदि। इतने सारे कलाकारों के साथ काम करते हुए भी सारिका अपनी छाप छोड़ ही देती थी। सारिका के करियर में कुछ ऐसी फिल्में रही हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, जैसे कि एक फिल्म थी परजानिया। ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि चर्चित फिल्म थी, और इस फिल्म के लिए सारिका को नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। सारिका के साथ एक थोड़ा अजीब सा इत्तेफाक ये रहा कि उन्हें जिन जिन फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड मिला उन फिल्मों में उनका कोई गाना नहीं था, तो इसलिए सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना मैं आपको सुनाती हूँ।

आशा भोसले, दिलराज कौर और उनके साथियों की आवाज में आपने सुना सत्ते पे सत्ता फिल्म से गाना। सत्ते पे सत्ता फिल्म में शीला का किरदार निभाया था सारिका ने। वैसे दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि सारिका एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं फिल्मों में। नेगेटिव किरदार भी उन्होंने निभाए हैं, पॉजिटिव भी निभाए हैं, बाल कलाकार के तौर पर भी वो नजर आई हैं। लेकिन क्या एक बात आप जानते हैं कि सारिका ने पर्दे के पीछे भी नाम कमाया है। जी हाँ, नाम कमाया, सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि नाम भी कमाया है, और नाम के साथ साथ एक अवार्ड भी उन्हें मिला है, बहुत ही शानदार अवार्ड। बताऊंगी आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले जानी दुश्मन फिल्म का ये गाना है जो मुझे आपको सुनाना है, और आपको कहीं नहीं है जाना।

0: मोहम्मद रफी और उनके साथ में आशा भोसले की आवाज आपने सुनी। जानी दुश्मन फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत था और मैं चाहती थी कि ये गाना आप जरूर सुने, मुझे तो ये बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये गाना बहुत अच्छा लगता होगा। दोस्तों, इस फिल्म में बिंदिया का किरदार निभाया था सारिका ने। कितनी प्यारी, कितनी मासूम लगी थी इस फिल्म में। दोस्तों, सारिका ने पर्दे के पीछे तो नाम कमाया ही है, साथ ही साथ वो एक मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं कि एक इंसान है, मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। उन्होंने हर तरह के चैलेंजिंग किरदारों के साथ साथ एक ऐसा किरदार निभाया जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। शायद आपको पता हो कि एक कामयाब कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं सारिका। सारिका ने कमल हासन की चर्चित फिल्म हे राम के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे और कमाल की बात यह है कि उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। हाँ, हे राम का गाना तो मैं नहीं सुना सकती हूँ, गाना है नहीं उनके ऊपर कोई फिल्म आया हुआ, लेकिन हाँ, बड़े दिल वाला फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना सिर्फ आपके लिए।
1: जीवन के दिन छोड़

उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गाना सुना बड़े दिलवाला फिल्म से। और दोस्तों 60 के दशक की प्यारी सी मासूम सी बाल कलाकार बेबी सारिका की आज हमने बातें की, वो आज भी काम कर रही हैं। हालिया वर्षों में सारिका ने बार बार देखो पुरानी जीन्स, जब तक है जान, हरी पुत्तर और ऊंचाई जैसी चर्चित फिल्में की हैं। साथ ही सारिका टीवी पर भी कई बेहतरीन सीरियल्स कर चुकी हैं। उनकी दो प्यारी बेटियां हैं जिनमें से एक बेटी जो श्रुति हासन है, उनको आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, वो साउथ की एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी सारिका हमें टीवी और फिल्मों में यूं ही नजर आती रहेंगी। तो ये था आज का प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल, उम्मीद करती हूं कि आपको पसंद आया होगा। फिलहाल तो वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन आप बने रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। अपना ख्याल रखिएगा।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और महलूकीन के अफराद खानदान के लिए 2 लाख रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस बहरान का शिकार हो गई है क्योंकि पार्टी से निकाले गए रुकन असेंबली ऋतप्रता बनर्जी ने मगरबी बंगाल असेंबली के तकरीबन 60 अराकीन असेंबली की हिमायत का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की तशरी का दोबारा जायजा लेने के लिए आला इख्तियारात के हामिल माहिरीन का पैनल तश्कील दिया है। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। भारत शमसी सलाहियतों में सालाना इजाफे के मामले में अमरीका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शमसी तरक्की का बाजार बन गया है। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज मर्दों के सिंगल्स में एचएस प्रणॉय और आयुष शेट्टी अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में आज सुबह लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस वाके में 40 अफराद को बचा लिया गया। जनूबी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि आग बुझाने वाली 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने पुलिस, फायर खिदमात और दीगर हंगामी एजेंसियों की मुश्तरक कोशिशों से 40 से ज्यादा लोगों को

0: बचाने में कामयाबी मिली है और उन्हें तिब्बी इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मालविया नगर इलाके में आग लगने के वाक़े में जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुक्काम सभी मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवायकीन के लिए वज़ीर-ए-आज़म के कौमी राहत फंड से 2 लाख रूपये की फौरी मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा जख्मियों को 50,000 रूपये दिए जाएंगे। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने भी दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में आज सुबह आग लगने के अफसोसनाक वाकये में कीमती जानों के इतलाफ पर ताजियत का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार किया। नायब सदर ने मुश्किल की इस घड़ी में मुतासर खानदानों के लिए हिम्मत और हौसले की दुआ की। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी मालविया नगर में आग लगने के हादसे में जानों के इतलाफ पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हादसे की इत्तला मिलने के फौरी बाद दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली पुलिस, कुदरती आफत से निमटने की जिला अथॉरिटी, कैट्स, एम्बुलेंस खिदमात और दीगर हंगामी खिदमात की एजेंसियों की टीमों को मुतहरक किया गया और राहत और बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। वजीर आला ने कहा कि इन टीमों की तेज और बरवक्त कार्रवाइयों ने कई अफराद को बचाने और मुतासरा अहाते के इनखला में मदद की। वजीर आला ने कहा कि दिल्ली हुकूमत सूरत हाल पर करीबी निगाह रखे हुए है और मुतासरा कुंभों को हर तरह की तिबी मदद और मावनत की पेशकश की जा रही है। मगरबी बंगाल की साबिक हुक्मरान पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में अफरा तफरी का आलम है और ये पार्टी तकसीम होने के दहाने पर पहुंच गई है। टीएमसी से निकाले गए रुकन असेंबली रितब्रता बैनर्जी ने तकरीबन 60 अराकीन असेंबली की हिमायत हासिल होने का दावा किया है। इस तादाद से असेंबली कंट्रोल में फैसला कुन तब्दीली हो सकती है। उनके ग्रुप ने पहले ही असेंबली स्पीकर रथिंद्रा बोस को एक खत तहरीर करके खुद को हकीकी टीएमसी के तौर पर तस्लीम किए जाने की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब टीएमसी ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को ऐवान का लीडर और अश्मिता पात्रा को और न्याया बंदोपाध्याय को उनका नायब मुकर्रर कर दिया है, जबकि फरहाद हकीम चीफ व्हिप होंगे। साबिक वजीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली में बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो टीएमसी में फूट डालने की कोशिश कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड कबायली तरक्याती एजेंसियों और इंटीग्रेटेड कबायली तरक्याती प्रोजेक्टों को मुस्तहकम करने से मुतालिक कौमी कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क भर में रह रहा कबायली समाज सकाफती एतबार से काफी गुना गुनियत का हामिल है और कबायली बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें की जानी जरूरी हैं। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि आखिरी घर और आखिरी गांव तक तरक्की का पहुंचना जरूरी है। मोहतरमा मुर्मू ने इस बात पर फिक्रमंदी का इजहार किया कि अब भी कुछ कबायली तबकात हुकूमती स्कीमों से वाकिफ नहीं हैं।
1: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी सिलसिले की तशरीह और इसकी नक्शा साजी से मुतालिक मरकज की रिपोर्ट का एक आजादाना जायजा लेने की गरज से माहिरीन की आला इख्तियारात वाली कमेटी तश्कील दी है। भारत की जंगलात से मुतालिक तहकीक और तालीम की काउंसिल के डायरेक्टर जनरल कंचन देवी इस कमेटी की सरबराही करेंगी। पैनल से इस साल 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली इको निज़ाम के तहफ्फुज़ से मुतालिक कलीदी मसाइल हल करने की गरज से एक गैर जानिबदाराना और साइंसी जांच की जरूरत है। कर्नाटक कानून साज पार्टी के रहनुमा डी के शिव कुमार आज कर्नाटक के 25वें वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। गवर्नर थावरचंद गहलोत आज सपहर 4:05 पर बेंगलुरु में जनाब डी के शिव कुमार को हलफ दिलाएंगे। साबिक रियासती वजीर दाखिला जी परमेश्वर नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। 12 कानून साज अराकीन भी आज वुजरा के तौर पर हलफ लेंगे। मुंतखब वजीर आला डी के शिव कुमार आज हलफ लेने वाले कानून साजों के अलावा साबिक वजीर आला सिद्धरमैया, बीजेपी के सीनियर लीडर बी एस येदियुरप्पा और जनता दल सेक्यूलर के सीनियर लीडर HD देवे

0: गौड़ा से आज सुबह मुलाकात की। हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजहबी रहनुमाओं, मजदूरों, अदीबों, अदाकारों और सरकर्दा कारोबारियों और सनतकारों को मदऊ किया गया है। हलफबरदारी की तकरीब के जाए मकाम लोक भवन की हिफाजत के लिए 3,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। अवाम के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात और 230 सरकारी बस स्टैंड्स पर बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि लोग हलफबरदारी की तकरीब का बराह रास्त नजारा कर सकें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने शमसी तवानाई की सालाना पैदावार की अपनी सलाहियत के मामले में अमरीका पर सबकत हासिल कर ली है और अब वो 2025 में शमसी तवानाई पैदा करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट बन गया है। भारत ने काबिल जिक्र 155 गीगावैट से ज्यादा नसब शुदा शमसी सलाहियत हासिल कर ली है, जिसकी बदौलत मुल्क की 50% गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत के अपने हदफ को हासिल करने और मुकर्रर वक्त से पहले ही अपने NDCs को पूरा करने में मदद मिलेगी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि तकरीबन 40,000 तलबा ने कामयाबी के साथ अपने जवाबी पर्चों की दोबारा जांच की दरख्वास्तें पेश की हैं और इस पूरे अमल को बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल कर लिया गया है। CBSE ने 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपियों में पाए गए मामलों के वेरिफिकेशन और उनकी दोबारा जांच से मुतालिक ऑनलाइन पोर्टल कल शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी वजीर चिराग पासवान का तहरीर करदा एक मजमून शेयर किया है, जिसमें लद्दाख में नए मौके और इम्कानात को उजागर किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लद्दाख का एक मुकामी बाशिंदा जिदर तराजी इख्तरा और मौके की एक दास्तान तहरीर कर रहा है। बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु इंडोनेशिया ओपन के सख्त शुरुआती मुकाबले में कामयाबी के बाद दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। वहीं मर्दों के सिंगल्स में आज HS प्रणॉय का मुकाबला आयरलैंड के नेट यूंगेन और आयुष शेट्टी का मुकाबला चीन के वेंग हेंगयोंग से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में लगी जबरदस्त आग में कम अज कम 21 लोगों की मौत हो गई। वजीर आजम ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और महलुकीन के अफराद खानदान के लिए 2,00,000 रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस बहरान का शिकार हो गई है क्योंकि पार्टी से निकाले गए रुकन असेंबली रितब्रता बैनर्जी ने मगरबी बंगाल असेंबली के तकरीबन 60 अराकीन असेंबली की हिमायत का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की तशरीह का दोबारा जायजा लेने के लिए आला इख्तियारात के हामिल माहिरीन का पैनल तश्कील दिया है। सीनियर कांग्रेस लीडर DK शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज मर्दों के सिंगल्स में HS प्रणॉय और आयुष शेट्टी अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2,00,000 rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritobrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And in Indonesia Open Badminton, HS Pranoy and Ayush Shetty to play in men's singles this afternoon. And now the news in detail. 21 people lost their lives and 40 others were rescued after a fire broke out at a hotel in Malviya Nagar in Delhi this morning. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said the fire has been successfully extinguished with the assistance of 8 fire tenders. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, the Prime Minister said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr.

0: widely expecting the central bank to maintain the status quo on interest rates amid volatile global conditions driven by the ongoing tensions in West Asia. The policy decision will be announced on Friday. The June review comes amid sustained geopolitical tensions and volatile global crude oil and gas prices, which have complicated the outlook. Debunking reports of gold sales, the Reserve Bank of India today said there has been no change in its physical gold stock, which remains steady at 880.52 tons. The clarification comes after reports suggested that the central bank may have sold gold worth approximately $12 billion to shield its foreign exchange reserves from the impact of the ongoing conflict in West Asia. The United Nations Weather Agency has warned that a moderate to possibly strong El Nino is likely to develop in the coming months, raising concerns over higher global temperatures and more extreme weather events. According to the World Meteorological Organization, warming sea surface temperatures in the central and eastern Pacific Ocean are driving the phenomenon. The agency has forecast above average temperatures across most parts of the world from June to August and said El Nino conditions are likely to persist until November. The IMD has forecast hot and humid weather over parts of the northeastern region and Odisha, Konkan, Goa and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has also predicted thunder squall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Telangana for today. In Indonesia Open Badminton, H.S. Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang in the men's singles this afternoon. In men's doubles, pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty suffered a setback after losing to Malaysia's Kai Shing Kang and Aaron Tai by 6-11 in their match today. Benchmark domestic equity indices were trading over 0.5% lower in the afternoon trade today amid geopolitical jitters. The Sensex lost 524 points to 74,125, while the Nifty fell 147 points to 23,336 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritabratha Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया. प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा. पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची. सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना. वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा. और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है. दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. एक रिपोर्ट.
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक

0: 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देशभर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि

0: कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृहमंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर अभी आप सुन रहे थे समाचारों की श्रृंखला। 2:30 इस वक्त हो चुके हैं और ये वक्त है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम का, तो आइए आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम को।

0: सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुषमा और मेरे साथ हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूं गौतम और मेरा भी नमस्कार श्रोताओं।
0: बिल्कुल, और ये आकाशवाणी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आकाशवाणी मनाने जा रहा है अपने पूरे 90 वर्षों का उत्सव।
1: बिल्कुल, और आज हम रेडियो के 90 गौरवशाली वर्षों का जो है भागी साक्षी रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी। तब से रेडियो ने देश को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो।
1: एक चीज ये भी कह सकते हैं कि रेडियो केवल एक माध्यम नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, संस्कृति और विश्वास का साथी रहा है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो गौतम। और जैसा कि आपने बताया कि 1936 में शुरू हुई आकाशवाणी ने देश के हर कोने को अपनी यात्रा के जरिए समाचार पहुंचाए। ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। आपको याद होगा गौतम, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। संगीत की बात हो, संस्कृति की बात हो, सब कुछ हमें आकाशवाणी ने दिया है। और सबसे जरूरी बात

0: जन जागरूकता से भी हमें जोड़ा है। और ये जो वाक्य है ना, ये आकाशवाणी है, आज भी करोड़ों लोगों की यादों में बसा हुआ है। आकाशवाणी ने बहुत कुछ दिया है हमें, जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना, किसानों तक जानकारी, युवाओं तक शिक्षा और कलाकारों को पहचान देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: जी बिल्कुल। और बात करें हम रेडियो के विषय में, और थोड़ा सा अगर बात करें तो रेडियो जो है आज भी अपनी सरलता, विश्वसनीयता और व्यापक पहुंच के कारण लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखता है।
0: बिल्कुल। याद है गौतम, जब हम छोटे थे कभी तो घरों में बड़े बड़े रेडियो सेट रखा करते थे, तब हम समाचार सुनते थे, या फिर बड़े बड़े टीवी के सेट रखा करते थे। लेकिन अब जो हमारा रेडियो है, हमारा चाहे एफएम गोल्ड हो, कोई भी चैनल हो, सिर्फ हमारी पॉकेट में आ गया है, मोबाइल में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं भी, आप चलते गाड़ी में चलते हुए सुन सकते हैं, आप पैदल चलते हुए सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, पैदल चलते हुए कहीं भी सुन सकते हैं। और सिर्फ सुन नहीं सकते, आप अपने मनोरंजन का माध्यम भी आकाशवाणी को बना सकते हैं। यानी हर चीज हमें मिलती है जो हम चाहते हैं, समाचारों से लेकर रोचक जानकारियां। और जब, क्योंकि ये किसानों के लिए कार्यक्रम है, हम किसानों की बात करते हैं, तो आज किसानों ने जो जितना फायदा लिया है, डिजिटलीकरण हुआ है और नई नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी तो आकाशवाणी का कितना बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि आकाशवाणी के जरिए हम इतनी सारी रोचक जानकारियां पहुंचाते हैं, नए नए हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं, हर विषय की जानकारी देते हैं, उन तक पहुंचता है। और ऐसे ऐसे माध्यम हैं, एप्लीकेशंस ऐसी हो गई हैं कि आप उसे डाउनलोड करें और आकाशवाणी से सारी जानकारी ले लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और एक चीज मैं और बात करना चाहूंगा, आज विश्व साइकिल दिवस भी मना रहे हैं हम लोग।
0: क्या बात है। और साइकिल जो हमारी सबसे पुराना वाहन कहूं, एक ऐसा वाहन जो सिर्फ हमें यात्रा पूरी नहीं कराता, हमारे स्वास्थ्य की यात्रा में भी योगदान देता है।
1: बिल्कुल। और आज हम अगर विश्व साइकिल दिवस की बात कर रहे हैं, तो साइकिल एक सरल, सस्ता, स्वास्थ्यवर्धक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का साधन है। नियमित अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है, प्रदूषण कम होता है और ईंधन की भी बचत होती है।
0: बिल्कुल। और जैसा कि देश में आह्वान भी किया जाता है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने पर आप अपने दुपहिया वाहन को अपने डेली दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, तो साइकिल बहुत ही अच्छी है। और आज विश्व साइकिल दिवस भी मना रहे हैं, हमने इस पर भी बात की। और मुझे उम्मीद है कि घर में जो बालकनी है ना, वहां पे जो साइकिल रखी है उसकी सफाई कर लीजिए आप।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो वो जंग खा रही हो और आप बस मेट्रो पेट्रोल खर्च कर रहे हैं और अपनी साइकिल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जरूर हमारा मतलब एक अनुरोध हो सकता है अपने श्रोताओं से।
1: बिल्कुल। और जो आज के बच्चे हैं वो भी बहुत साइकिल को पसंद करते हैं, और साइकिल भी आप देखेंगे विभिन्न तरीके के, छोटे सॉकर वाले साइकिल, मतलब बहुत अत्याधुनिक साइकिल भी आज उपलब्ध हैं, तो आप ले सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो चलिए, हम साइकिल पर बात हो गई हमारी, और आकाशवाणी 90 इयर्स अपने कंप्लीट करने जा रहा है 8 जून को, तो उस पर इतनी सारी जानकारियां, हमारा आकाशवाणी उत्सव भी मना रहा है, बहुत प्रोग्राम आ रहे हैं और डेली कुछ न कुछ चल रहा है। एपिसोड्स के जरिए भी हम आकाशवाणी की उपलब्धियों पर चर्चा होती है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा गौतम, कि आकाशवाणी ने किसानों के लिए बहुत कुछ दिया है, ठीक है, और किसानों के लिए बहुत कुछ दिया है और दे रहा है। तो आज भी कुछ आकाशवाणी के लिए ऐसा ही एक विषय लेकर आए हैं जो कि बहुत जरूरी है। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट, उनका परिचय करा देते हैं। बहुत देर से देख रहे हैं कि आप सुषमा कब बताने वाली है कि मैं भी स्टूडियो में हूं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद
0: जी। सर का परिचय दूं, सर हैं डॉक्टर राज सिंह, जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं हमारे सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में।
1: बिल्कुल। और विषय की बात करें हम लोग तो स्मार्ट कृषि, क्योंकि बहुत जरूरी है, अगर किसान भाइयों को स्मार्ट बनाना है और उनकी आमदनी को दोगुनी चौगुनी बढ़ानी है तो स्मार्ट कृषि के बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। तो आज का विषय भी वही है सुषमा जी, स्मार्ट कृषि, नवाचार खेती में डिजिटल क्रांति।
0: जी सर, तो इस पर हम किसानों से भी कहना चाहते हैं, अपने श्रोताओं से भी कहेंगे कि आप भी प्रतिभागी बन जाइए, फोन कर लीजिए हमें। फोन नंबर है 2342-1081 और दूसरा है 83। सर डिजिटल हम कृषि की बात करते हैं तो इससे क्या तात्पर्य है आपका?
2: जी सर्वप्रथम तो आकाशवाणी को 90 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने के लिए बहुत बहुत बधाई।
0: बिल्कुल हो रहे हैं 8 जून को।
2: जी आकाशवाणी का जो कृषि, खास रूप से जो कृषि तकनीकियां हैं उनको किसानों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
0: जी सर,
2: जिससे हमारे देश के बहुत सारे किसान लाभान्वित हुए हैं और उसका फर्क हमारे जो कृषि उत्पादन है उस पर भी बहुत पड़ा है। क्योंकि ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी है, जो आकाशवाणी एक किसानों तक पहुंचाने का टेक्नोलॉजी का उचित माध्यम रहा है। जहां तक बात आज का जो टॉपिक की हम बात

0: जो कर रहे हैं डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर अगर हम देखते हैं अपनी एग्रीकल्चर को, क्योंकि आज हमने जो खाद्यान्नों का उत्पादन जो लिया है, जो हो रहा है, वो लगभग 350 मिलियन टन से अधिक है, 354 मिलियन टन के लगभग। हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो कृषि है उसके सामने विभिन्न चुनौतियां भी आती जा रही
1: हैं। बिल्कुल सर,
0: जैसे खास तौर से अगर हम देखें तो हमारी जो लैंड है, जो खेती योग्य जमीन है, जो भूमि है, उसके जो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स जो है वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कम लैंड होल्डिंग्स होने की वजह से अधिकतर किसान, 82-86% किसान स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी में आ गए हैं, और ये ऐसे किसान हैं जिनकी लैंड होल्डिंग साइज 2 हेक्टेयर से कम है, और ये बड़ी टेक्नोलॉजी जो है उनको बियर करने में इतने सक्षम नहीं है। तो ये भी एक हमारी कृषि के लिए चिंता का विषय है, लैंड होल्डिंग साइज का कम होना। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन और जो मौसम की जो विषमता है उसके जो प्रभाव पड़ते हैं हमारी कृषि पे, वो भी एक कृषि के सामने चुनौती है। इसके अलावा हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका डिग्रेडेशन हो रहा, उनका कम हो रहे, खास तौर से पानी, सोयल फर्टिलिटी, इनका जो प्रभाव है, इनका जो कम होते जा रहे हैं, ये भी हमारी कृषि के लिए चुनौती का एक बहुत बड़ा कारण है। इस सबसे मिलके आज एक समस्या हो रही कि हम अपनी कृषि में अस्थायीपन, टिकाऊपन आगे तक कैसे बनाए रखें, क्योंकि हमारे संसाधन कम होते जा रहे हैं, हमारी लैंड होल्डिंग साइज कम होती जा रही है, दूसरे क्लाइमेट चेंज का प्रभाव कृषि पर पड़ना निश्चित है, उससे भी प्रभावित होगी। तो ऐसी स्थिति में डिजिटल एग्रीकल्चर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, क्योंकि डिजिटल एग्रीकल्चर की जो विभिन्न जो तकनीकियां हैं, अगर हम उनका प्रयोग करें तो इनके प्रयोग से किसान फैसले लेने में, अपनी फसल के लिए क्या कृषि की गतिविधियां की जा सकती है, उचित फैसला लेने में सक्षम हो सकता है। जो हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उनकी जगह जो इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यूज करके अधिक उत्पादन ले सकता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे संसाधन है, खास तौर से पानी है या पोषक तत्व है, उनका अधिक इफिशेंसी, उनकी अधिक क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें डिजिटल एग्रीकल्चर का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। और खास जो किसान को अधिक लाभ के लिए जो चाहिए मार्केटिंग, उचित मार्केटिंग, उसमें भी डिजिटल एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए डिजिटल एग्रीकल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम लोग बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कृषि क्यों महत्वपूर्ण है?
0: जी, डिजिटल कृषि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो हमारे किसान स्मॉल और मार्जिनल है
1: जी,
0: उनकी इनकम कम है,
1: बिल्कुल
0: वो ज्यादातर जो है टेक्नोलॉजी को बियर करने में उतने सक्षम नहीं है। इसलिए अगर हम डिजिटल एग्रीकल्चर जिसमें एफपीओज हैं हमारे, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या कोऑपरेटिव मूवमेंट है, उनके द्वारा जो डिजिटल एग्रीकल्चर के विभिन्न जो टेक्नोलॉजीज है, खास तौर से जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजीज है,
1: बिल्कुल
0: इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर है, ये जो अगर इनको अपनाएं तो इसमें, और जो मार्केट जैसे गवर्नमेंट ने ई नाम भी स्टार्ट किया हुआ है, तो अगर ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जिनकी इनकम कम है वो डिजिटल एग्रीकल्चर को फॉलो करें तो वो भी अच्छी अपनी खेती से अच्छी इनकम ले सकते हैं। इसलिए हमारे देश के खास तौर से जो हमारे 86% फार्मर्स हैं स्मॉल और मार्जिनल, उनके लिए डिजिटल एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।
2: जी सर, तो आप डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो बात आती है टेक्निक्स की, तो कौन कौन सी ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं, तकनीक हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, मिट्टी के लिए कौन सी तकनीक हम इस्तेमाल करें, बीजों में क्या हम बदलाव ला सकते हैं, तो सर एक एक करके हम जानेंगे सभी चीजें।
0: डिजिटल एग्रीकल्चर में अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी जिनमें से जैसे IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सेंसर बेस्ड होती है, इसके द्वारा भूमि की

0: जो स्वेल मास्टर है उसका स्टेटस मालूम कर सकते हैं, स्वेल टेम्परेचर, जो ह्यूमिडिटी है, स्वेल हेल्थ है, उसके बारे में मालूम करके हम रियल डेटा टाइम वो एनालिसिस करके हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं, या अपने खेत में जो उचित समय पर उचित मात्रा में उचित जो चीज है इनपुट से उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल को उचित समय पर अच्छा न्यूट्रिएंट या अच्छा डिजीज मास्टर मिल जाए, और जिससे कि हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो अधिक से अधिक हो, जिससे कि हमारा फसल उत्पादन वो भी अच्छा हो और किसानों को अधिक लाभ मिले। एक तो हुई IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ड्रोन। आजकल जो ड्रोन है, ड्रोन और सैटेलाइट, इसके द्वारा जो हमारा खेत है उसकी इमेजरी यानी कि पिक्चर ले सकते हैं, और पिक्चर लेने से हमको ये मालूम हो जाता है कि खेत के किस हिस्से में न्यूट्रिएंट की कमी है, कहाँ फसल को न्यूट्रिएंट चाहिए। उसके अलावा वीड्स, खरपतवार, कहाँ खरपतवार हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। डिजीज का इन्फेस्टेशन किस एरिया में है उसका कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा पानी की, क्रॉप में अगर मॉइस्चर स्ट्रेस हो रही है तो हमको इमेज से पता चल जाएगा कि इस फसल के या खेत के इस हिस्से में मॉइस्चर स्ट्रेस है, इसलिए इसमें जो सिंचाई देनी आवश्यक है, जिससे कि हम इरिगेशन शेड्यूलिंग और प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सही टाइम पर खेत में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ड्रोन का एक और फायदा है कि इसके द्वारा हम पेस्टिसाइड्स या न्यूट्रिएंट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने में जो हम अपने पारंपरिक तरीके अपनाते हैं जैसे जो स्प्रे के द्वारा करते हैं उसके मुकाबले एक बटे 20 का हिस्सा, यानी कि अगर हम स्प्रे से लगभग 300 से 400 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर अप्लाई करते हैं तो ड्रोन के द्वारा एक हेक्टेयर 20 लीटर से आसानी से कवर किया जा सकता है। उसी के अनुपात में हम जो पेस्टिसाइड डालते हैं उसकी भी काफी मात्रा में बचत की जा सकती है, और उसका यूनिफॉर्मली स्प्रे किया जा सकता है और समय की बचत की जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: जब दूसरा हो गया ड्रोन, तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है डेटा एनालिसिस।
1: बिल्कुल।
0: जो हमारे जो फसल से या जो डेटा है हम उनको एनालिसिस करके, उनकी स्टडी करके हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस खेत में या इस फसल में, इस क्षेत्र में ये बीमारी लगने वाली है, ये फोरकास्ट हो सकता है, या वेदर का फोरकास्ट हो सकता है, या उसमें जो विभिन्न आउटब्रेक्स हैं इंसेक्ट्स का है, या उनके बारे में मालूम करके हम विभिन्न टेक्नोलॉजी द्वारा जैसे मोबाइल एप्स हैं अब उनके द्वारा जो किसानों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और किसान जो उसका सही समय पे उपचार करके अपनी फसल में होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल सर, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि तीन तरह की चीजें
0: नहीं और भी हैं।
2: हाँ, तो इनके अलावा और
0: जी,
2: क्या-क्या
0: GPS सिस्टम। GPS सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि GPS सिस्टम के द्वारा ये जो हम जो मशीनरी अपने खेत में चलाते हैं खास तौर से प्रिसीजन फार्मिंग में उसको गाइड करता है, जिससे कि आपके खेत में यूनिफॉर्मली ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशंस का रिपीटिशन जो हो वो बचेगा, जिससे कि आपकी लागत में कमी आएगी, आपकी सही मात्रा में इनपुट्स पड़ेगी और सही समय पर आपकी फील्ड एक्टिविटी होगी, जिससे कि आपका फसल का उत्पादन अच्छा होगा। इसके अलावा ऑटोमेटेड सिस्टम, जैसे आजकल ऑटोमेटिक ट्रैक्टर आ रहे हैं, उससे किसान जो है जो क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर जो है अभी भी लेबर ओरिएंटेड है काफी, जिस जो कि कई जगह लेबर की समस्या भी है, कई जगह अब महंगाई भी हो गई है,
2: शहरीकरण बहुत ज्यादा हो,
0: शहरीकरण बहुत हो गया है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाती है, जो AI के जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, चाहे मशीनरी हो, ट्रैक्टर हो या दूसरे एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके द्वारा हम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए

प्रयोग करके हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन, जो हमारा फसल उत्पादन से मार्केटिंग तक का जो एक सिस्टम है, क्योंकि हमारे जो किसान जब बेचता है तो उसमें काफी मिडिल मैन जो इन्वॉल्व हो जाते हैं और किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, उसको ये आइडिया नहीं लग पाता कि कब कौन सी माल या सब्जी की खेती कर रहा है।

0: जो है वो सिस्टम डेवलप है एआई इसमें एग्रीकल्चरल डिजिटल एग्रीकल्चर में, तो उसके द्वारा किसान अपने फसल उत्पादन का अधिक से अधिक मार्केट में लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये डिफरेंट डिजिटल एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी हैं जिनको प्रयोग करके किसान भाई अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बात की है जिसमें जीपीएस हो, आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला था, आपने ड्रोन सिस्टम भी बताया।
0: जी
1: और क्योंकि आपने मिट्टी का बताया कि मिट्टी की जांच बहुत आसानी से हो सकती है, इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या ऐसी विधियां हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर सरकार क्या किस तरह से बढ़ावा दे रही है डिजिटल खेती,
0: डिजिटल एग्रीकल्चर को? हमारे देश जो है दुनिया में डिजिटल एग्रीकल्चर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग हमारा नंबर जो है दुनिया में भी तीसरे स्थान पर है, और उम्मीद है और आगे बढ़ेंगे क्योंकि सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ावा दे रही है। सरकार ने काफी प्रोग्राम भी स्टार्ट किए हुए हैं, और इनमें कुछ प्रोग्राम हैं जिनमें अभी बजट 2026 के बजट में भारत विस्तारा ये एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है
2: जी।
0: इसमें जितने भी अपने डिजिटल एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजीज हैं इनको अधिक से अधिक किसानों के यूज के लिए प्रयोग करना है और डिलीवरी सिस्टम को बढ़ाना है
2: जी।
0: और दूसरे जो प्रोग्राम है उनसे लिंक करना है, और किसान जो हैं उनकी जो जमीन का अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो किसान जो है उससे लिंक हो सकते हैं, उनको एक यूनिक नंबर मिलेगा और उससे किसान जो गवर्नमेंट स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने 2024 में लॉन्च किया था। इससे जो हमारे जो एग्रीकल्चर के जो किसान हैं वो काफी लाभ कमा सकते हैं। जो एक और बताना चाहूंगा मैं, जो भारत विस्तार प्रोग्राम है उसमें जो हमारे पोर्टल्स हैं उसके साथ जो आईसीआर की टेक्नोलॉजी है, आईसीआर की टेक्नोलॉजी को एआई सिस्टम के द्वारा इंटीग्रेट करके उसको जल्दी से जल्दी किसानों तक कैसे पहुंचाए, उसका भी किसान जो है ये भारत विस्तार प्रोग्राम के द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम सम्मान निधि प्रोग्राम चल रहा है, उसमें पीएम सम्मान निधि एक मोबाइल एप्स भी है, तो किसानों के खाते में जो है वो डिजिटली जो है इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, किसान उसको फायदा होता है, और उसमें किसान को जो है बिना परेशानी के उसके अकाउंट में पैसा विद इन ए सेकेंड्स में पहुंच जाता है।
1: 22वीं किश्त जा चुकी है
0: जी हाँ। तो ये भी ई मित्र, किसान ई मित्र ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जो 2023 में चलाया है
2: जी।
0: सरकार ने जो स्टार्ट किया था, तो जो किसान की स्कीम्स हैं उनके बारे में जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या किसान सम्मान निधि प्रोग्राम इसके बारे में या दूसरे जो स्कीम है गवर्नमेंट स्कीम, अगर किसान भाइयों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो मोबाइल ऐप के द्वारा जो है इसके बारे में किसान ई मित्र के थ्रू इसमें मालूम कर सकते हैं
2: जी।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कई तरह से विभिन्न प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, और एक नेशनल पेस्ट सर्विलेंस प्रोग्राम है जिसमें एक एप्स है, उस एप्स में एक्सटेंशन वर्कर या किसान जो हैं अब मोबाइल ऐप के थ्रू अपने उसका अगर फसल में कोई कीट लगा हुआ है या बीमारी लगी हुई है तो उसका फोटो अपलोड करके इमीडिएटली उसका क्या उचित जो उसका कैसे उस बीमारी को या उस इंसेक्ट को खत्म करके किसान अपनी फसल में होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं उसकी जानकारी इमीडिएटली किसान को मिल सकती है।
2: बिल्कुल,
0: तो इस तरीके से कई प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हुए हैं और काफी किसान भाई इसमें लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं
1: जी। बिल्कुल सर, डॉक्टर राज सिंह बहुत अच्छे से आपने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे चुनौतियां तो हर उसमें होती हैं, तो किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि टेक्निकल चीजों में हमेशा कहीं ना कहीं चुनौती जरूर है।
0: जी
1: जी,

0: सबसे पहली तो बात यह है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उनमें इनिशियली अधिक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है
1: जी।
0: जो स्मॉल और मार्जिनल जो किसान है उनको थोड़ा सा वो, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें भी जैसे ड्रोन है, ड्रोन की खरीद पर किसानों को गवर्नमेंट जो 50% तक सब्सिडी दे रही है
1: जी।
0: जो हमारे एफपीओज हैं उनको 75% तक सब्सिडी मिलती है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो एक पीएम दीदी एआई टेक ये डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है उसमें उनको 80% तक सब्सिडी मिलती है ड्रोन की खरीद पर
1: जी।
0: लेकिन जो किसान भाई ड्रोन खरीदे वो उसी डीलर से खरीदे जो डीजीसीए से जो है उससे अप्रूव्ड हो।
1: बिल्कुल।
0: तो इसमें जो इनिशियली कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट है जो किसानों के लिए एक बाधा है उसमें सरकार काफी सहयोग दे रही है, लेकिन किसान भाई इसके अलावा अपना कोऑपरेटिव सिस्टम बना के उसके भी थ्रू भी ड्रोन खरीद सकते हैं और उसमें गवर्नमेंट से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सर।
0: दूसरे नॉलेज, क्योंकि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इनके ज्ञान के लिए इनको प्रयोग करने के लिए किसानों को नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है
2: जी सर।
0: तो बहुत से एरिया ऐसे हैं जो हमारे इंटीरियर क्षेत्र के हैं जो किसानों को अभी तक इतनी नॉलेज नहीं हुई है, हालांकि विभिन्न जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है उनके थ्रू किसानों को विभिन्न ट्रेनिंग के द्वारा विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रोग्राम्स की इनकी डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज दी जा रही, लेकिन एक नॉलेज लैक ऑफ नॉलेज ये भी एक बैरियर है, ये भी एक चुनौती है किसानों के लिए। तीसरा जो डिजिटल एग्रीकल्चर में है कि इसमें जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उसका सभी जो किसान है वो सभी क्षेत्र के वो प्रॉपरली जो उसको यूज नहीं कर पा रहे,
2: ट्रेनिंग की जरूरत है,
0: उनको ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए इसमें कई चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों को भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, विभिन्न संस्थान द्वारा विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं।
2: हाँ जी।
0: तो जरूर किसानों को डिजिटल एग्रीकल्चर के द्वारा बहुत फायदा होगा।
2: बिल्कुल सर। एक छोटा सा हम अंतराल ले रहे हैं, फिर आते हैं, कुछ जरूरी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आपसे।

0: बिल्कुल, बहुत ही लोक संगीत है तीसरी किस्म का। और जाते जाते हम बस सर से जानना चाहते हैं इम्पोर्टेंट चीज, जो कि डिजिटल हमारी खेती की बात हो रही है, तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं सर?
1: जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए और उसका जो किसान का जो उत्पाद है उसमें जो बाजार से उसका मूल्य है उसको अधिक से अधिक मिले, उसके लिए डिजिटल एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण है। और किसानों को, अधिक से अधिक किसानों को, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या केवीकेज हैं या गवर्नमेंट कृषि विभाग हैं, उनके पास जाके संपर्क करके डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में मालूम कर सकते हैं और इससे अधिक से अधिक लाभ लेकर अपनी खेती का, फसलों का उत्पादन बढ़ाकर अपनी खेती से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। तो इसमें किसानों को चाहिए सबसे कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। किसान भाई जितने भी एक्सटेंशन वर्कर या जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके संपर्क में रहेंगे
0: और तो सारी जानकारी लेते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राज सिंह जी, आज आप हमारे साथ रहे। और डिजिटल खेती क्या होती है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर आपने सर बेहद अच्छी जानकारी दी है और मुझे उम्मीद है किसान जरूर लाभान्वित होंगे।
2: बिल्कुल, और कार्यक्रम के
0: और इसी कार्यक्रम को हम अब समाप्ति पर आ गए हैं, तो यानी मैं सुषमा और मेरे साथ गौतम आपसे चाहते हैं अनुमति दीजिए, इजाजत।
2: बिल्कुल, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन, ये तुषार परासर, और संयोजक थे शिवनंदन लाल
0: जी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिये में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और पीड़ित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार के रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय

0: विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रतिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें ऋतव्रता बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखुजनाम को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृहमंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नेहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Twenty-one people lost their lives and 40 others were rescued after a fire broke out at a hotel in Malviya Nagar in Delhi this morning. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said the fire has been successfully extinguished with the assistance of 8 fire tenders. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, the Prime Minister said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund to be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Prime Minister Narendra Modi today met the chairman of the Rashtriya Swatantra Party of Nepal, Rabi Lamichhane, in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that Nepal is a priority partner under India's Neighbourhood First policy. He added that India looks forward to collaborating with the new government to elevate the special and multifaceted relationship between the two countries to greater heights. The Prime Minister also welcomed the desire of Mr. Lamichhane to work closely together for a shared and prosperous future. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said the tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
1: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक तो विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीवीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं। जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर शुरू हो चुका है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। बशीर बद्र साहब भुलाए नहीं भूलते, उन्होंने एक बार फरमाया था, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। जी हाँ, मन बदलो तो आपके आसपास सब कुछ बदलता है, कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और मित्रों, ये कलयुग है, कलयुग यानी करयुग, कर यानी हमारे हाथ, तो जो हाथ से मेहनत करते हैं और जिसका मन लक्ष्य पर केंद्रित है उसकी तो जीत ही जीत है। लेकिन हाँ, जो आलसी है, जो सोया हुआ है, उसकी किस्मत भी सोई हुई है। तो आओ जागो हमारे साथ और हमें भेजो ईमेल fmgoldairdelhi@gmail.com पर। आप सुन रहे हैं मन भावन, जल्दी से अपनी फरमाइश भेजिए। आपके साथ है हम रूमी मलिक।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: नमस्कार, मैं जयश्री अरोरा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो की लत मुझे बिल्कुल बचपन से पड़ी थी। मेरी माताजी रेडियो प्रेस सुनने की बहुत शौकीन थी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं रेडियो आर्टिस्ट भी बन गई और प्रोग्राम किए, इतना कुछ सीखा। बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स निर्मला अग्रवाल, दीनानाथ जी, सत्येंद्र, शरद, शैलेंद्र जी, सुशील बैनर्जी, कमल दत्त, सुदर्शन जी, दानिश इकबाल, इन सबके साथ काम करके इतना कुछ सीखा। और जब टेलीविजन के लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ ये आकाशवाणी की देन है। तो आज इस उपलक्ष पर हम सब इतने खुश हैं, और तरक्की करे आकाशवाणी, और इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

एफएम गोल्ड 90 साल की हो गई हमारी आकाशवाणी। इसी उपलक्ष में आज 3:30 बजे आप हमारी पूर्व कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर ऋतु राजपूत से चर्चा सुनेंगे। बहुत आनंद आएगा, आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, और हमारे साथ ढेर सारे लिसनर्स जो जुड़ चुके हैं उनके नाम ले लें। बोधराज खोरवाल जी, कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश, ये सुनना चाहते हैं फिल्म राजकुमार से गीत तुमने पुकारा और हम चले आए। लेकिन बोधराज जी आपकी इजाजत से बाकी लोगों के नाम भी तो लेने दो। मास्टर अशोक कुमार, दिग्दर्शन कौर ये दिग्दर्शन कौर जी देखो क्या लिखती है, रूमी मालिक जी नमस्कार, आप जल्दी जल्दी आया कीजिए, आज अधिक मास के बारे में कुछ बताइए, बताओ जरा। देखो लूनार कैलेंडर जो है ना, उससे क्या होता है कि हर साल कुछ कुछ दिन बचते हैं और हर 3 सालों में 1 महीने जितना समय 30 दिन और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास की संज्ञा दी। और आपको ये बड़ा एक कमाल की पौराणिक कथा है कि अब हर मास के कोई ना कोई देवता होते हैं, पर इस मास को किसी ने नहीं अपनाया तो ये रोता हुआ गया भगवान विष्णु के पास। फिर वाकई में कथा ये कहती है, तो भगवान कहते हैं कि देखो ये मास जो है ये सबसे उत्तम मास होगा, इसे मैं अपना नाम देता हूं। और भगवान का क्या नाम है? पुरुषोत्तम। तो ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास है, जिसमें पाठ पूजा, दान दक्षिणा, जप तप की बहुत ज्यादा महिमा है। देखो ये जो राशि होती है ना, इससे हमारा एस्ट्रल शरीर बनता है। हाँ हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना भाई हमारे यहाँ तो बहुत प्रचलन है नजर लग गई, तो नजर लगती है कहाँ है? नजर लगती है आपकी बॉडी के अराउंड ना, सटल बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर होता है, उस पे जाके चिपकती है। तो कोई नजर वजर, कोई भी किसी के तंत्र जादू टोना कुछ असर कर ही नहीं सकता अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है। कुछ लोग आप मिलते हो कि लगता है अरे और क्या बंदा था या क्या बंदी थी, ऐसे बोलते हैं ना लोग, है ना, क्या पर्सनैलिटी है। वो क्यों होता है? एक तो उन्होंने अपने आप को गढ़ा होता है। जैसे शुरुआत में ही मैंने मेहनत की महिमा के बारे में बोला, मेहनत करोगे तो सचमुच में निखार आएगा आपकी शख्सियत में। और फिर ऊपर वाले का नाम लोगे तो फिर कहना ही क्या। थैंक यू दिग्दर्शन कौर जी। हरजिंदर शिंदा हमारे साथ में है, विजय सुरालकर भी है, नाम ले लू ना थोड़े, राजेश खोबरखेड़े, मोहम्मद सैयद अब्बासी जी, हरजिंदर सिंह भाटिया, सुरेश नारंग हो गए ना, आगे चलते हैं। जय हमारे साथ में है और अगला पेज देखती हूँ। ताज मोहम्मद है, मोहम्मद खलील कुरैशी साहब है, ठीक है, और विजय सुरालकर जी हैं, आप लोग ना, मेयर अरोड़ा हैं, श्री कृष्ण बाथे हैं, कमलकांत गुप्ता हैं। When you send repeat mails, जब आप बार बार एक व्यक्ति बहुत सारी मेल्स भेजता है ना तो कुछ मेल्स खो जाती है। मस्कीन दादा है, रविन्द्र मोहन दास है, ठीक है। तो बोधराज जी, अब मेरा ख्याल से राजेश्याम देवांगन, अनंत वाडे, किसान सपकल, आर कुमार, कुमकुम जी तो अब मैं कह रही थी आज एचआर पांड्या जी भी हमारे साथ में है, मोहम्मद कमर है, सोहेल शेख है, आइए सुन लेते ना ये गाना तुमने पुकार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन। श्री कृष्ण बाथे हमारे साथ जुड़े हैं नांदुरा महाराष्ट्र से। इनके साथ संदीप और अमूल्य हैं और ये सुनना चाहते हैं गीत सारे शहर में आपसा कोई नहीं कोई नहीं। बड़ा ही जोशीला गाना है, अच्छा गीत है, बैराग फिल्म से है। सुनते हैं ये गीत।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष में हम लेकर आए हैं विशेष श्रृंखला आकाशवाणी के संग यादों के रंग। इस श्रृंखला में हम उन विशिष्ट व्यक्तित्व से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने आकाशवाणी की यात्रा को अपने योगदान से समृद्ध किया है, और इस क्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋतु राजपूत, जो आकाशवाणी दिल्ली में पूर्व सहायक निदेशक और कार्यक्रम प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वे एक कुशल प्रसारणकर्मी, प्रभावशाली कमेंट्रेटर के साथ साथ हिंदी भाषा पर उनकी पकड़, सशक्त अभिव्यक्ति और प्रसारण कला में उनकी दक्षता ने उन्हें श्रोताओं के बीच एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। तो हम स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर ऋतु राजपूत जी का। नमस्कार ऋतु जी।
1: नमस्कार प्रभा।
0: सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है और इन 90 वर्षों में लगभग 38 साल का आपका भी कार्यकाल रहा है। तो 90 साल में आपका 38 साल का जो कार्यकाल रहा है, तो ये इतनी लंबी गौरवशाली जो यात्रा आकाशवाणी की रही है, उसको आप किस रूप से देखती हैं?
1: कृपा जी, आपने कहा 38 साल, मुझे तो लगता है कि जब मैं पैदा हुई थी तभी से शायद मेरी रगों में आकाशवाणी प्रवाहित होने लगी थी। एक कहते ना कि बचपन के जो कार्यक्रम होते हैं, बाल कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित होते रहे हैं।
0: जी,
1: उनका हिस्सा बनना, फिर युवाणी कार्यक्रम का हिस्सा बनना, फिर अनाउंसमेंट

0: उनका हिस्सा बनना, फिर ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और सिलसिले बार बहुत सारी रेडियो की जो विधाएं हैं उनसे जुड़ना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं ये बहुत बेबाक होकर कह सकती हूँ कि मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में माता पिता ने जन्म दिया, संस्कार दिए और गुरुजनों से शिक्षा पाई, लेकिन जीने का सलीका, नफासत, नजाकत, जो भी कुछ कहें, व्यवहार कुशलता अगर सीखी तो सिर्फ आकाशवाणी से।
1: जैसे कि आपने बताया कि आकाशवाणी आप बचपन से ही सुनती आ रही हो, तो पहला परिचय कैसे हुआ, यानी कि कौन सा प्रोग्राम आपने सुना होगा पहले, उसके बारे में बताइए। और साथ ही जैसे कि हम आपके बारे में जितना मैं जानती हूँ कि आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, तो आपके पास विकल्प तो बहुत होंगे अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए, लेकिन आपने आकाशवाणी और प्रसारण क्षेत्र में आने को चुना, तो यहाँ आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: वास्तव में मैं ये कहूँ कि जब हम 10th में थे या 11th या 12th कर रहे थे, तो उस समय सुनने का और मनोरंजन का और ज्ञान पाने का अगर कोई माध्यम था और सशक्त माध्यम था, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आज भी है, तो वो आकाशवाणी रहा। और उस पे इतने प्रबुद्ध जनों का बोलना, सुनना, ज्ञान मिलना, मनोरंजन करना और वृहद सूचनाओं का मिलना, तो एक जखीरा जिसे कहें कि भंडार था ज्ञान का आकाशवाणी, और आज के दौर में भी है। तो आकाशवाणी से खुद ब खुद आप आकृष्ट होते चले गए, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख रहे थे, बहुत कुछ जान रहे थे। और ये एक अच्छी बात रही कि पत्रकारिता, अगर अखबारों की बात करें या मैगजीन्स की बात करें, पत्रिकाओं की बात करें, तो उस दौर भी एक से एक पत्रिका निकलती थी जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, धर्मयुग कहें या और बहुत सारी, साप्ताहिक हिंदुस्तान कहें, नवनीत कहें, कादम्बनी कहें, बहुत सारी किताबें आया करती थी और हम उन्हें पढ़ रहे थे। लेकिन पढ़ते पढ़ते कहीं कोई ऐसी जगह जहां पे आपकी सुई अटक जाती थी, तो फिर वो जो ज्ञान चक्षु खोलते थे उसे खोलने का काम आकाशवाणी करता था। खूबसूरत कार्यक्रम, मीठी आवाजें, उनको सुनना, उनको गुनना और खास करके आपका उच्चारण उनसे सीखना, तो ये सब चीजें इतनी ज्यादा थी कि आप खुद ब खुद आकृष्ट हो गए और सोचा कि क्यों ना हम भी इस दिशा में आगे बढ़ें। और प्रबल सौभाग्य ये रहा कि आकाशवाणी नजीबाबाद उस समय खुल रहा था, उसका उद्घाटन होने वाला था।
1: अच्छा।
0: ये बहुत पुरानी बात है, तो उस दौर में कुछ हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स थे जो हमारे स्कूल में आए, हमें स्टेज पे देखा, हमें वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सुना, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को क्यों ना मौका दिया जाए।
1: अच्छा। जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: उस समय तो वो लोग नई नई प्रतिभाओं को तलाश रहे थे, ताकि नए नए प्रसारण शुरू हो सके। तो यहाँ से सूत्रपात हुआ और आकाशवाणी जो हमारी तपोभूमि है, आराधना स्थल है, वहाँ पे प्रवेश मिला।
1: और जैसे कि हमारा ये कार्यक्रम FM गोल्ड पर जा रहा है, और डॉक्टर रितु जी, FM को इस लेवल तक पहुँचाने में आपका भी बहुत योगदान रहा है, वो हम जानेंगे बाद में, लेकिन क्यों ना आपकी पसंद का कोई गीत सुन लेते हैं?
0: मेरी पसंद पे बहुत सारे गीत हैं, लेकिन मैं चूंकि पुराने संगीत की शौकीन हूँ, तो आप अगर हमें ममता फिल्म का एक गीत सुनवा दें, गीत के बोल कुछ यूं हैं, रहे ना रहे हम।
2: रहे।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग और हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋतु राजपूत जी। तो डॉक्टर ऋतु, ये बताइए कि आप आकाशवाणी दिल्ली में कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं, कार्यक्रम प्रमुख के रूप में भी आपने काम किया है, तो इस पद पर रहते हुए प्रशासन और प्रसारण की जिम्मेदारी आपने निभाई है, बहुत अच्छे से निभाई है। उस समय का कोई अनुभव या कोई यादगार जो पल रहा है वो साझा करिए।
1: बिल्कुल, मैं ये सबसे पहले तो चूंकि आप FM गोल्ड पर ये कार्यक्रम कर रही हैं, तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जब FM 1 की अगर हम बात करते हैं, जो आज FM रेनबो के नाम से जाना जाता है, या हम FM 2 की बात करते हैं जो आज FM गोल्ड के नाम से जाना जाता है, 1998 में आपको मैं ले चलती हूँ, फरवरी का महीना, जब FM गोल्ड से पहले FM 1 यानी रेनबो, जो आज का रेनबो है, उसका पदार्पण हुआ और वो हाथों हाथ, जिसे कहना चाहिए, श्रोताओं ने उसे हाथों हाथ लिया और ऐसे उसका जादू सर चढ़ के बोला कि एक दीवानगी का आलम हर कार में, हर जगह जहां आप देखें आप FM सुन रहे हैं। फिर उसके बाद ये FM गोल्ड का सिलसिला शुरू हुआ जो 2001 की मैं अगर बात करूं तो, लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी थी क्योंकि उस समय बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स भी आ रहे हैं। अब आप चूंकि आकाशवाणी है और आकाशवाणी एक लोक सेवा प्रसारण का काम करता है और उसका एक अपना वो है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फिर मनोरंजन शिक्षा सूचना, इन सारे तथ्य को वो लेकर के चलता है, तो उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश इस बात की नहीं होती कि आप कहीं भी अपने मार्ग से विचलित हो जाएं, यानी आपकी भाषा, आपकी शुद्धता, आपकी विश्वसनीयता, आपकी पारदर्शिता, आपका संगीत, आपका उच्चारण, मतलब हर चीज परफेक्ट 100 में से 100 नंबर होने चाहिए, कहीं कोई अशुद्धि की गुंजाइश नहीं है। और ऐसे में जब वो प्राइवेट चैनल्स नए अंदाज के ऐसी भाषा लेके आए जिसे हम हिंग्लिश कहते हैं, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, तो वो एक चुनौती थी हमारे लिए कि हम अपने आप को कैसे खड़ा रख पाए और कैसे उनके बीच अपनी जगह बनाए। और उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा आकाशवाणी के विविध कार्यक्रमों का। FM गोल्ड पे इतनी वैरायटी थी प्रोग्राम्स की, उस सब एक दीवानगी का आलम रहा कि डॉक्टर

0: करण सिंह एफएम गोल्ड की बात कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी गोल्ड की बात कर रही हैं, कोई भी आता था तो वो सबसे पहले जिक्र करता था कि भाई आपका आकाशवाणी एफएम गोल्ड तो कमाल का, इसमें क्या गाने आते हैं, क्या प्रस्तुति है, क्या एंकर है। तो वो चुनौती हमें झेलनी थी प्राइवेट चैनल्स के साथ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि हम पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहे और न सिर्फ खड़े रहे बल्कि पहले पायदान पर भी पहुंचे।
1: बिल्कुल।
0: और ये सिलसिला अभी तक चला आ रहा है और चलता यूं भी रहेगा, क्योंकि हमने कोई समझौता नहीं किया किसी भी चीज से। इस व्यावसायिकता के दौर में भी आकाशवाणी ने अपनी जगह बरकरार रखी है
1: और इसको इस मुकाम तक पहुंचाने में आपकी लगन और आपका योगदान भी बहुत रहा है। आपने ऐसे ऐसे कार्यक्रम इसमें शुरू करवाए जो अभी तक चल रहे हैं।
0: ये तो मैं यूं कहूंगी कि आपका बढ़प्पन है कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे नए कार्यक्रमों से हम खुद जुड़े। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों बाहर हमको ढूंढेंगी, दिल ही तो है का मेरे मन का, फिर शाम का अंदाजे बयां, फिर दरीचा, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। रेडियो रील की अगर मैं बात ना करूं तो ना इंसाफी होगी। और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम रहा है एफएम गोल्ड का। लेकिन खूबसूरती ये है प्रभा कि एफएम गोल्ड पर चाहे शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए कार्यक्रम हो या आंखों देखा हाल हो या राष्ट्रीय स्तर के प्रसारण, चूंकि कहीं ना कहीं वो आपको समाचारों के बीच में आपको अपडेट करते चलते हैं, आपको सुनने को मिलते चलते हैं, तो ये बहुत बड़ी पूंजी है हमारी, बहुत बड़ी विरासत है हमारी जिसे हमें संजो के रखने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छे से चले आ रहे हैं, लेकिन आज के दौर में बहुत कठिन है क्योंकि ओटीटी का जमाना है और आजकल पॉडकास्ट का जमाना है, वेब रेडियो आ गया है, ऑनलाइन चीजें आ रही हैं। तो रेडियो से श्रोताओं को बांधे रखना, जोड़े रखना एक बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए। और वो चैलेंज तब तक हम उसमें आगे नहीं निकल पाएंगे कि एक तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा इस चीज से जोड़ें कि जो श्रोता चाहते हैं बिना अभद्र हुए, जो हमारी शालीनता है उसको बिना खोए हुए हम अपने श्रोताओं को कुछ ऐसा दें कि वो बाध्य रहे हमें सुनने के लिए, चाहे संगीत के माध्यम से, चाहे जानकारी के माध्यम से, चाहे उच्चारण के माध्यम से। उच्चारण पे मैं बार बार जोर इसलिए देती हूँ कि आजकल बहुत सारी, चाहे अंग्रेजी की बात करें, हिंदी की बात करें या उर्दू की बात करें, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कई बार अशुद्ध सुनने को मिलते हैं। तो रेडियो तो मानक है, एक पैमाना है, आपको सिखाता है, आपको बताता है, बहुत से बच्चे आपको सुन के सीखते हैं। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
1: आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और जैसे कि आपने बताया कि चैलेंजेस जो हैं बहुत सारे हैं और उसको हमें पार करना है, ऐसे ही कई चैलेंजेस आपने भी अपनी जिंदगी में पूरे किए। उनमें से एक है अच्छे कमेंट्रेटर का। आपने लाल किले से राष्ट्रीय पर्वों की कमेंट्री की है और बहुत उम्दा कमेंट्री की है, उस अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। और साथ ही ऐसी जिम्मेदारी निभाते हुए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे।
0: प्रभा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। और एक अच्छा कमेंटेटर बनना सिर्फ आवाज पर निर्भर नहीं करता है। जब तक आपके पास व्यापक जानकारी ना हो, दूर तक देखने की दृष्टि ना हो, आपके पास अच्छी शब्दावली ना हो, आपके पास जब आप कमेंट्री करते हैं तो आप कितने व्यवहार कुशल हैं, आप कितने वोकल हैं, आप कितना खूबसूरती से चीजों को देख सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि कमेंट्री में सिर्फ आपकी आवाज काम नहीं करती, आपकी ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं। श्रोता को आप अपनी दृष्टि से वो दिखाते हैं, वो घर बैठे दिखाते हैं जहां वो पहुंच नहीं सकते। हजारों मील दूर आप बैठे हैं, अब दिल्ली में बताइए राष्ट्रपति भवन में कोई कार्यक्रम हो रहा है, हर श्रोता तो वहां नहीं पहुंच सकता। अब वहां से आप कमेंट्री कर रहे हैं मान लीजिए अलंकरण समारोह की, तो श्रोता को ये महसूस करा देना कि मैं वहां पर स्वयं मौजूद हूं, तब तक आपकी कमेंट्री सफल नहीं होगी जब तक श्रोता ये महसूस ना कर ले। और उसके लिए आपको बहुत सजग रहना होता है। आप आंख से देखते हैं, मुख से जीभ से बोलते हैं और आप हर चीज कान से सुन रहे हैं, एक छोटी से छोटी आवाज सुन रहे हैं, कहीं कुछ चूक ना हो जाए। तो जब आप चक्षु बनते हैं अपने श्रोताओं के, तो वो कमेंट्री तब तक सफल नहीं है जब तक

0: श्रोताओं को आप कैसे दिखाएंगी
1: जी।
0: अब जैसे पद्मासन है तो इस तरह के या वज्रासन जो आसन आपको दिखाने हैं वो आपकी शब्दावली से व्यक्त होने चाहिए। जैसे मयूरासन की मैं बात करती हूँ तो क्या श्रोताओं आप मयूर देखा है, मोर देखा है, मतलब उनको ये आभास कराना कि मोर कैसे बैठता है,
1: वो विजुलाइज करें कि मोर के बारे में।
0: हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल जी, उनको ये आभास कराएं, वो आभास कराना कि इस आकृति में अब आपको ये आसन करना है, तो वो बड़ा कठिन था। और एक और इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं कि आप 26 जनवरी की कमेंट्री कर रहे हैं, अभी थोड़ी थोड़ी धूप खिली थी, कड़कती ठंड है, अचानक कोहरा छा गया, धुंध आ गई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या बोलेंगे? जब दृश्य सामने नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? तो ऐसे में आपका विवेक, आपकी शब्दावली, आपका ज्ञान काम आता है कि आप कैसे श्रोताओं को अपने से जोड़े रखें, अपने से बांधे रखें। कई बार ये होता है कि आप कुछ बोल रहे होते दृश्य बदल गया। अब एक कमेंट्री का मैं जिक्र करूं, संसद पार्लियामेंट की एक कॉमेंट्री थी, मेरे साथी डी एंड्रू मेरे साथ मौजूद थे। आपको याद होगा कि वहां पर एक कॉमेंट्री होती है जब संसद पर हमला हुआ था
1: जी,
0: और वहां पर जो हमारे देश के जाबाज शहीद हुए थे तो उनकी स्मृति में एक कॉमेंट्री होती है, आयोजन होता है श्रद्धांजलि स्वरूप। तो वो एक आयोजन हो रहा था, मैं हिंदी में कॉमेंट्री कर रही थी, डी एंड्रू इंग्लिश में कॉमेंट्री कर रहे थे, और वहां पर उन शहीदों के परिजन भी आए हुए थे। तो वो परिजन बिलख रहे थे, रो रहे थे, उनको देख के मेरे साथ ही कॉमेंट्रेटर बहुत विचलित हो गए और एकदम से खामोश हो गए। अब हिंदी की कमेंट्री के बाद तुरंत उनको अंग्रेजी में करना है, लेकिन वो चुप है। और मैं कह रही हूँ आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथ ही डी एंट्री आपको बताएंगे, अब वो बोल नहीं रहे, तो फिर हमने कोहनी से उनको हल्का सा पुश किया
1: जी।
0: तो देखते क्या, वो तो जारो कतार रो रहे हैं, उनकी आंख से आंसुओं के अविरल धारा बह रही है। तो ऐसे में मैं भी विचलित हो जाती
1: जी,
0: या मैं भी अपने माइक से परे हो जाती, या कुछ बोलने लगती, भाव में बह जाती। तो वहां पे आप जो कुछ है, आप एक आकाशवाणी के आंखों देखा हाल सुनाने के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं, तो निज को भूलना पड़ता है, आपको वहां रमना पड़ता है, वहां पर डूबना पड़ता है, तब आप एक अच्छे कमेंटेटर बन सकते हैं।
1: तो अब आपकी पसंद का कोई गीत हम सुनाना चाहते हैं, आप बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे।
0: एक बहुत प्यारी फिल्म आई थी चित्रलेखा, मीना कुमारी प्रदीप कुमार की फिल्म थी, उसमें गीत है मनरे तुकाहे न धीर थरे।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग और हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋतु राजपूत जी। डॉक्टर ऋतु जी, ये जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और भाषा के संरक्षण में बहुत योगदान दिया है, उसको आप किस रूप में बताएंगे?
1: प्रभा जी, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम उस स्वर्णिम युग के एक तरह से साक्षी रहे हैं, जब बहुत बड़े बड़े साहित्यकार आकाशवाणी से जुड़े रहे। आज भी बहुत से साहित्यकार जुड़ते हैं, आते हैं। बहुत से ऐसे साहित्यकार, ऐसे नाटककार, ऐसे संगीतकार आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं जिन्होंने आकाशवाणी को उस स्थान तक पहुंचाया है जिसे हम सिंहासन कहते हैं। तो वो साहित्यकारों का जुड़ना, संगीतकारों का जुड़ना, गायकों का जुड़ना, आप बताइए, लता जी हैं, आशा जी हैं, रफी साहब, किशोर साहब, हेमंता, अमन्ना डे साहब, सुमन कल्याणपुर, एक से एक बड़े संगीतकार के लिए जिसे कहें आकाशवाणी, उनको एक जगह तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो शायद गलत नहीं होगा। घर घर तक ये वो गीतकार हैं या वो संगीतकार हैं या वो गायक हैं जो आज भी प्रचलित हैं। आज भी अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, आज के युवा हैं, किशोर हैं, जो पुराने गानों को गुनगुनाते दिख जाते हैं। और इस दौर तक पहुंचाने में अगर FM गोल्ड का हाथ है, मैं ये कहूँ, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।
0: अब चलते चलते अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पर आप अपने पूर्व सहयोगियों और वर्तमान जो कर्मी हैं और श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: प्रभा जी, सबसे पहले तो नमन उन सभी रेडियो की पर्सनालिटीज को, व्यक्तित्व को, जिन्होंने हमें बनाने में एक भूमिका निभाई। हमारे जितने भी वरिष्ठ जन रहे उनको हम हमेशा से हृदय में रखते हैं और नमन करते हैं। और खास करके आज की पीढ़ी की जब मैं बात करती हूँ, सबसे बड़ी समस्या ये होती है प्रभा कि बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं बच्चे। बस थोड़ा सा ज्ञान लिया और ये मान लिया कि मैं परिपूर्ण हो गया, मैं परिपक्व हो गया। तो ये तो निरंतर अभ्यास की जरूरत है, इस विधा के लिए निरंतर पढ़ने की जरूरत है, तभी आप एक अच्छे, सफल और जिसे कहना चाहिए सक्षम प्रसारक बन सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक आपकी पसंद का गीत और हम सुनना चाहेंगे।
1: तुझे जो भी देखेगा किसी का ना हो सकेगा, बना हो परी हो क्या हो तुम।

तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग, और इसमें आज हमारे साथ थी डॉक्टर ऋतु राजपूत। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे विमानन क्षेत्र से जुड़े 77,00,000 रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी।
1: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीज का एक एटीएफ प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड क्रिएट किया गया।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। ये योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से

0: दो दो लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। इस कार्यक्रम में 480 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Union Cabinet has approved 10,000 crore rupees ATF price stabilization fund to support Indian Airlines for their domestic and international operations. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, "This is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers." He said the decision will protect 77 lakh jobs dependent on the aviation ecosystem. International ATF prices have increased 2.5 times from 60.5 rupees per litre in March to 142 rupees per litre in May this year due to the crisis in West Asia. Union Cabinet has also approved scheme for support to National Capital Region Planning Board, NCRPB, for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. It will be implemented in collaboration with the participating states and union territories of Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. Union Cabinet has also approved the construction of new coastal highway from Rameshwar to Paradip, spanning a total length of over 163 kilometers. The minister said that the total cost of the project will be over 8,300 crore rupees. In Karnataka, Congress Legislature Party leader D.K. Shivakumar is being sworn in as the 25th Chief Minister by Governor Thavarchand Gehlot in Bengaluru today. Former Home Minister Dr. G. Parameshwar will be sworn in as the Deputy Chief Minister. Along with them, 12 legislators are to be sworn in as ministers today. After Siddaramaiah stepped down as CM on May 28th, the Congress Legislature Party had elected 64-year-old D.K. Shivakumar as its leader, paving the way for him to assume the office. In West Bengal, political developments have intensified amid indications of a split in the Trinamool Congress. Expelled TMC MLA Ritprata Banerjee has staked claim to the post of leader of the opposition in the State Assembly, claiming the support of 58 legislators. According to Assembly sources, a letter signed by 58 MLAs was submitted to Speaker Ratindra Bose seeking recognition of Banerjee's faction as the real Trinamool Congress. The group has nominated Akhruzzaman, MLA from Raghunath Ganj in Murshidabad, as Chief Whip. Meanwhile, the Trinamool Congress has announced Shobhan Deb Chattopadhyay as Leader of the House, with Ashima Patra and Nayana Bandyopadhyay as Deputy Leaders, and Farhad Hakim as the Chief Whip.

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: For details, do refer to the website, that is www.balmerlorry.com. Rajiv Gandhi National Aviation University, a central university under the Ministry of Civil Aviation, Government of India, has invited online applications for engagement of non-teaching technical personnel in IT and computer information center areas on contractual basis. The positions advertised include server engineer, full stack developer and computer lab engineer with one vacancy each. The appointments are initially for 1 year and may be extended up to 3 years based on performance and institutional requirements. The consolidated remuneration ranges from 35,000 to 60,000 per month depending on the post and experience. Interested candidates can find detailed eligibility criteria and terms on the university website, that is at Rajiv Gandhi National Aviation University. The online application portal is available at RGNAU Online, and the last date for applications is 15th June 2026. Do refer to the website, that is at www.rgnau.ac.in. I repeat, it is www.rgnau.ac.in. Indira Gandhi National Centre for the Arts under the Ministry of Culture has invited applications for the post of a Director, Administration and Financial Advisor and Chief Accounts Officer on deputation or short-term contract basis. The Director, Administration post is in Level 13 as per the 7CPC, and while the FA and CAO post is in Level 12. Applications must be submitted within 30 days from the date of publication in the Employment News. For details, kindly refer to the website, that is at www.ignca.gov.in. I repeat, it is www.ignca.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार. नमस्कार. रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा. आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वावधान में लेडी इरविन कॉलेज इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है. प्रशासनिक अधिकारी का एक पद रिक्त है जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है. विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉलेज की वेबसाइट www.ladyirwin.edu.in. वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन निदेशक लेडी इरविन कॉलेज सिकंदरा रोड नई दिल्ली कॉलेज की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर जमा किए जा सकते हैं. यदि कोई संशोधन हो तो उसे कॉलेज की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा. ये जानकारी 30 मई 2026 से 5 जून 2026 के रोजगार समाचार पत्र पर आधारित है. इसके अतिरिक्त लेडी इरविन कॉलेज में ही एक सेक्शन ऑफिसर, एक सीनियर असिस्टेंट और एक प्रोफेशनल असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. ये पद डेपुटेशन आधार पर भरे जाने हैं. विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ladyirwin.edu.in. सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय CGO कॉम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है. संयुक्त निदेशक कैपिटल मार्केट 2 पद, उपनिदेशक बैंकिंग 2 पद, उपनिदेशक कॉरपोरेट लॉ 2 पद, उपनिदेशक फॉरेंसिक ऑडिट 1 पद, उपनिदेशक अन्वेषण 3 पद, प्रधान निजी सचिव 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक बैंकिंग 4 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कैपिटल मार्केट 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कॉरपोरेट कानून 4 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक अन्वेषण 2 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कराधान 1 पद, वरिष्ठ अभियोजक 3 पद, सहायक निदेशक अन्वेषण 12 पद.

0: सभी 38 पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। निजी उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार समाचार दिनांक 28 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 के अंक में प्रकाशित रिक्ति परिपत्र के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों पर वर्तमान रिक्ति परिपत्र के लिए विचार किया जाएगा। अतः जो उम्मीदवार पहले के रिक्ति परिपत्र के विरुद्ध आवेदन कर चुके हैं उन्हें उसी पद के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। योग्यता, वेतनमान और अन्य जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट www.sfio.nic.in। इसके अतिरिक्त आप ये वेबसाइट भी देख सकते हैं www.mca.gov.in। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा 2026 के लिखित परिणाम की घोषणा। आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा 1/2026 के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा कर दी गई है और ये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.upsc.gov। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक के साथ हम हैं, मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु जी।
2: नमस्कार मुनीश, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू आर प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। एंड आई एम रेणु कटारिया, एज मुनीश हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड मी, एंड His full name is Munish Sharma. And dear listeners, as Munish has informed, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India reports, capsules, tributes and so much more, all for you over the next 30 minutes. And let's begin with the news headlines first, Munish.
1: Yes, Renu. So the first headline, Delhi ke Malviya Nagar sthit ek hotel mein bhishan aag lagne se 21 logon ki maut. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा।
2: तृणमूल कांग्रेस फेसेस टर्मोइल एज एक्सपेल्ड, एमएलए ऋतब्रता बैनर्जी क्लेम सपोर्ट ऑफ नियरली 60 एमएलएज इन वेस्ट बंगाल असेंबली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
2: Senior Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as Chief Minister of Karnataka.
1: भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमरीका को पीछे छोड़ा।
2: And in Indonesia Open Badminton, H.S. Pranoy and Ayush Shetty to play in men's singles this afternoon. Dear listeners, it is now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are going to talk about World Bicycle Day.

0: And here I would like to quote Albert Einstein, Munish. He said, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. So this day is celebrated annually on June 3rd to acknowledge the simple, affordable, reliable and environmentally fit sustainable means of transport, fostering environmental stewardship and health. The day was adopted through a UN General Assembly resolution recognizing the uniqueness, longevity and versatility of the bicycle. Theme of this year is Cycling for a Greener Future. It highlights the bicycle's role in cutting carbon emissions, combating traffic congestion, and promoting sustainable, healthy urban environments.
1: दरअसल साइकिल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के सबसे असरदार साधनों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि को बढ़ते उत्सर्जन से अलग करके साइकिल चलाना शहरी हवा की गुणवत्ता को सक्रिय रूप से बेहतर बनाता है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और इस मुहिम को इतनी ज्यादा लोकप्रियता मिली है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें साइकिल चलाने को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में मुख्य धारा के तौर पर शामिल करने को बढ़ावा दिया गया है, चाहे इसका इस्तेमाल रोजाना शहरी सफर के लिए किया जाए या फिर सप्ताहांत में मनोरंजन के लिए किया जाए। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की जगह साइकिल का इस्तेमाल करने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सीधे तौर पर कम होता है।
0: एंड नॉट ओनली दिस मुनीश, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी सच एज वॉकिंग, साइकिलिंग और डूइंग स्पोर्ट्स हैज सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ। एट ऑल एजेस द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग फिजिकली एक्टिव आउटवे पोटेंशियल हार्म, फॉर एग्जाम्पल थ्रू एक्सीडेंट्स। सम फिजिकल एक्टिविटी इज बेटर देन नन। By becoming more active throughout the day in relatively simple ways, people can quite easily achieve the recommended activity levels. And here I'm remembering another thing, Munish. When we were kids, आजकल तो बच्चों को सिर्फ हम साइकिल देते हैं कि चलिए आप पार्क तक साइकिलिंग कर लीजिए या अपनी कॉलोनी के अंदर ही आप साइकिल चलाइए। But I remember those days when we used to cycle to school और हम लोग इतने एक्टिव रहते थे और इतना अच्छा लगता था साइकिलिंग करके, और हम देखते रहते थे कि आज मार्केट में कोई नई साइकिल आई है तो चलिए पापा को बोलते हैं कि हमें वो वाली आज साइकिल खरीदवाइए।
1: इंडीड, एंड इवन नाउ वी वुड लव टू, बट यू नो द सेफ्टी फैक्टर इज अ बिग कंसर्न।
0: एग्जैक्टली,
1: दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और देखिए रेणु जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसका तो कहना यह है कि पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचा तैयार करना स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने का भी एक जरिया है।
0: जी।
1: शहरी क्षेत्रों के सबसे गरीब तबके के लिए जो अक्सर निजी वाहन खरीदने में असमर्थ होते हैं, पैदल चलना, साइकिल चलाना परिवहन का एक साधन बन सकता है। साथ ही हृदय रोग, स्ट्रोक, कुछ प्रकार के कैंसर, मधुमेह और यहां तक कि मृत्यु के जोखिम को भी कम करता है।
0: एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ पीपल हु वॉक एंड साइकिल कंटिन्यूज टू बी अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द मोबिलिटी सॉल्यूशन फॉर हेल्पिंग सिटीज डीकपल पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम इंक्रीज्ड एमिशंस एंड टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड रोड सेफ्टी। और यहीं पर ही कोविड 19 पैंडेमिक के टाइम पे हमें याद आता है दैट मेनी सिटीज ऑल्सो लेड टू रीथिंक देयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स।
1: जी हाँ, एंड द गुड थिंग इज दैट एट लीस्ट इन बिग मेट्रो सिटीज यू कैन सी द डेडिकेटेड बाइसिकल लेन्स कमिंग अप फास्ट। सो मेरा ख्याल है कि धीरे धीरे सारे देश में ये साइकिल क्रांति जो है ये लोगों को पसंद आएगी और वो इसको बढ़ावा देंगे। विश्व साइकिल दिवस दरअसल साइकिल के इस्तेमाल से होने वाले फायदों की ओर तो ध्यान दिलाता ही है, ये परिवहन का एक आसान, किफायती, साफ, पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ साधन है। साइकिल हवा को साफ रखने, भीड़भाड़ कम करने में योगदान देती है। साथ ही ये सबसे कमजोर तबके के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सामाजिक सेवाओं को ज्यादा सुलभ बनाती है। एक ऐसा टिकाऊ परिवहन सिस्टम जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, असमानताओं को कम करे और साथ ही जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करे, वो टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहद जरूरी भी है।
0: जी बिल्कुल। एंड इन इंडिया ऑन वर्ल्ड बाइसिकल डे टुडे, द मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया हैज अर्ज्ड यूथ टू एम्ब्रेस साइकिलिंग एंड लीड द मूवमेंट फॉर अ फिटर, हेल्दियर एंड ग्रीनर नेशन।

0: Sharing a video message on the occasion, the minister noted that adopting cycling as a regular habit can encourage a balanced and disciplined lifestyle while also supporting environmental sustainability and cleaner mobility. He added that cycling not only helps individuals maintain physical and mental well-being, but also contributes towards building a healthier and greener nation.
1: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: So true, Munish. There are also so many countries bahar humne dekha hai jahan par ki wo cycling ko bahut importance dete hain, and they urge their employees, many of these offices, they are urging their employees to cycle down to the offices. And that's also another reason humne dekha hai ki साइकिल्स आप देखिए कि कितनी तरह की आ गए हैं. देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ बाइसिकल्स. आपको शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो साइकिलिंग है, आपको माउंटेन अगर चढ़ना है तो उसके लिए एक अलग तरह की साइकिल होती है. एंड ऑल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिलिंग एंड वन ऑफ देम इज अल्ट्रा साइकिलिंग, विच इज एनी बाइसिकल राइड दैट इज मोर देन 200 kilometers or 125 miles in length or 6 hours in duration completed in a single effort, jo ki aajkal bahut common hoti ja rahi hai. And for decades we have seen Munish that golf used to be the go to sport for business networking and deal making, and today many cyclists see ultra cycling emerging as a similar space though in a more organic way. तो हम तो अपने listeners को सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं, ride safely, stay active and help create a greener future.
2: तो रेनु, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और उनसे जानने का क्या कुछ है खास आज उनके पास. दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण और जैविक विविधता के प्रति जागरूकता आज वैश्विक प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में कच्छ के कोरी क्रीक क्षेत्र में विकसित किए गए मैंग्रोव लर्निंग सेंटर का उल्लेख किया. ये केंद्र न सिर्फ तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है बल्कि सीमावर्ती पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा को भी एक नई दिशा दे रहा है. आइए सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी की ये खास रिपोर्ट.
3: देश के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात का कच्छ जिला अपनी विशिष्ट भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है. अरब सागर और थार रेगिस्तान के बीच स्थित यह क्षेत्र जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है. इसी कच्छ में सीमावर्ती कोरी क्रीक के पाडाला क्षेत्र में गुजरात वन विभाग के द्वारा स्थापित मैंग्रोव लर्निंग सेंटर पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का एक अनूठा उदाहरण बनकर उभरा है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं.
4: गुजरात के कच्छ में भी मैंग्रोव प्लांटेशन बहुत जोरों पर हो रहा है. वहाँ कोरी क्रीक में मैंग्रोव लर्निंग सेंटर भी बनाया गया है. साथियों, पेड़ पौधों की, वृक्षों की यही तो खासियत होती है. जगह चाहे कोई भी हो, वह हर जीव मात्र की बेहतरी के लिए काम आते हैं.
3: नारायण सरोवर कोटेश्वर पर्यटन सर्किट के निकट स्थित इस मैंग्रोव लर्निंग सेंटर की स्थापना तटीय पारिस्थितिक तंत्र, मैंग्रोव वनों के संरक्षण तथा सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है. यहाँ ऑडिटोरियम, व्याख्यान केंद्र, पैदल पथ, अवलोकन मीनार और अन्य सुविधाएं विकसित की गई है. इस केंद्र की विशेषताओं और पर्यावरणीय जागरूकता में इसकी भूमिका के बारे में बताते हुए गुजरात वन विभाग के अधिकारी संदीप कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि यह केंद्र पर्यटकों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के अलावा जलवायु परिवर्तन और तटीय जैव विविधता के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है.
5: मैंग्रोव लर्निंग सेंटर बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही था कि लोग जब वहाँ पे समुद्री सीमा दर्शन के लिए जाएं और जब मैंग्रोव के एक इकोसिस्टम के और मैंग्रोव के कोस्ट को देखते हुए, प्लांट्स को देखते हुए जब उस जगह पर पहुंचे, तो वहां पे बॉर्डर टूरिज्म के साथ साथ मैंग्रोव का जो समस्त जो साइंस है उसको एक अंडरस्टैंड करने को वहां पर मौका मिले। तो वहां जो सेंटर है, सेंटर में बेसिकली इंटरप्रिटेशन सेंटर है जिसमें कि मैंग्रोव का लाइफ साइकिल, मैंग्रोव का जो रोल है, मैंग्रोव का सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या रोल है, इकोसिस्टम में जो दूसरे जीव है उसको किस प्रकार से करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होता है उसमें किस प्रकार का मैंग्रोव का रोल होता है, ये सारी चीजें बताई गई है। तो ये सारे सिस्टम के बारे में हम एक रिसर्च कर सके इस सेंटर का डेवलपमेंट किया गया।
3: गौरतलब है कि समूचे गुजरात के कुल मैंग्रोव वनों का लगभग 71% हिस्सा अकेले कच्छ में स्थित है। मैंग्रोव समुद्री तटों को चक्रवात, सुनामी और तटीय कटाव से बचाने में प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। इसके अलावा वे मछलियों, केंकड़ों, प्रवासी पक्षियों और अनेक जलीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास भी उपलब्ध कराते हैं। वन विभाग के द्वारा मिष्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स जैसी योजनाओं के माध्यम से मैंग्रोव विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती प्राकृतिक चुनौतियों के इस दौर में मैंग्रोव का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि तटीय सुरक्षा और सतत विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में कच्छ का मैंग्रोव लर्निंग सेंटर पर्यावरणीय शिक्षा, प्रकृति संरक्षण और इको टूरिज्म के एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। परिक्रमा के लिए बूथ से अशरफ नथवाणी।
0: एंड लेट्स मूव ऑन टू छत्रपति संभाजी नगर। मुनीश, 3 youths from here have developed a mobile app for the blind. With the help of this app, the blind can complete their daily tasks. Among the 3, Shaunak Savargaonkar, an engineer, gave more information about this app. So let's listen in.
6: We have created an app called Let's See, which is made for the blind. This app uses the latest AI from Google to give an auditory description of all the surrounding. This app is very simple and has 4 buttons to describe the surrounding. One button is smart view, second one is read, third one is ask anything on an image, and fourth button is ask anything to AI. Smart view, when you click that button, it takes the image from the phone and gives a complete auditory explanation of the surrounding. Second button, read text, is used for reading. This button uses the latest AI models to read any text from any book or a newspaper. It doesn't matter the orientation of the picture taken, the kind of text, paraphrasing of the words and how the paragraphs are stored. It reads it smartly to the user. Third, ask anything on an image. This is the most powerful button we have. So when you click this button, an image is captured. Then a mic turns on of the phone. User can ask any question on the given image, such as ask the value of the check that is there if the image is of a check. Ask what just the headings of the newspaper. If the image is taken of a surrounding, ask where the particular phone or item is respective to the other objects. He can also ask regarding his medications. What take the picture, ask what medication this is, when it is supposed to be taken and what content it has. The fourth button, ask anything to AI, is like a chatbot where users can ask general information about his surroundings. This app also has a translation button which user can choose his language, which currently supports Marathi and English. Then when in the read text, if the image input contains any language, let it be English, Russian or Chinese, when the read text and auto translation is turned on, it reads it loud in Marathi. This app is used by hundreds of blind people right now and it has changed their life a lot.
2: Well, Renu, time now to take our listeners to Arena of Sports.
0: Yes.
2: And know the latest.
0: Yes, so the latest in badminton, India's men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty suffered a setback at the Indonesia Open after losing to Malaysia's Kang Kai Zing and Aron Tai by 6-11 today. Meanwhile, India's campaign in the women's singles event will gather pace later in the day when Unnati Hooda takes on Japan's former world champion Nozomi Okuhara.
2: और दोस्तों, सैफ महिला चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल में 5 बार की चैंपियन भारत का मुकाबला आज गोवा के मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भूटान से होगा। ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। भारत ने मालदीव और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को हराकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। फॉरवर्ड मनीषा कल्याण की वापसी से मेजबान टीम को और भी मजबूती मिली है। फीफा रैंकिंग में भारत 69वें स्थान पर है जबकि भूटान 164वें स्थान पर है.
0: एंड मूविंग ऑन टू सम बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसीज एंडेड विद मॉडरेट लॉसेस टुडे. द बीएसई सेंसेक्स ड्रॉप्ड 304 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,346. द एनएसई निफ्टी स्लिप्ड 78 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,406. द ब्रॉडर मार्केट एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो एंडेड इन नेगेटिव जोन. The mid-cap 100 index

0: Wow, what music.
1: Indeed, it is. दोस्तों आज पुण्यतिथि है त्रिभुवनदास कृषि भाई पटेल की. भारत में दुग्ध क्रांति, जिसे दरअसल श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उसके जनक वर्गीज कुरियन साहब के साथ मिलकर जिस हस्ती ने देश में सहकारी दूध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखी थी, उनका ही नाम है त्रिभुवनदास कृषि भाई पटेल.

0: दोस्तों, वर्गीज कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल ने मिलकर दूध के पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क और बच्चों के लिए मिल्क फूड का भारत में पहला संयंत्र स्थापित किया था। ये दुनिया में अनोखा अकेला प्लांट था जो भैंस के दूध को पाउडर में बदल देता था और इस तरह अमूल की स्थापना हुई। सामुदायिक नेतृत्व के लिए त्रिभुवन दास पटेल को 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला और वर्ष 1964 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था।
1: जी, एंड टुडे वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू एंटनी क्विन, हु वाज अ मेक्सिकन अमेरिकन एक्टर, पेंटर, राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर। और अगर हम इनकी मूवीज की बात करें तो पुरानी मूवीज में मुनीश सबको जरूर याद होगा, लास्ट्राडा, द गन्स ऑफ नेवरॉन, जोरबा द ग्रीक, गन्स ऑफ सैन सेबेस्टियन, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, The Shoes of the Fisherman, The Message, Lion of the Desert, Last Action Hero and A Walk in the Clouds. And today we are also going to talk about Kerry Ray King, who is an American musician best known for being the guitarist and songwriter for the American thrash metal band Slayer. He co-founded the band with Jeff Hanneman in 1981 and remained a member for nearly four decades. Aur yahan par hum Munish sunne wale hain the metal band Slayer's song Where I Reign by Kerry King.

दोस्तों आज जयंती है हरविलास शारदा की, जो भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक थे। दरअसल पहले भारत में लड़कियों के बाल विवाह की बड़ी एक चिंताजनक प्रथा थी। इन्होंने केंद्रीय असेंबली से इसे रोकने के लिए 1925 में एक बिल पेश किया और शारदा बिल के नाम

0: से मशहूर ये बिल सितंबर 1929 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। बाल विवाह प्रथा पर अंकुश लगाने के मकसद से बहुचर्चित शारदा एक्ट उन्हीं के नाम पर है। हरविलास जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के सचिव के रूप में भी काम किया था। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था हिंदू सुपीरियोरिटी, जिसमें उन्होंने सप्रमाण ये साबित किया कि इतिहास काल में सभी क्षेत्रों में हमारे देश की सभ्यता अन्य देशों से काफी आगे थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं महाराजा कुंभा, महाराजा सांगा, शंकराचार्य, दयानंद और लाइफ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्हें राय बहादुर और दीवान बहादुर की पदवियों से भी सम्मानित किया गया। आज ही मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि गोविंद शंकर कुरुप की भी जयंती है। और दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का, तो इजाजत दीजिए हमें, यानी मैं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया। कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आपसे हम अनुमति लेते हैं। आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो सुनिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया है।
3: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
2: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
4: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
2: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में NH-31 और NH-231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नत करने को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक है। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 12 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई

चैनल वही आपका अपना आकाशवाणी कार्यक्रम गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप। आपके साथ है हम रूमी मलिक। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में अधिक प्यास, अधिक मिठास की जरूरत है। जी हाँ, कहते हैं कि गर्मियों में मीठा रस प्रधान होना चाहिए। आपके खाने में मीठे फल हों, रसदार फल हों, या फलों का रस, नींबू, शिकंजी, कुछ भी इस तरह के शरबत आप ले सकते हैं। तो जहां पे बात है खाने में मिठास की, वहां व्यवहार में भी तो मिठास चाहिए। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से इंसान धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। इन्हीं विचारों के साथ शुरू करते हैं गाते गुनगुनाते का आज का सफर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते। ढूंढना है तो परवाह करने वालों को ढूंढिए। अपनी परवाह करने वाले बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढिए। इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे, है ना। झांक के तो देखिए आपके दिल में आखिर कौन रहता है, कौन करता है आपकी फिक्र दिन और रात।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं

भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

गाते गुनगुनाते का सफर चल रहा है आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। बहुत से लोग, बहुत से गेस्ट आते हैं, बहुत सबको हम जानते भी हैं, जानी मानी हस्तियां हैं जिनके साथ कभी रेडियो प्लेज भी किए थे। एक बात मैं कहना चाहूंगी एज एन आरजे, है ना, क्योंकि मुझे भी 26 साल तो हो ही चुके हैं आकाशवाणी पे। टाइम, टाइम इज प्राइम, ये चीज किसने सिखाई? रेडियो ने सिखाई। जनाब एक टाइम ऐसा था जब लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे ऑल इंडिया रेडियो की सुई से। अरे इतने बजे समाचार हैं तो इतने बजे घड़ी सेट करते थे। वो पहले वैसी वाली घड़ियां होती थी ना, एनालॉगस, है ना, जिसको बाकायदा उस चाबी से सेट किया जाता था। तो घड़ियां पे चाहे पहनने वाली हो चाहे क्लॉक हो, ऐसे किया जाता था। तो देखिए पंक्चुअलिटी जो है ना, डिसिप्लिन, ये सिखाया आकाशवाणी ने, है ना। तो आकाशवाणी पर रह ही टिकी वही सकता है जो एक डिसिप्लिन के साथ चलता हो, जिसे समय की कद्र हो। मित्रों आप देखिए कि समय लगता है, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, है ना, आपने बहुत सारा धन उपार्जन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कितना भी धन खर्च लें, आप खोया हुआ समय वापस नहीं ला सकते। सो लाइक आई सेड, टाइम इज प्राइम। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। गाते गुनगुनाते में जो दोस्त अभी जुड़े हैं, आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत है। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक।

आखे जी बड़ी उड़ीका करवाई। देखो हिंदी फिल्मी गानों से हमें कितनी सारी भाषाएं सीखने को मिलती है ना। उड़ीकना क्या होता है पंजाबी में? वेट को कहते हैं, इंतजार को। वैसे पता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कमाल की कविता है, इंतजार शत्रु है वो पेड़ों की पत्तियों में घात लगाए रहता है। अरे इतने कमाल की कविता, कभी सुनाऊंगी, लंबी कविता है कि इंतजार मत करो, जो करना है अभी कर लो। पर क्या होता है प्यार में हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं हम, बेजार दिल इंतजार करता रहता है। बेजार इंतजार, ये हमने हिंदी के गानों में, पंजाबी तो चलिए उड़ीका एक वर्ड ये हो गया, सोनियों भी हो गया, और कितने सारे शब्द हमने सीखे ना उर्दू के भी। संगे मरमर है ना, संगे मरमर जो होता है क्या होता है, मार्बल को बोलते हैं है ना, मार्बल मार्बल मार्बल की जो जिस ताजमहल जिस पत्थर से बना हुआ है मार्बल है ना, संग मरमर, लेकिन संग का मतलब पत्थर होता है। इसीलिए कहते हैं ना संग दिल सनम, यानी पत्थर दिल सनम। चलो आपको कोई अच्छा सा गाना सुनाए हैं, थोड़ा सा ऐसा ब्रीजी ब्रीजी सा जिसमें हवा चल रही हो है ना, आपको याद ना रहे कि अधिक मास में आप अधिक गर्मी झेल रहे हैं। आइए सुनते हैं।

गाते गुनगुनाते का सफर चल रहा है। कितने सालों बाद सुना ये गाना, अच्छा गाना है ना। इस फिल्म कौन सी थी बताओ? मेरे यार की शादी है। अब शादी होती है तो इंसान खुमार में आ जाता है, नशे में आ जाता है, नहीं? वैसे अगर आपको, आपके पास कोई जिंदगी का लक्ष्य हो, कोई पर्पज हो, तो मुझे लगता है मतलब आप हमेशा एक हाई पर रहेंगे। कोई नशा इस बात से बड़ा नहीं है कि आप थकते नहीं हैं। आप कभी थकोगे नहीं अगर आपका कोई पर्पस है या लक्ष्य है। अगर आप सोचते हो मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन काम कौन करे? काम पड़ोसी कर रहा है तो पड़ोसी ही बनेगा करोड़पति या पत्नी या जो भी। आप वहीं के वहीं रहोगे तो फिर इसलिए क्या जरूरी है? इसे जरूरी है पुरजोर मेहनत करनी। मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए दूसरा देखे और कहे अरे वाह यार क्या काम करती है, क्या इसके जैसा होना चाहिए। तो जलो मत दूसरों से, ये देखो कि वो जो वहां पे पहुंचा है किस वजह से पहुंचा है, है ना। तो ये एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए लाइफ का, एक एम, है ना। और साथ साथ ऑफकोर्स ये भी होना चाहिए कि मैं जितना काम करूं विश्राम भी करूं, आराम भी करूं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अंधाधुंध दौड़ में भागे जा रहे हैं। तो आइए इसी बात पे सुनते, नशे की बात करते करते नशे पे गाना सुनेंगे। हाँ ये मैं क्या कह रही हूँ, अरे प्यार की बात हो रही है। हिंदी फिल्मों में आपको पता है ना, प्यार खुमार नशा उसको बिल्कुल एक ही तरह से पर्यायवाची की तरह से ले लिया जाता है, होता है ये। लेकिन सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ लॉन्ग टर्म जो प्यार आपका रहने वाला है ना, वो आपका अपने साथ है। हाँ ऑस्कर वाइल्ड था ना वो अंग्रेजी में जो नॉवलिस्ट और प्ले राइट, वो कहता था लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ लॉन्ग रोमांस। अब कभी देखो जो लोग अपने सुरूर में रहते हैं, अरे वो अपने आप से मोहब्बत करते हैं, दुनिया भी फिर उन्हें वैसे देखती है। आप अपने आप को जैसे देखोगे, द वे यू व्यू योर सेल्फ इज द वे द वर्ल्ड इज गोइंग टू व्यू यू। ओके ज्ञान खत्म, गाना शुरू।

दोस्तों, गाते गुनगुनाते का सफर यहीं तक। रूमी मलिक को दीजिए इजाजत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड, खरा सोना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों को खुश रखिए। और इसी कामना के साथ कि जल्द मिलेंगे आपके साथ, हाजिर होती हूँ कुछ ही दिन बाद। अब सुनिए समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रूपये से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
1: ATF price stabilization fund mein
4: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
1: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
3: ATF price stabilization support will be in force for a period of 36 months. International ATF prices have increased 2.5 times from 60.5 rupees per litre in March to 142 rupees per litre in May this year due to the crisis in West Asia. The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in the Delhi NCR area with a financial outlay of 9,585 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Odisha, spanning a total length of over 163 kilometres. He said the total cost of the project will be over 8,300 crore rupees. In Karnataka, senior Congress leader D.K. Shivakumar was sworn in as the 25th Chief Minister of the state today. Governor Thavarchand Gehlot administered the oath of office. Dr. G. Parmeshwar, who held the home portfolio in the Siddaramaiah cabinet, was sworn in as Deputy Chief Minister. 12 legislators also took oath as cabinet ministers. Several senior Congress leaders, including Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge, Chief Ministers of Telangana, Kerala and Himachal Pradesh attended the ceremony. Prime Minister Narendra Modi has congratulated D.K. Shivakumar on taking oath as Chief Minister. In a social media post, Mr. Modi conveyed best wishes to him for his tenure. In West Bengal, political developments have intensified amid indications of a split in the Trinamool Congress. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee has staked claim to the post of Leader of Opposition in the State Assembly, claiming the support of 58 legislators. According to Assembly sources, a letter signed by 58 MLAs was submitted to Speaker Ratindra Bose, seeking recognition of Banerjee's faction as the real Trinamool Congress. The group has nominated Akhruz Zaman, MLA from Raghunath Ganj in Murshidabad, as Chief Whip. Meanwhile, the Trinamool Congress has announced Shobhandeep Chattopadhyay as Leader of the House, with Ashima Patra and Noyana Bandopadhyay as Deputy Leaders and Firhad Hakim as the Chief Whip. In a massive fire at a hotel in Malviya Nagar in Delhi, 21 people lost their lives while 40 were rescued this morning. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said the fire has been successfully extinguished with the assistance of 8 fire tenders. Rescue and search operations are underway. The cause of the fire is yet to be ascertained. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the fire incident. Benchmark domestic equity indices ended with moderate losses today. The BSE Sensex dropped 304 points to close at 74,346,

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 6:11 और 17 सेकंड। आप हैं सदाबहार गीत में अपनी दोस्त रूपा धवन के साथ। तो चलिए सुनते हैं आज का पहला सदाबहार गीत, जिसे हमने शामिल किया है फिल्म तुमसा नहीं देखा से, स्वर मोहम्मद रफी साहब का।

तुमसा नहीं देखा फिल्म से अभी आपने सुना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में और आशा जी की आवाज में ये बेहतरीन सा नगमा। अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं तीन देवियां फिल्म से, आशा जी के साथ किशोर साहब को सुनेंगे आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: और अब सदाबहार से रूपा धवन को दीजिए अनुमति, आप कुछ ही पलों में सुनेंगे संस्कृत में समाचार। नमस्कार।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: धन्यवाद अर्जुन. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं. और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन द नेगेटिव जोन. सेंसेक्स ड्रॉप्स ओवर 300 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्ड एट 23,406. Cabinet approves 10,000 crore rupees ATF price stabilization fund. Also approves a scheme for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR for reducing air pollution. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मंदी में रहे. सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक की गिरावट में रहा. निफ्टी 23,406 पर हुआ बंद. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए के ATF मूल्य स्थिरता फंड को दी मंजूरी. वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की योजना को भी किया पारित. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई वृद्धि.
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अर्जुन, अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज गिरावट पर बंद हुए. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में भी आज मंदी दर्ज हुई. मिड कैप 100 सूचकांक 0.4% से अधिक की गिरावट पर बंद हुआ और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.1% की गिरावट दर्ज हुई. सत्र की शुरुआत में बाजारों में 1% से अधिक की गिरावट आ गई थी. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पर अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में आई वृद्धि और विदेशी फंडों का भारत से प्रवाह बने रहने के बीच बाजार की धारणा पर दबाव बना रहा. हालांकि जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ा, निचले आकर्षक मूल्यों पर हुई खरीदारी के बल पर दोनों सूचकांक काफी हद तक अपने दिन की गिरावट से उबर गए.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड विद मॉडरेट लॉसेस टुडे. The BSE Sensex dropped 304 points to close at 74,346. NSE Nifty slipped 78 points to settle at 23,406. The broader market at the NSE also ended in negative zone. The mid-cap 100 index fell over 0.4% and the small-cap 100 index dipped 0.1%. Earlier today, markets witnessed a decline of more than 1% as sentiment remained under pressure amid uncertainty surrounding the US-Iran negotiations, rising crude oil prices and continued foreign fund outflows. However, as the day progressed, both stock market indices recovered a significant portion of their intraday losses, supported by value buying at low levels.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 17 के शेयर गिरावट पर बंद हुए.

0: हुए। सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में टीसीएस 8.4% से अधिक, टेक महिंद्रा 6.2% से अधिक और एचसीएल 5.2% से अधिक की गिरावट में रहे। इसके विपरीत इंडिगो के शेयर में 1.6% का उछाल आया। एसबीआई का शेयर 1.4% बढ़कर बंद हुआ और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 1.3% के फायदे में रहा।
1: In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 13 out of the 25 sectors ended in negative territory. The focused IT sector emerged as the biggest drag, plunging over 5.2%, followed by IT, which shed 5%. Realty also dropped over 1.5%. Among the top gainers, a telecommunication surged 2%, PSU banks climbed more than 1.7%, and BankEx, as well as hospitals, rose 0.9%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,400 companies declined, 1,812 companies advanced and 174 companies remain unchanged.
0: रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक, जो 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वह दिन के कारोबार में 99.3 पर था। और हमारे साथ स्टूडियो में आज वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य आमंत्रित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
0: मिस्टर भट्टाचार्य, जैसे अभी हमने पढ़ा सेंसेक्स की स्टोरी, 300 अंकों से अधिक की गिरावट आई है। कल की तेजी के बाद मंडे को भी गिरावट थी, तो ये जो एक अप एंड डाउन हम देख रहे हैं, लेकिन आज की जो रिकवरी है, आज की जो इंट्रा डे रिकवरी है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या क्या फैक्टर्स अभी बाजार को नीचे की तरफ खींच रहे हैं और कौन सा फिर उनको ऊपर उठा रहे हैं?
2: देखिए, एक तो है कि अगर आप आंकड़ों को देखें तो जो स्टॉक मार्केट में जो शुरुआती दौर में दिन के ट्रेडिंग में करीबन अगर सेंसेक्स को देखते हैं तो 1.5% की गिरावट आई। उसके बाद जो रिकवरी हुई, करीबन 1 परसेंटेज पॉइंट की रिकवरी हुई, उससे एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो लॉस हुई है सिर्फ 0.41% की लॉस हुई है आपकी। तो इसका ये दर्शाता है कि एक तरफ तो जो वैल्यू बाइंग, जिसे हम कहते हैं, वो दिखने को आया आज पूरी तरह से कि मार्केट जो ही नीचे आई तो वैल्यूएशन के तौर से जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ी बहुत नीचे दामों में उन्होंने खरीद लिया, तो उसी के लिए रिकवरी हुई है। और जो दूसरी बात जो है कि जो वॉलिटिलिटी इंडेक्स जो है हमारा, इंडिया विक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें काफी गिरावट आई है। उसका एक साइन ये है कि अगर मान लीजिए जो इन्वेस्टर्स की नर्वसनेस जो है वो कम दिखती नजर आ रही है, और मुझे ये लग रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं मार्केट में वो असेस कर रहे हैं मार्केट की पूरी वॉलेटिलिटी को, और जो वेस्ट एशियन क्राइसिस और यूएस के साथ ईरान का एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए एक न्यू नॉर्मल की तरफ मार्केट जाती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि अभी भी मेरे ख्याल से काफी ऐसे सत्र आएंगे जिसमें ऐसे आप उतराव और चढ़ाव देखेंगे, पर वॉलेटिलिटी रहेगी। पर विक्स को नीचे आना और वैल्यू बाइंग की जो एक टेंडेंसी दिखने को नजर आई, वो लॉन्ग टर्म दृष्टिभंगी से आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है।
1: We saw the IT index plummet by almost 5% today, even though the quarterly earnings does not reflect any fall in the net profitability or revenue. And we saw banking, on the other hand, actually go up by 1%. PSU banking going up by 1.7%. What are the reasons?
2: Well, if you're looking at the IT sector, the IT sector has been majorly impacted by the AI developments. If you look at the IT sector's performance, at one level, its exports have been impacted, particularly those who are relying on the global capability center model, that earnings have been impacted. And the second level, the AI, which is a big elephant in the room, it's playing out, and its job prospects, And India's probably, the Indian IT sector's lack of adequate preparedness to take on this challenge is showing in the stock market prices. But on the other hand, the banking sector is still in the pink of its health. And what you do see is that if the RBI governor, the Monetary Policy Committee, which meeting we started, probably keeps the rate unchanged, the banks probably will see their performance even get better with the bond prices.
0: आपने आरबीआई पॉलिसी की बात करी तो जैसा आप कह रहे हैं कि आमतौर पर शायद ये एक्सपेक्टेशन है कि जो पॉज होगा कोई चेंज नहीं होगा. क्या कोई आउटसाइड चांस है कि थोड़ी सी वृद्धि भी आ सकती है ये देखते हुए कि इन्फ्लेशन का डर बना हुआ है जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में सिचुएशन है उसकी कारण?
2: देखिए, इन्फ्लेशन का डर के लिए ही मैं समझता हूं कि वो पॉज को प्रेफर करेंगे. क्योंकि इस वक्त अगर जो इन्फ्लेशन का जो डर जो है वो पूरी तरह से इंटरनलाइज्ड नहीं हुआ है, सिस्टम में अभी तरह से पूरी तरह से आई नहीं है. और इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो असेसमेंट जो मुझे लग रही है बाहर से कि इस वक्त कोई स्टेप लेना शायद थोड़ा बहुत प्रीमैच्योर होगा, क्योंकि ग्रोथ को भी एक बढ़ावा देना चाहिए. अगर इसी वक्त अगर आप रेट को इंक्रीज करें इन्फ्लेशन की तरफ देखते हुए, शायद आप प्रीएम्प्ट कर देंगे ग्रोथ पॉसिबिलिटीज को. तो मुझे ये नहीं लगता कि इस वक्त आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोई एक्शन लेगी, पॉज में रहेगी. हाँ, जो जो एकोमोडेटिव स्टांस जो है उसको शायद थोड़ी बहुत रद बदल वो हो सकती है.
0: और जो प्रोजेक्शंस है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन और ग्रोथ, उन पर भी सबकी नजर रहेगी कि क्या इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन को थोड़ा बढ़ाया जाता है, ग्रोथ की प्रोजेक्शन को क्या?
2: मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमिटी के पहले जो जो जो गोल्डी लॉक सिचुएशन की बात कही गई थी वो अब गोल्डी लॉक सिचुएशन नहीं है,
0: भारत में ही नहीं किसी भी देश में
2: नहीं, किसी भी देश में नहीं है. और जो जो एक जो एडवांटेज जो था इंडियन इकोनॉमी का, वो मैं समझता हूं कि इस वक्त वो एडवांटेज भी नहीं है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी अगर लेटेस्ट रिपोर्ट भी देखें तो हर जगह एक एक कंसिडर्ड व्यू लिया जा रहा है कि किस तरह से आगे की जो जर्नी है उसको हम तय करें.
1: Well, let's have a look at the latest news on the MPC meet. The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, MPC, began its three-day policy meeting in Mumbai today, with experts widely expecting the central bank to maintain the status quo on interest rates amid volatile global conditions driven by ongoing tensions in West Asia. The policy decision will be announced on Friday. So the repo rate is at 5.25%. Reverse repo rate is at 3.35%. Of course, you also have the overnight lending rate as well. You just mentioned that it would be an accommodative stance. It'll probably not be changed as well. But what are the factors in their mind, apart from the West Asia crisis? The other point that is really playing on everyone's mind is President Trump's rhetoric regarding the US-Iran war and imposing tariffs 12.5% on its trading partners for forced labor inputs, additional 12.5%. India already has an 18% tariff that's imposed by the US on imports. How do you see all of this playing out in the minds of the committee and, for that matter, the sentiment in the stock market?
2: Well, to a great extent, what happened in the stock market this morning was impacted by the revelation that the USTR committee, one committee, not two, both the committee, there are two USTR committees, one committee is on forced labor and the other committee is on production, production capacity. Now, on the forced labor, they have come out adversely against 60 countries, including India. So the 12.5% duty imposition, the threat, which will not come immediately, but maybe come maybe end of July or something like that. But The stock market

0: was immediately hit by that, but it was also recovered to some extent with the news that probably this is a negotiating stance with the US, and this is come at a time when the USTR team is right now in India negotiating with India a bilateral trade agreement which is supposed to be concluded by 24th of July. So it's a mixed picture. My sense is the MPC committee will certainly take these developments into account, because these impact India's exports and domestic industries' earnings and margins. But on the whole, what I feel is this, that the RBI Monetary Policy Committee will have to go beyond what the USTR has done and what the bilateral agreement will bring out. It has to address the larger issue of how you ensure that the growth momentum is maintained while inflation, the beast of inflation, is controlled.
1: आप बात कह रहे हैं यूएसटीआर की, उससे जुड़ी हम ब्यौरा भी बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि सेक्शन 301 के तहत प्रस्तावित टैरिफ से जुड़े घटनाक्रम पर भारत अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इसके साथ ही भारत इस वर्ष फरवरी में घोषित फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए भी अमेरिका से बातचीत कर रहा है। भारत समेत 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ वस्तुओं के आयात से बचने की प्रतिक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर द्वारा की गई जांच समाप्त होने के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का यह वक्तव्य आया है। इस जांच के बाद यूएसटीआर ने अमेरिका के अमरीकी व्यापार अधिनियम 1974 के सेक्शन 301 के तहत 60 अर्थव्यवस्थाओं से आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इन टैरिफ प्रस्तावों में सेक्शन 232 में शामिल कुछ उत्पाद और कुछ अन्य उत्पादों को भी बाहर रखा गया है। कपड़ा और वस्त्र उत्पादों के लिए भी एक विशेष प्रणाली प्रस्तावित की गई है, जिसके तहत कुछ चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं से निर्धारित मात्रा में निचली टैरिफ दरों पर आयात को अनुमति होगी। रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित टैरिफ अभी पूरी तरह निर्धारित नहीं हुए हैं और पक्षधरों से 22 जून तक सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। लिखित टिप्पणियां 6 जुलाई तक सौंपी जा सकती हैं। 7 जुलाई को सार्वजनिक सुनवाई होगी। मंत्रालय ने कहा है कि यूएसटीआर टिप्पणियों और बयानों पर गौर करने के बाद ही प्रस्तावित कदमों पर अंतिम निर्णय लेगा। सो ये बैलेंसिंग एक्ट है, ये तो 60 कंट्रीज के अगेंस्ट है जिसमें इंडिया एक है, एंड एट द सेम टाइम आपको लगता है कि यूएस इंडिया डील जो है उसको भी आगे बढ़ाने की तरफ उनकी पूरी
0: देखिए मैं ये समझता हूँ ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है
1: जी।
0: इस वक्त इंडिया एंड यूएस के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट की बात चल रही है, काफी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। इस वक्त मैं समझता हूं ये जो सेक्शन 301 के तहत यूएसटीआर ने जो एक थ्रेट दिया है, ये थ्रेट एसेंशियली एक प्लॉय है जिससे कि बेटर डील यूएस की तरफ वो ला सके। और ये फोर्स्ड लेबर की जो आर्गुमेंट है उसमें भी मैं समझता हूं ज्यादा कोई दम नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड इश्यूज नहीं है, ये नॉन ट्रेड इश्यूज हैं। ये नॉन ट्रेड इश्यूज को ट्रेड में लाकर, ये इन्वेस्टमेंट की इश्यूज भी नहीं है, तो ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, प्लॉय है। इंडिया मेरे ख्याल से जिस तरह से स्टैंस ले रहा है कि वो चाहता है कि किस तरह से इसको नेगोशिएट करे पुरा सके।
2: US Ambassador to India Sergio Gore has said that 99% of the proposed India-US interim trade agreement has been finalized and both sides are working to resolve the remaining issues. Speaking at the City 2026 India Conference in Mumbai today, Mr. Gore expressed confidence that the agreement could be concluded within the next few weeks, describing the India-US relationship as the most consequential partnership of modern times. Mr. Gore said cooperation between the two countries would help shape the future of global trade, technology, supply chains and security. He also highlighted collaboration under the Trust Initiative launched by Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump.
3: Under the framework, the United States is laser focused on boosting bilateral cooperation on AI development and expanding trusted supply chains for active pharmaceutical ingredients and critical minerals. Today, the United States imports close to 40% of our generic pharmaceuticals from India. That's because we trust this place. That's because we want to work with this place. That's a massive life-saving ingredient to our country.
2: A U.S.

0: APIs, and when you look at artificial intelligence, oil is another supply that they're willing to provide to India. So India is not dependent upon other trading partners. How do you see crude oil playing a major role here, even though it's not mentioned in the story?
1: Well, the crude oil will play a major role because India does need crude oil supplies in an uninterrupted way. Right now, it is not getting its oil from this thing. But please remember one thing, that this talk about is a very selective kind of a measure. The Apple phones that are produced here, presumably, don't have any forced labor clause impact. So how is it that the Apple phones produced here will be exported to the US without any restrictions, without any duties? So I find this US stance a little duplicitous, and this should be actually be resolved once the agreement is signed.
2: लेते हैं अगली बड़ी खबर. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है. मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया है. नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह एक आत्मनिर्भर कोष है.
3: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में बेसिकली एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है. ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा कि इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरम्भ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा.
2: ATF मूल्य स्थिरता समर्थन 36 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा. पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय ATF की कीमतें मार्च में 60.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 2.5 गुना इस वर्ष मई में 142 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं. मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों, एक और बहुत अहम फैसला, ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है. 9,585 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय खर्च वाली इस योजना के तहत BS4 या इससे भी पहले वाले एमिशन नॉर्म्स वाले लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसों की जगह BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण कम होगा. सो क्या कहेंगे आप, ये दोनों ही, खासकर जो ATF का भी, उसका त्वरित हम फायदा देखेंगे?
1: देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन जो है एविएशन मार्केट में, हमारे देश में जो दो प्रधान जो एयरलाइन विमान सेवा कंपनियां जो हैं, एयर इंडिया और इंडिगो, दोनों ने ही ऐलान किया है कि वो बहुत सारे अपने सेवाएं को वो काट रहे हैं. तो ये काटना का मतलब यही है कि वो अपने टैरिफ फेयर्स उतना बढ़ा नहीं सकते, पर ATF की दाम की जो बोझ है उनके ऊपर बहुत बढ़ गया है. तो वो मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने सेवाएं से काफी कट किए हैं, कम कर दिए हैं. वो सरकार के पास ये देख रहे हैं कि ये एक बेसिक एसेंशियल सर्विस है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन एविएशन अगर इम्पैक्टेड हो तो उसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, GDP, उसमें भी इम्पैक्ट आएगा. तो ये स्टेबिलाइजेशन फंड इसीलिए बनाया गया है जिससे कि जो विमानन कंपनियां जो हैं वो इस स्टेबिलाइजेशन फंड से एक स्टेबल ATF प्राइस का वो कर लेकर वो अपनी सेवाएं अपने चला सके, उससे उनके मार्जिन में इम्पैक्ट कम होगा. और दूसरी तरफ जो पुराने ट्रक कि जो डिसीजन ली गया है, इसका भी एक एफिशिएंसी के साथ ताल्लुक है. ये अगर पुराने जो ट्रक्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी लेवल जो फ्यूल यूटिलाइजेशन की जो है वो अच्छी नहीं होती, उसमें काफी जो प्रोडक्टिविटी जो है जो ट्रक चलाने की जो एक फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो बहुत नीचे होती है.
2: सो प्रदूषण के साथ साथ फ्यूल भी बचेगा,
1: एफिशिएंसी भी बचेगा. तो मैं दोनों जो डिसीजन जो है ये आज की तारीख में दोनों के साथ ये कनेक्टेड है, और ये तेल इकोनॉमी को थोड़ा बहुत फायदा देने के लिए दोनों डिसीजन लिया गया है, हालांकि कारण डिफरेंट तरह के दिए गए हैं.
2: जी, और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। अधिकांश एशियाई बाजारों में आज तेजी थी। जापान का निकेई सूचकांक 2.5% के उछाल में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.8% और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट

0: पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रूपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
2: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
3: Thank you very much.
2: Thank you. I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
3: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
2: Absolutely. Mr. Tandon.
4: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में
2: जी,
4: उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टैक्स में छूट, जीएसटी का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वनिधि योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
2: जैसे भी शरद जी ने
4: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
2: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो there has been a significant expansion of the middle class in the last 12 years with more than 25 crore people

0: exiting multidimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharadji?
1: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye, hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya. You know, we've changed the definition because poverty ko pehle kaise define karte the, itne rupaye roz ka. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition. Ke aapka agar jeevan ka star sudhar raha hai, you know, on nutrition, on health, aapke paas ghar nahi hai, tomorrow you get a house, you don't have a water connection, now you have a water connection. Let's not forget about the toilets, which has been, yes. You know, sanitation has been very close to Prime Minister's heart. You know, jungle mein aur kheton mein jaake, you know, toilet ka istemal karna ya wahan par idhar udhar baith ke mahilaon ke liye khaskar bahut. So I think now there are toilets at. So the multidimensional poverty index needs to be understood, Anubha, from the point of view that not that a person has a very huge bank balance, but he's able to afford and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine. They may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
0: The facilities that are very basic facilities, absolutely, which is everybody's right and which should they should get.
1: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time. And today they feel that these were the basic amenities which I was lacking. And it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, you know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact har work ko samaj ke usne fayda pahunchaya, aur middle class to usme aati aati, kyunki isse naukriyan bani hain, isse logon ki income. Aur main aapko bahut interesting baat bataun jo Tandon sahab meri baat se agree karenge, ke mujhse jab log poochte hain, kyunki hota kya jab aapki zindagi mein ye sab ghatnaen ghatti rehti hain welfare schemes, to you take it in your stead, aapko lagta hai theek hai ye to hona hi tha, भाई ये तो मेरा हक है, वगैरह वगैरह ऐसे ख्याल आते हैं. पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे. शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं. तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी. सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है, तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
0: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं. खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है.
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है. और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं. आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की. वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है. और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर. लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर

0: पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी।
0: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है।
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभव। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
1: बिल्कुल,
2: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इममेमोरियल। सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड। A lot of youngsters, and today, just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
1: yes.
2: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here, government became an angel.
1: Right.
2: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today, I'm telling you, when from being job seekers
1: yes.
2: to being job creators, when I talk to a cross-section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
1: yes.
2: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees, you borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs, you know, you'll be surprised the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as
1: they
2: a very, very active GDP.
1: Workers,
2: in fact,
1: actually.
2: We did an analysis recently, which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
1: right.
2: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar, you also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, I mean, people have opened their arms and embraced it. पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ गया है।
1: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है। बिकॉज यू नो सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन यू नो अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स। सो इन द लास्ट 12 इयर्स व्हेन वी लुक एट द टैक्स रिफॉर्म्स दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, इफ वी लुक एट द जीरो टैक्स लिमिट एंड वेदर लाइक यू मेंशन द जीएसटी, नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन of GST, but after that, last year we saw the GST 2.0 also. How have these tax

0: Related reforms in the past decade impacted middle class. Sir Tandon, what would you say to that?
1: देखिए इसमें एक और पहलू भी है
0: जी.
1: कि जो पेंशनर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाया जाता है उस महंगाई के इंडेक्स के साथ
0: जी.
1: मिलाकर. तो टैक्स रिफॉर्म जो है आपने जिनके जिक्र किया उससे भी हम लोग अपनी मिडिल क्लास की बात करें, हम लोगों को 40-40, 50-50 हजार रुपए साल का टैक्स बचा है. तो हम भी मिडिल क्लास हैं सब लोग. तो ये जो लाभ मिला है मिडिल क्लास को और जो टैक्स के बारे में जितनी भी बातें हुई हैं, तो ये सब कुछ मिलाकर अगर देखें तो मैं समझता हूँ मिडिल क्लास आज बहुत खुश है. और शायद मिडिल क्लास की 4-5 लेयर्स को भी अगर हैं, अपर मिडिल क्लास की अगर अभी बात छोड़ भी दें तो लोअर मिडिल क्लास को मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा होगा.
0: शरद जी, यू नो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स, इट्स नॉट जस्ट द एग्जेम्पशन, यू नो दैट द एग्जेम्पशन लिमिट हैज यू नो इनफैक्ट चेंज 4 times, इट इज इंक्रीज 4 times सिंस 2014, बट इट्स ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स, इट्स द प्रोसेस ऑफ यू नो द ट्रांसपेरेंसी दैट हैज बीन ब्रॉट इन दिस होल प्रोसेस. सो वट वुड यू से टू दैट, हाउ हैज इट मेड द लाइव ऑफ द मिडिल क्लास यू नो मच इजियर? एंड नॉट मोर than that, would you say that you know the fact that the government has made the process so easy, and if we look at the number of ITRs filed, in fact last year more than 8 crore ITRs were filed, that's also showing the government, the Modi government's trust in the people, in their honesty, and it's a salute to the middle class.
2: All right, we call that a sabka vishwas. A government has gained that vishwas where people come forward and file the, and I'll give you a very interesting you know dynamics of this whole tax you know number which you spoke of.
0: Jee.
2: About 9 crore returns were filed. And you know, the real taxpayers, the people who actually paid tax, they were about 3 crore or so. But then because it's mandatory to file the return, so people participated in that activity, people came forward, and they have now understood with 12,75,000 rupees of income for the first time in India is tax exempt. You know, we did a case study of a couple who were both earning, one was earning about 5 lakhs and the other was earning about 7 lakhs, about 12 lakhs of earnings. Now, they were not able to save for earlier for investments, for SIPs, for health insurance. Combined together, they saved tax about 1 lakh rupees. Now, this lakh of rupees is going into health insurance, is going into insurance, is going into their retirement planning as well. And you know, it'll be unfair, Anubha, if when we talk of tax, and we don't talk of the tax savings made by GST. Somebody asked me that only 3 crore people in India pay tax. I said, no, every citizen of this country pays GST because that's indirect taxation. So this GST 2.0 has put money in the pockets of people. And because primarily we are a consumption-driven economy, 55-60% of our economy comprises of when me and you and Mr. Tandon goes and buy goods from the shopkeepers, from service providers. So I think that has taken a big boost. And in the current scenario, when global economy is facing challenges, it is the Indian consumption, Anubha, which is driving the growth of the country.
0: Let's move on to the next, you know, area which I think has impacted the lives of the middle class in a very significant manner, which is digitization. And we all know that Prime Minister Modi is a big votary of digitization. So what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems, Mr. Kohli?
2: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
0: Financial inclusion?
2: Absolutely. You know, Jan Dhan Yojana, more than 56 crore accounts, and these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
0: Yes.
2: I think this has been transformational, and a lot of countries around the world now want to emulate that example.
0: Absolutely.
2: So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
0: Ashok ji, aap kuch
1: kehna chahiye? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Janadhan, Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikli hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो निचले स्तर में, इंटरव्यूज को खत्म किया गया, दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया गया, ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ।
0: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है। पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है, उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का कितना प्रभाव पड़ा है?
2: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव, आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
0: डिजिटल डिवाइड, जिसको
2: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन। टुडे When I go to a village, I find the things they use, the way they talk, what they wear, the lifestyle they lead is pretty much like a normal town citizen. And there are so many learnings which are happening. Prime Minister recently made an appeal which said ki aap online classes lijiye. Kaise ye COVID mein hum karte, padhai ki likhai band ho jani thi. Agar ye connectivity nahi hoti, bachchon ka koi nuksan COVID mein nahi hua. Aaj bhi Pradhan Mantri ji, hum apne videshi mudra bachane ke liye, unhone kaha ki aap online classes lijiye. Kyun keh pa rahe hain? Kyunki unko pata hai ki uske peeche internet और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज
0: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम
2: जो काम किया उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे। सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली मुंबई बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाके रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं। दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन।
0: अशोक जी आप कुछ कहेंगे?
1: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया सुशासन और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है।
0: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
2: Oh, it's done in a huge way because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people ke hum sari umar mein sochta tha kab main hawai jahaz mein baithunga. Aaj mujhe lagta hai aap agar kisi bhi hawai yatra mein jaye aapko ek aam aadmi usme dikhega. Ab wo aisi luxury nahi hai. Chote chote airports ko banakar unko connect kar dena aur chand minton mein ya ghante mein pahunch jana jiske liye aap sari raat ki journey karte the. Aapko yaad hoga Rajdhani aur Shatabdi akeli trains hua karti thi jo ki premium boli jati thi, jaldi pahunchna hai. Aaj Vande Bharat leke aap kuch ghanton mein ek jagah se dusri jagah aur aise comfort पहुंच रहे हैं, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल. द थिंग्स वी यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनली के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में. सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री.
0: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो

0: फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
1: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं, ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
0: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही हैं उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिपेक्ष में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
0: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle-class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle-class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
1: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी भी, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
0: जी, अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टूडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्व इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन, कॉन्स. आई फाइंड लॉट ऑफ वुमेन एज मिस्टर टंडन सेड दैट यू नो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं. मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज

0: जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभा, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा अनुभा, I think you'll be able to lead. अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी है, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर इन द नेक्स्ट डेकेड, वेयर डू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूं, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi sarkar ke 12 saal sudhar, sushasan aur jan kalyan se sashakt hota madhyam varg. इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on Air. This program is also available on our YouTube channel News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
5: और आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
6: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9585 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर पुनर्विचार के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 16वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4 लाख करोड़ से अधिक के आवंटन की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआरपीबी को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। कुल 9585 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत उन ट्रक और बस के मालिकों को प्रोत्साहित करना है जो BS4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं, ताकि वो उन्हें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल सकें। इस परियोजना को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2 साल की इस योजना का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस बदली जाएंगी।
10: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
9: मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने की घटना में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। घटना के फौरन बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण CATS एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमें तेजी से मौके पर पहुंची और बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया। 40 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
11: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधु ने कहा कि सरकार मृतकों के परिवार के साथ है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही सभी एजेंसियां दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। राजधानी में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अधिकारी सभी संबंधित दस्तावेज जुटा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इमारत के पास

0: वैध एनओसी थी या नहीं।
1: कार्रवाई चल रही है, ऐसी एक भी इमारत को छोड़ेंगे नहीं। उतार किया जाएगा मालिक को जिसने लापरवाही की है, सब पे कार्रवाई हो रही है।
0: दिल्ली अग्निशमन सेवा के जनसंपर्क अधिकारी AK मलिक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिस इमारत में आग लगी है वह अंदर से पूरा पैक है।
2: सामने की तरफ फसाद लगा हुआ था और जितनी भी ओपनिंग बिल्डिंग के अंदर थी वो सारी सील। इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं दे एक्ट एज ए चिमनी, तो इसमें जब भी कभी फायर एक्सीडेंट होगा

0: है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर जनसेवा सदन पहुंचे। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामलों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई केवल शिकायत दर्ज कराने का माध्यम नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास, संवाद और जवाबदेही को मजबूत करने का अहम मंच है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस साल 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए निष्पक्ष और वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। इससे पहले न्यायालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और विशेषज्ञों द्वारा नए सिरे से समीक्षा करने का निर्देश दिया था। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं या पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने आज जंगपुरा और डिफेंस कॉलोनी अंडरपास क्षेत्रों में चल रहे नागरिक सुधार कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सफाई और व्यापक स्वच्छता गतिविधियों की समीक्षा भी की।
3: इस दौरान एमसीडी की जमीन पर अतिक्रमण का भी निरीक्षण किया गया और सार्वजनिक स्थानों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हटाने के आवश्यक निर्देश जारी किए गए। नगर निगम ने क्षेत्र में भीड़ कम करने और यातायात की सुगमता बढ़ाने के लिए सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण कार्यों की प्रगति का आकलन किया। वहीं निगम ने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए विकसित की जा रही वर्षा जल संचयन संरचना की भी समीक्षा की। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने क्षेत्र में कचरा और निर्माण मलबा फेंकने से रोकने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे बन रही सुरक्षा दीवार का भी जायजा लिया। निगम ने लाजपत नगर में चल रहे पार्क पुनर्विकास कार्यों की भी समीक्षा की और सभी परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: दिल्ली सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज बताया कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी के माध्यम से राशन व्यवस्था को लेकर कुछ अधूरी और भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था में भी जनता को हमेशा राशन मिलता रहेगा। श्री सिरसा ने कहा कि इस व्यवस्था में यह फायदा है कि अगर लोग 2-3 महीने तक भी राशन नहीं ले पाते हैं तो वो राशन अगले महीने की पात्रता में जुड़ जाएगा और लोग उसे बाद में ले सकेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि एक प्रोग्रामेबल डिजिटल व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इसे अधिकृत राशन दुकानों पर अनाज खरीदने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कोई दूसरी वस्तु नहीं खरीदी जा सकेगी और न ही राशि किसी अन्य काम में इस्तेमाल हो सकेगी। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस महिला आरोपी के पास से 216 ग्राम मादक पदार्थ और 5 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई। ये बरामदगी दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने और सक्रिय पुलिसिंग तथा निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से जन सुरक्षा बनाए रखने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई मादक पदार्थ निरोधी दस्ते ने सुल्तानपुरी से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 2 किलोग्राम से अधिक का मादक

0: पदार्थ और एक स्कूटी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने जमीनी स्तर के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए 16वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों को 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास एक विकसित भारत की नींव है। आधुनिक शासन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए श्री सिंह ने पंचायत प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उपकरणों और नवीन समाधानों को अधिक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते, और इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में के प्रति उनका समर्पण रहा। हम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम की, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
0: दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत 34 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत 8 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह में एनपीए 2025 की शेष श्रेणियों को शामिल किया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के 6 स्नातकोत्तर और 4 पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ई काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में दाखिला केवल ई काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 8 जून तक संस्थान की वेबसाइट www.iimc.admissions.nic.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। पहली सीट आवंटन की सूची 9 जून को जारी की जाएगी। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। दिल्ली में आज सुबह के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर पुनर्विचार के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
3: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
2: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
4: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
2: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने उड़ीसा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रूपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेस 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आया है। इससे पहले भी वे अलग अलग पदों पर रहते हुए भारत का दौरा कर चुकी हैं। सुश्री डेल्सी रोड्रिग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। श्री गौर ने दोनों देशों के रिश्तों को आधुनिक समय की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक बताया। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। द The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide ATF price stabilization support to

सबको अपना अपना संगीत अच्छा लगता है। लोहार को निहाई पर हथौड़े की धमक, तो बढ़ई को अपने रंदे की खरर खरर, सुनार की धोकनी की फरर फरर, और जब ठठेरा लगातार ठोंकता है तो सारे साज शांत हो जाते हैं। पर जब बात आती है शास्त्रीय संगीत की, तो एक शक्ति के रूप में ये अपनी छटा बिखेरता है। टूटे दिलों को जोड़ता है ये संगीत। अगर जिंदगी एक संघर्ष है, तो इस संघर्ष से हमें जूझने की अथाह शक्ति पैदा करता है, पैदा करके हमें अथाह शक्ति से भर देता है संगीत। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है 8:11:53। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ मधुरिमा कार्यक्रम में, और आज मधुरिमा में हम बातें करेंगे झपताल की, और सुनेंगे फिल्मों से उन्हीं गीतों को जो कि होंगे रागों पर आधारित और पिरोए गए हैं झपताल पर ही। तो चलिए सुनते हैं पहला गीत जिसे हमने शामिल किया है फिल्म एक बार मुस्कुरा दो से। किशोर साहब के स्वर में ये गीत आप सभी के लिए।

0: एक बार मुस्कुरा दो फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। राग कल्याण पर आधारित ये गीत था। संगीत से पिरोया था इस गीत को ओपी नैयर साहब ने और गीत के बोल लिखे थे इंदिवर साहब ने और स्वर जैसा कि अभी हमने बताया किशोर साहब का। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं रूपा के साथ मधुरिमा कार्यक्रम में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बात की अभी आपसे कि आज हम मधुरिमा में सुनेंगे झपताल पर पिरोए गए कुछ गीतों को, और बातें होंगी झपताल पर ही। तो ताल का संगीत में मुख्य स्थान है। जिस तरह से शरीर में प्राण न होने पर वो मिट्टी के ढेर के समान हो जाता है, उसी तरह ताल के बिना संगीत भी अधूरा होता है। अगला गीत शामिल कर रहे हैं हम दिल तेरा दीवाना फिल्म से, रफी साहब के स्वर में। भीमप्लासी राग पर आधारित ये गीत है और इसमें संगीत दिया है शंकर जयकिशन साहब ने और गीत के बोल लिखे हसरत जयपुरी साहब ने।

अभी आपने सुना दिल तेरा दीवाना फिल्म से रफी साहब और लता जी के स्वर में ये गीत। बात कर रहे हैं हम मधुरिमा में झपताल पर आधारित गीतों की, जिन्हें झपताल में पिरोया गया। वैसे दोस्तों, ताल से ही स्वरों को गति मिलती है, साथ ही संगीत को एक निश्चित समय के बंधन में भी ये बांधती है। इस ताल के कारण ही एक अलग असली रूप संगीत हमें चमत्कारी रूप से मिलता है, जो हमें आत्मविभोर कर देता है। सुनते हैं अगला गीत प्रोफेसर फिल्म से राग शिवरंजनी पर आधारित, संगीत शंकर जयकिशन साहब का और गीतकार हैं हसरत जयपुरी साहब।

तो दोस्तों झपताल पर सुने गीतों को आज आपने सुना मधुरिमा में। झपताल का परिचय भी आपको दे दें। झपताल 10 मात्रा की होती है जिसके 4 विभाग होते हैं जो कि 2-3 और 2-3 मात्रा के होते हैं। ये ताल गीत और ख्याल गायकी के साथ बजाई जाती है। मधुरिमा का सफर यहीं तक। अनुमति दीजिए रूपा को। फिलहाल आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के FM गोल्ड पर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम। नमस्कार।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का

0: ये नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स डबल्स में रोहन कपूर तथा ऋत्विका शिवानी गद्दे ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आर प्रज्ञानानंदा ने मैग्नस कार्लसन पर शानदार जीत दर्ज की। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल बाजी में उन्हें दूसरी बार हराया। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को और महिला टीम ने सिंगापुर को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश के युवाओं से साइकिल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने आज चीन के वेंग होंगयांग को 8-21, 22-20, 21-15 से हराया। वहीं मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की जोड़ी ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पोहान को 21-14, 21-14 से मात दी। एचएस प्रणय को आयरलैंड के नहत गुएन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशियाई जोड़ी कांग काई जिंग और आरोन ताई के खिलाफ पहले ही सेट में कंधे की चोट के कारण बाहर हो गए। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा को जापान की नोजोमी ओकुहारा से 21-15, 21-14 से हार का सामना करना पड़ा। सिंगापुर ओपन जीतने के बाद भारतीय प्रशंसकों को सात्विक चिराग से उम्मीदें थी, लेकिन वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और अब सबकी निगाहें पीवी सिंधु पर होगी, जहां वो वुमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में कल मुकाबला करती नजर आएंगी। और अब रुख कर लेते हैं शतरंज की ओर। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल बाजी में उन्हें दूसरी बार हराया और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पहले भारतीय चैंपियन बनने की अपनी दावेदारी को मजबूत किया।
1: प्रज्ञानंदा इस वर्ष क्लासिकल बाजी में कार्लसन को दो बार हराने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस एलीट डबल राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में उन्होंने पहले भी कार्लसन को क्लासिकल बाजी में हराया था। इस जीत से 20 वर्षीय प्रज्ञानंदा के 12 अंक हो गए हैं और वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ इस हार से कार्लसन की 8वीं बार नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। अब केवल 2 राउंड रह गए हैं और ऐसे में मौजूदा चैंपियन कार्लसन के लिए खिताब बचाना आसान नहीं होगा। कार्लसन का यह अभियान उथल पुथल भरा रहा है, जिसमें उन्हें 4 बार क्लासिकल बाजी में हार का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंदा 9वें दौर में काले मुहरों से भारत के ही गुकेश से खेलेंगे। इस बीच अंक तालिका में शीर्ष पर चल रहे अमरीकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आर्मागेडन टाई ब्रेक में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया, जिससे उनके अंक 14 हो गए हैं। फ्रांस के फिरोजा ने क्लासिकल मुकाबले में गुकेश को हराकर 13 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। विश्व चैंपियन डी गुकेश की खिताब जीतने की उम्मीदें 8वें दौर में फ्रांसीसी ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा से एक और करारी हार के बाद खत्म हो गयी। वे 8 अंकों के साथ तालिका में सबसे निचले पायदान पर आ गए हैं। 2024 में विश्व चैंपियन बनने के बाद गुकेश का खराब प्रदर्शन जारी है। इस टूर्नामेंट में गुकेश की क्लासिकल बाजी में ये तीसरी हार थी। इससे उनकी इस साल के आखिर में उज्बेकिस्तान के चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप के अपने खिताब का बचाव करने की तैयारी को भी झटका लगा है। उधर महिला वर्ग में कजाकिस्तान की बिबिसारा असाउबायोवा ने दिव्या देशमुख को क्लासिकल बाजी में हराकर खिताब की दौड़ में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चीन की झू जिनर ने भी क्लासिकल में जीत हासिल की। उन्होंने मौजूदा महिला विश्व चैंपियन जू वेंजुन को हराकर 10 अंक के साथ दिव्या की बराबरी कर ली है। मौजूदा चैंपियन अन्ना मुजिचुक और कोनेरू हम्पी ने अपना क्लासिकल गेम ड्रॉ किया। इसके बाद आर्मागेडन टाई ब्रेक भी ड्रॉ रहने से हम्पी को बोनस अंक मिल गया, क्योंकि वे काले मोहरों से खेल रही थी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और पर अब रुख कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर, जहां पुरुष

0: और महिला वर्ग दोनों में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। महिला अंडर 18 एशिया कप हॉकी के पुल ए के अंतिम मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 25-0 से हराया। भारत प्रतियोगिता में पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुका है।
1: भारत ने सिंगापुर के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया। भारत के कम से कम 10 खिलाड़ियों ने गोल किए, जिनमें नौशीन नाज सबसे आगे रहीं। उन्होंने 8वें, 13वें, 17वें, 18वें, 40वें, 92वें, 98वें मिनट में गोल दागकर कुल 7 गोल किए। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही गीताश्री नामी ने 5 गोल किए, जबकि कप्तान स्वीटी कुजुर ने 4 गोल का योगदान दिया। प्रियंका मिज ने 22वें, 37वें, 53वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक बनाई। दिया 27वें, नैन्सी सरोहा 36वें, श्रुति कुमारी 40वें, पुष्पा मांझी 47वें, रश्मीन कौर 47वें और संदीपा कुमारी ने 91 मिनट में गोल करके अपना अहम योगदान दिया। भारत ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। कप्तान स्वीटी ने दूसरे ही मिनट में पहला गोल दागा। नौशीन ने 8वें मिनट में बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद गीताश्री और नौशीन ने 13वें मिनट में एक एक गोल करके भारत की पकड़ मजबूत कर दी। भारतीय टीम ने इसके बाद भी गोल करना जारी रखा और अपनी सबसे बड़ी जीत में से एक दर्ज की। पूल ए में भारत ने मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर को हराकर 9 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूल ए मैच के मुकाबले में आज भारत ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराया। भारत ने कजाकिस्तान, कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत के साथ अपने पूल मैच खत्म किए, जबकि मेजबान जापान से उसे हार का सामना करना पड़ा। इससे टीम को 4 मैच में 9 अंक मिले। भारत शुक्रवार को अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा। रुख कर लेते हैं प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट की ओर। फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 और 4 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता आर्याना सबालेंका आज क्वार्टर फाइनल में डायना साइडर के खिलाफ 3-6, 7-5, 6-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। वहीं पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अलेक्जेंडर ने कल राफेल जोडर को 7-6, 6-1, 6-3 से हराया। सेमीफाइनल में ज्वेरेव का मुकाबला मेंसिक से होगा। आइए जानते हैं क्वार्टर फाइनल में कैसा रहा उनका प्रदर्शन।
2: पिछले साल फाइनल में पहुंचे ज्वेरेव को कोर्ट फिलिप चेट्रियर पर पहले सेट में 19 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी ने कड़ी टक्कर दी। ज्वेरेव ने 2-5 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और 2 घंटे 17 मिनट तक चले मुकाबले को अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में और इस सीजन में क्ले कोर्ट पर 19 जीत के साथ सबसे आगे रहने के बावजूद 19 वर्षीय स्पेनिश ने पहले सेट में सर्व तोड़कर 5-2 की बढ़त बना ली थी, लेकिन ज्वेरेव ने अगले 6 में से 5 गेम जीतकर मैच को टाई ब्रेक तक पहुंचा दिया। इसके बाद ज्वेरेव तेजी से 3-3 की बराबरी पर पहुंचे और फिर लगातार 4 पॉइंट्स जीतकर सेट अपने नाम कर लिया। वहां से ज्वेरेव पूरी तरह हावी हो गए। अपनी पहली सर्व पर 71% पॉइंट्स जीतकर और जोरदार फोरहैंड लगाते हुए उन्होंने दूसरे सेट में 1-1 की बराबरी से लगातार 7 गेम जीते और 2 सेट की बढ़त के साथ मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस साल ज्वेरेव ने यहां 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 सेट गवाया है और यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच जैसे दिग्गज पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो ज्वेरेव पहले ग्रैंड स्लैम को अपने नाम करने के प्रबल दावेदार हैं। उधर भारत के एन श्रीराम बालाजी और ब्राजील के उनके जोड़ीदार मार्सेलो डेमोलिनर पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन से 3-6, 4-6 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: एशियाई रिले चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह 20 और 21 जून को चीन के सांग्यू में भारत की 29 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय टीम 6 रिले स्पर्धाओं में हिस्सा लेगी। एशियाई रिले चैंपियनशिप का तीसरा सत्र चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: होने वाली एशियाई रिले चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा की जाएगी। प्रतियोगिता में पुरुषों की 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले तथा महिलाओं की 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले स्पर्धाएं शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय टीम मिक्स्ड 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले स्पर्धाओं में भी हिस्सा लेगी। भारतीय टीम में पुरुषों के 4x400 मीटर और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में तीर्थेश पी शेट्टी, अविनाश कुमार, सेतु मिश्रा, निहाल विलियम, एस संतोष,

0: जोसेफ, सूरज अलगर राजा, मोहित कुमार, बरात श्रीधर हिस्सा लेंगे। वहीं 4x100 मीटर और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में अनिमेश कुजूर, गुरिंदर वीर सिंह, हर्ष संतोष राउत, प्रणव प्रमोद गौरव, राहुल कुमार, गणेश कुमार, सेंथिल कुमार, तमिल राजु प्रतिस्पर्धा करेंगे। जबकि महिलाओं के 4x400 मीटर और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में रशदीप कौर, पुअम्मा एमआर, अंसा बाबू, विजय कुमारी जी के, सलोनी नागर, नीरू पाठक, सुभा वी, गौरी नंदना चुनौती पेश करेंगी। और 4x100 मीटर मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में नित्या गंधे, तमन्ना, स्नेहा एसएस, सुदेशना शिवंकर, अभिनया राजराजन दमखम दिखाएंगी। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश की युवा पीढ़ी से साइकिल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा, आज देश की युवा शक्ति से साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की।
2: मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ, साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है।
1: डॉक्टर मांडविया ने साइकिलिंग को पर्यावरण संरक्षण का सबसे टिकाऊ माध्यम बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का भी जिक्र किया।
2: जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे, उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा। आज ग्लोबल चैलेंजेस के इस दौर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया है। ऐसे में साइकिलिंग एक प्रभावी और सकारात्मक समाधान बनकर सामने आती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट को संडे ऑन साइकिल जैसे अभियानों ने नई गति दी है। देश भर के लाखों युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं।
1: और अब बात क्रिकेट की। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि उनकी टीम महिला T20 विश्व कप में अपनी अंतिम 11 को लेकर काफी स्पष्ट है और वे इससे पहले दो अभ्यास मैच का उपयोग कुछ और संयोजन आजमाने तथा राधा यादव और भारती फुलमाली जैसे खिलाड़ियों को अवसर देने के लिए करेंगी। भारत महिला T20 विश्व कप पहला खिताब जीतने के लंबे इंतजार को खत्म करने की उम्मीद से इंग्लैंड पहुंचा है, लेकिन वे मेजबान इंग्लैंड से 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 2-1 से हार गया, जिससे ICC के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से पहले उनकी तैयारियों को झटका लगा। स्मृति मानधना ने तीसरी T20 के बाद कहा कि इंग्लैंड में सीरीज खेलना जहां हमें विश्व कप खेलना है तैयारियों के हिसाब से बहुत अच्छा है। विश्व कप में सलामी बल्लेबाजों की भूमिका बेहद अहम होगी।
3: Coming early and playing a series in England, we're going to play a World Cup definitely. In terms of the preparations, extremely good to do that. But yeah, again, taking back, definitely I think me and Shefali both have a huge role to play going forward. And we'll take it in our stride again with our bowling. Again, we'll go back to the drawing board, see which options can be better. We did that before this series. Maybe we can go back again. And now I think we know that these conditions, what balls to be bowled. I think those 2-3 things, I mean, I'm sure that it's going to help a lot of our players.
1: भारत आगामी विश्व कप में अपना पहला मैच 14 जून को बर्मिंगम में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप कल से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 400 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
4: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
5: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
5: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बैनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत

0: बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रूपये भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है।

0: शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल से दवाई ले रहा हूँ, जो सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हू लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritavrat Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
5: ATF price stabilization fund mein
6: a self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
5: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
4: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradeep in Odisha.
5: Odisha mein coastal highway.
6: In Odisha, the phase 1 of the coastal highway was approved today. It will extend from Rameshwar through Konark up to Paradeep, covering the stretch from the southern tip of Odisha to its central region, reaching Paradeep. Additionally, a very important highway project has been approved in Bihar, that is the four-laning of the road between Khagaria and Purnia.
5: Khagaria se Purnia ke beech mein four-laning.
4: In West Bengal, Social Security Scheme Annapurna Yojana was formally launched in the state today by Chief Minister Shubhendu Adhikari, transferring 3,000 rupees directly into the bank accounts of over 28 lakh women. Five women were symbolically handed approval letters during the ceremony. In a major political development in West Bengal, Ritobroto Banerjee has been appointed as the leader of the opposition in the West Bengal Legislative Assembly. The appointment follows the Assembly Speaker's reported recognition of a rebel group of Trinamool Congress legislators as a separate legislature party. More from our correspondent.
7: Ritobroto, a former CPIM Rajya Sabha MP who later joined the Trinamool Congress, secured the backing of nearly 60 MLAs, enough to cross the two-thirds mark required under the anti-defection law. The move has triggered a major split within the Trinamool Congress. Mamata Banerjee's faction had earlier nominated Shobhandeep Chattopadhyay as leader of the opposition. Speaking to reporters after meeting the speaker, Ritobroto claimed that the dissident legislatures now constitute the real and main opposition in the House. He said his group will act as a constructive opposition, supporting the government when needed, but standing firm against policies they oppose. The development comes amid an intense political crisis within the Trinamool Congress, which has been facing internal dissension following the recent assembly elections. The party had earlier expelled MLA Ritobroto and Sandipan Shaha over alleged anti-party activities. Political observers are calling this one of the most significant challenges to Mamata Banerjee's leadership since she came to power, drawing comparisons to the Shiv Sena split in Maharashtra. Legal battles and further defections are expected in the days ahead. Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
4: To strengthen surveillance and infrastructure along the India-Bangladesh border, the West Bengal government has approved the transfer of nearly 32 acres of land to the Border Security Force. At today's cabinet meeting in Nabanno, approval was given for the permanent transfer of this land for building border fences, security posts and other facilities. After the meeting, Minister Dilip Ghosh announced that a total of around 32 acres across several border districts have already been transferred to the BSF. In Karnataka, senior Congress leader D.K. Shivakumar was sworn in as the 25th Chief Minister of the state today.

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर GPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का।

0: नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मॉनसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
2: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
0: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी है कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीएआर इंस्टीट्यूट हैं जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से एक किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कम्पोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसीएआर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
0: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मॉनसून का औसत तो ठीक रहता है लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है, इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है, उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है, इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जा सके।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मॉनसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
3: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पर टैंक बना रखे, तालाब बना रखे, उनकी कोशिश होती जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पर बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा

0: चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं, और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है। अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के बाद जो महीने रहेंगे, वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी, हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही,
1: जी
0: अगर धान की सब क्षेत्र नीचे हैं जिसमें पानी खड़ा होता है, तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है, और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है, और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट फीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकाली हैं जिसमें कि 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है, और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें, जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए, और जहाँ पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के, या तो मक्का लगाएं, या मोटे अनाज लगाएं, या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई, ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं, और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है, और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है, जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है, जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए। खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात या मध्य भारत की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है, तो वहां पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग 1 हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं, और किसान को सही समय पे सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है,
1: जी
0: और कृषि वैज्ञानिक गाँव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है, और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें। मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी
0: करती है,
1: बिल्कुल
0: खासकर
1: रवाज जी,
0: सब्जियों और
1: बिल्कुल सही
0: फलों
1: कह
0: में,
1: रहे हैं
0: तो
1: आप
0: उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं,
1: जी
0: और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी के तौर पर और उसमें हमारे सक्षम है, और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल यह है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
2: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, या इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है, भारतवर्ष के कहे या क्योंकि अगर सौर ग्रह रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं उसको प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो, और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको

0: कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एलिनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मॉनसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एलिनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एलिनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारत वर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जब लानिना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, एक तरह जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एलिनो कंडीशन यानी कि जो समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए निगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मानसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एलिनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मानसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एलिनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मानसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एलिनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एलिनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशंस जो है वो डेवलप हो सकती है, प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यह भी एक कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यावहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, इनको मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो ऐसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उनको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमारी भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय को होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उनका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब फसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक पाल साल निवार आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे
1: जी
2: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी और साथ साथ में मिट्टी का जब

0: उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो व्यय में विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: टपाल
0: साथ
1: जी,
0: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत

0: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
1: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है, वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो लेते ह्यूमिडिटी है उसको तो रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म इन्वायरमेंट की कंडीशंस होती हैं, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका, ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
0: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
2: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है। उस सपने में वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सारी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है। क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री, कृषि अर्थशास्त्री हैं, उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना, मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
0: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है। जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
1: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में किया, अगर हम पूरे वैश्विक स्तर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो वृद्धि हो रही है।

0: साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के, कि वातावरण में एटमॉस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रिजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं, और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान
1: जी
0: दिया जा रहा है।
1: जी
0: इसके साथ साथ में AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है ये, इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल। मॉनसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मॉनसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए यह आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत

0: 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध हैं, जो बौद्ध धर्म और रामायण की साझा विरासत में परिलक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का उत्सव भारत लाओस द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके कुमार शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जाँच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेगी। आस पास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही है जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दे को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। ये विकास मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से क्षमता वृद्धि को रिकॉर्ड गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। श्री गोर ने दोनों देशों के रिश्तों को आधुनिक समय की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक बताया। अमरीका का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन कर रहे हैं। श्री सर्जियो गोर ने भारत और अमरीका के रिश्तों को आधुनिक समय की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक बताया। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रॉड्रिगेज गोमेज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री डेल्सी रॉड्रिगेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाइयां, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो सेक्टर से जुड़े विभिन्न स्थलों का भी दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना और सहयोग के नए अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसका आधार ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, व्यापार और विकासशील देशों के प्रति साझा प्रतिबद्धता है। विश्व दर्पण के लिए अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अजीत वर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोमविहाने से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध हैं जो बौद्ध धर्म और रामायण की साझा विरासत में परिलक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का उत्सव भारत लाओस द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन की विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। सुश्री कूपर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। कल शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और अमरीका के बीच जारी संघर्ष आज और तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए।
3: एक ड्रोन हमले में कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य यात्री टर्मिनल को नुकसान पहुंचा। हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 63 लोग घायल हो गए। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिक की मौत पर शोक व्यक्त किया है। दूतावास ने कहा कि वह कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ
4: विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
1: यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के बाहरी इलाकों में ड्रोन हमला किया है। यह हमला रूस में एक बड़े आर्थिक मंच की शुरुआत से कुछ घंटे पहले हुआ। रूस के अधिकारियों के अनुसार वायु रक्षा प्रणाली ने रात भर में 59 ड्रोन को मार गिराया। हमले का असर सेंट पीटर्सबर्ग के 3 जिलों में देखा गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस हमले का जवाब देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को इस आर्थिक मंच में भाषण देने वाले हैं। इसमें 130 देशों के हजारों प्रतिनिधि शामिल होंगे। हमले के कारण मोबाइल इंटरनेट सेवाओं में बाधा आई और पुल्कोवो हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। पड़ोसी देशों लातविया और एस्टोनिया के कुछ हिस्सों में भी हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने कंबोडिया में UPI भुगतान सुविधा आरंभ करने के लिए कंबोडिया के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक ACLEDA बैंक के साथ साझेदारी की है।

0: वित्त मंत्रालय ने बताया कि पहले चरण में लाखों भारतीय यात्री 45 लाख से अधिक कंबोडियाई व्यापारियों को सुगमता से QR भुगतान कर सकेंगे और इसके बाद अगले चरण में दो तरफा भुगतान सुविधा स्थापित की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि UPI अभी सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर और श्रीलंका सहित 8 देशों में स्वीकार किया जा रहा है। श्रीलंका में भारतीय कंपनियों को महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त हुए हैं। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और मजबूत हो रहा है। भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन की श्रीलंका स्थित कंपनी लंका IOC को सपुगासकंदा पावर स्टेशन के लिए वर्ष 2026-27 में 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल की सप्लाई का ठेका मिला है। इस ठेके की कीमत लगभग 39 करोड़ श्रीलंकाई रूपये है। भारत की RS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को श्रीलंका के मुल्लीकुल्लम विंड पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने का ठेका मिला है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 50 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेते फ्रेडरिक्सन को तीसरी बार पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क आपसी विश्वास, समान मूल्यों और सतत भविष्य के लक्ष्यों को साझा करते हैं। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी पुरुष सिंगल्स में चीन के वेंगहोंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पोहान को मात दी। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय, महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी प्रतियोगिता से बाहर हो गए। संयुक्त राष्ट्र के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में मध्यम से अलनीनो के तीव्र होने की आशंका है। इससे वैश्विक तापमान में तेजी और मौसम से जुड़ी घटनाओं में वृद्धि को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। विश्व मौसम संगठन के अनुसार मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में बढ़ोतरी इसका कारण है। जून से अगस्त तक दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान का पूर्वानुमान लगाया गया है। यह स्थिति नवम्बर तक रह सकती है। संगठन की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा कि देशों को अलनीनो की संभावना के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत अमरीका को पीछे छोड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बना। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज 5 दिन की यात्रा पर भारत पहुंची। कुवैत हवाई अड्डे पर ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत। खाड़ी संकट बढ़ने से तेल की कीमतों में उछाल। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में प्रमुख आर्थिक मंच के आयोजन से पहले यूक्रेन का ड्रोन हमला। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी ने चीन के वेंग होंग यांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with World News. The headlines. India becomes world's second largest solar growth market, surpassing US in annual solar capacity additions. Venezuela's acting president Delcy Rodriguez arrives in India for a 5-day visit. Iran hits Kuwait airport, killing one international. Oil prices jump amid escalating Gulf crisis. Ukrainian drone strikes St. Petersburg before the Russian city hosts major economic forum. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. And now the news in detail. India has surpassed the US in annual solar capacity additions to become the world's second largest solar growth market in 2025. Highlighting the remarkable achievement, Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi today said that the country's solar growth story is setting global benchmarks and driving record capacity additions through strong policy support, innovation and world-class infrastructure, a report.
2: India has crossed a remarkable 155 gigawatts of installed

ये आकाशवाणी है। भारत में व्यवस्थित रेडियो प्रसारण 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो नाम से शुरू हुआ था। इस प्रसारण को शुरू हुए 90 वर्ष हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वृत्त रूपक श्रृंखला प्रसारण की प्रतिध्वनिया का दूसरा भाग। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन और प्रस्तुति सहित

सोया भारत अंगड़ाई ले रहा था। वीर जवानों में आजादी का जोश बढ़ रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान से सिंगापुर होते हुए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए कोहिमा तक आ चुके थे।

0: एक ओर गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते थे, तो दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन पर अड़े हुए थे।
1: एक दिन वो भी आया जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारत छोड़ना ही पड़ेगा।
0: अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन और तेज हो गया।
1: भारत को आजाद कराने की विधि व्यवस्था के लिए इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया।
0: मोहम्मद अली जिन्ना ने कमीशन के सामने मुस्लिम लीग का अपना एजेंडा रख दिया। वे मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे।
1: 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हो गया था।
0: 3 जून 1947 की सांझ ढल रही थी। सुगबुगाहट थी कि आज भारत की आजादी को लेकर नेता लोग आकाशवाणी आ रहे हैं। कुछ ही देर में वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह दिल्ली के प्रसारण भवन आ गए।
1: स्टूडियो की बत्ती लाल हुई। माउंटबेटन ने अपने साथ बैठे सहभागियों के चेहरे पढ़े और अपनी बात कह दी।
2: A statement will be read to you tonight, giving the final decision of His Majesty's government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. But before this happens, I want to give a personal message to the people of India, as well as a short account of the discussions which I have held with the leaders of the political parties, and which have led up to the advice I tendered to His Majesty's government during my recent visit to London. Since my arrival in India at the end of March, I have spent almost every day in consultation with as many of the leaders and representatives of as many communities and interests as possible. I wish to say how grateful I am for all the information and helpful advice they have given me. Nothing I have seen or heard in the past few weeks has shaken my firm opinion that with a reasonable measure of goodwill between the communities, a unified India would be by far the best solution of the problem. I have made no mention of the Indian states, since the new decisions of His Majesty's government are concerned with the transfer of power in British India.
1: उन्होंने जो कहा, उसका भाव था।
0: भारतीय लोग लंबे समय से आजादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक तनाव और पाकिस्तान की मांग को देखते हुए भारत विभाजन रोकने के प्रयास सफल नहीं रहे। 72 दिन में यानी 15 अगस्त तक सत्ता हस्तांतरण किया जाना है। उससे पहले काफी काम करने हैं।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन का सार था,
3: यह एक कठिन निर्णय है जिसे हमने भारी मन से स्वीकार किया है, लेकिन यह फैसला हमें आजादी की ओर ले जाएगा।
1: मोहम्मद अली जिन्ना बोले,
4: हम जो चाहते थे वो हमें मिलने वाला है, बस थोड़े से सब्र की जरूरत है।
1: सरदार बलदेव सिंह के कथन

0: का सार था,
1: मुल्क का बंटवारा होना कोई अच्छी बात नहीं है। देश के अंदर जिस तरह के हालात हैं, उन्हें देखते हुए देश का बंटवारा करना एक मजबूरी है। जरूरी है कि हम शांति बनाए रखें।
2: भारत के प्रसारण इतिहास में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय बहुत खास था। इसी समय ऑल इंडिया रेडियो ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित सत्ता हस्तांतरण समारोह का सजीव प्रसारण किया था।

0: वतन।
1: सेंट्रल हॉल खचाखच भरा हुआ था, वातावरण बहुत खुशगवार था। रात के करीब 12 बजे थे, एक उद्घोषणा हुई और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की सत्ता प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दी। इस अवसर पर वॉइसरॉय लुई माउंटबेटन ने अपने संबोधन में कहा,
2: I have a message from His Majesty the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi.
1: प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने लोक प्रसिद्ध संबोधन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में कहा,
3: कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी, अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद खुद मुख्तार असेंबली होगी और लॉन्ग years ago वी मेड a tryst विथ डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity.

0: एक तरफ भारत की आजादी का जश्न था तो दूसरी तरफ विभाजन का दुख।
1: भारत के बंटवारे ने हमारी साझी विरासत को बड़ी ठेस पहुंचाई। दोनों ओर अनगिनत लोग हिंसा के शिकार हुए।

0: देश में बंटवारे के कारण जगह जगह शरणार्थी शिविर लगाए जा रहे थे। पाकिस्तान से विस्थापित कुछ लोग कुरुक्षेत्र में रुके हुए थे। गांधी जी को विस्थापितों से मिलने कुरुक्षेत्र जाना था, लेकिन व्यस्तता के कारण वे जा न सके। गांधी जी को सुझाव दिया गया कि वे रेडियो के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: गांधी जी पहली और अंतिम बार 12 नवंबर 1947 को रेडियो स्टेशन आए। 3 बजे उन्होंने कुरुक्षेत्र में ठहरे विस्थापितों को संबोधित किया।
2: मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। ये अनुभव मेरी जिंदगी में मेरे लिए दूसरा है। पहला अनुभव इंग्लैंड में हुआ था, जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया। मुझको पता ही नहीं था कि मुझको इस तरह से कुछ बोलना है। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ, मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है। जब मैंने सुना कि आप लोगों ने करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं, और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी, और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सोचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है, या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूं तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है।

0: गांधी जी 9 सितंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 तक बिरला हाउस में रहे।
1: बिरला हाउस में शाम के वक्त गांधी जी प्रार्थना सभा करते थे और इंडिया रेडियो प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग करने स्टाफ को बिरला हाउस भेजता था।
0: इस कार्यक्रम का प्रसारण स्टूडियो से रात 9:30 बजे होता था।

0: चल रहा था। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर अचानक वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, गांधी जी की हत्या कर दी गई। पूरा देश दुख के अथाह सागर में डूब गया।
1: अगले दिन बिरला हाउस से बापू की अंतिम यात्रा निकाली गई।
0: इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ऑल इंडिया रेडियो के प्रतिष्ठित कमेंटेटर मेलविल डेमेलो ने किसी तरह एक वाहन में खड़े होने की जगह बनाई और वहीं से एक मोबाइल ट्रांसमीटर से उन्होंने अंतिम यात्रा का आंखों देखा हाल सुनाया।
2: From the crowds. Now the fire is caught. More pieces of sandalwood are being placed. Garlands being flung into the air. Policemen sticks being raised to try and keep the crowds down. We're trying to move in closer to get a last glimpse

0: 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार था। गांधी जी की स्मृति को बनाए रखने के लिए आकाशवाणी से आज भी प्रत्येक शुक्रवार को गांधी जी के जीवन पर आधारित गांधी चर्चा या ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है।
1: इसके साथ साथ बापू के प्रति जन भावनाओं का सम्मान करते हुए वर्ष 2001 में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने घोषणा की कि प्रतिवर्ष 12 नवंबर को आकाशवाणी में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाएगा। यही वो दिन है जब 1947 में महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार आकाशवाणी आए थे।

0: बहुत संघर्षों के बाद देश स्वाधीन हुआ। विभाजन के दंश ने समाज में दरारें पैदा कर दीं। दोनों ओर आपसी दंगे हुए। रेडियो से नेताओं की शांति की अपील बार बार प्रसारित की जा रही थी। इसका प्रभाव साहित्य और संस्कृति पर भी पड़ा। आकाशवाणी में अपर महानिदेशक रहे साहित्यकार राजीव कुमार शुक्ल बताते हैं,
1: 200 साल की ब्रिटिश औपनिवेशिक गुलामी से जब अगस्त 1947 में भारत स्वाधीन हुआ तो वो पूरे देश के लिए बहुत आनंद और उमंग का प्रसंग बना और पूरे देश में उसका उत्साह के साथ उत्सव मनाया गया। पर साथ साथ एक बहुत बड़ी विभीषिका भी उस नवस्वाधीन देश ने झेली जब भारत का विभाजन हुआ, दो देश बने। तो हुआ ये कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़ी तादाद में लाखों लोग सीमाओं के आर पार आए गए और साथ साथ भयानक हिंसा भी हमने देखी, सांप्रदायिक हिंसा भी देश ने झेली। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी संकट की बात थी क्योंकि भारत का स्वाधीनता आंदोलन भी जो है वो नैतिक मूल्यों को ऊपर रख करके और उनका पालन करते हुए चलाया गया था। हमारे जो स्वाधीनता आंदोलन के सबसे बड़े नायक थे, सबसे बड़े नेता थे, जिन्हें हम उचित ही राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी, उनकी पूरी सीख ये थी कि हम अहिंसा की शक्ति से संसार की सबसे बड़े साम्राज्य का मुकाबला करेंगे। लेकिन आजादी के

बाद भारत में हमने उस बड़े संकट को देखा। स्वाधीन भारत की जो सरकार थी, चूंकि इस देश ने शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता को एक मूल्य के रूप में, आदर्श के रूप में स्वीकार किया था, तो वह हिंसा किसी तरह से भी स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए पूरी तरह से प्रयास ये हुआ जो हमारे नेता थे आजादी की लड़ाई के और उसके बाद भारत की आजाद सरकार के, प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार

0: प्रयास कर रहे थे, अपीलें कर रहे थे, और तय बात है कि उस समय आजादी मिल चुकी थी और इसलिए ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका भी अब भारत के हित में काम करने की हो चुकी थी, भारत की जनता के हित में काम करने की हो चुकी थी। तो शांति की जितनी भी ये बातें थी, शांति के जितने भी ये प्रयास थे, उनको आगे बढ़ाना और साथ साथ ऐसे माहौल में एक दूसरा पक्ष ये होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का प्रसार, सही सूचनाओं का प्रसार, कि अगर सूचनाएं सही सही मिलती हैं तो अफवाहों का बाजार उतना गर्म नहीं होता, झूठ का उतना प्रसार नहीं होता। तो ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत जोर शोर के साथ ये किया। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण ये भी भाग था कि महात्मा गांधी की जो प्रार्थना सभाएं होती थी उनका भी फिर प्रसारण होता था, और साथ साथ इस तरह से लगातार ये प्रयास होता था। हम जानते हैं कि ये जो विभीषिका थी, उस विभीषिका ने दोनों ही तरफ का गहरा असर इतना पड़ा कि हमारे साहित्य में, संस्कृति में भी इसका प्रभाव आया, चित्रकला में आया, साहित्य में। हम जानते हैं कि हिंदी की अगर बात करें, कि यशपाल का झूठा सच सबसे बड़ा, उसको एक महागाथा के रूप में लिया जाता है, विभाजन की त्रासदी की, भीष्म साहनी जी का तमस, और ऐसी अनेक रचनाएं हैं। असगर वजाहत का एक बहुत मशहूर नाटक है, जिन लाहौर नहीं देखा, इस तरह से अनेक रचनाएं ली गई। कृष्णा सोबती की रचनाएं हैं, अमृता प्रीतम की रचनाएं हैं जो पंजाबी में लिखी गई, और उधर गर्म हवा जैसी एक महान फिल्म भी बनी, बहुत बाद में बनी, लेकिन उसमें उस पूरे परिवेश को जैसे जीवंत किया गया, और अंत में ये संदेश दिया गया कि मनुष्यता का धर्म सबसे बड़ा है। ऑल इंडिया रेडियो ने पूरा प्रयास किया लगातार सद्भाव, प्रेम, सौहार्द बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम किया।
1: आज का अंक यहीं संपन्न होता है। आगामी अंक में मजबूत होते लोकतंत्र, रेडियो के विस्तार, विविध भारती की स्थापना, इन 90 वर्षों की यात्रा के प्रमुख पड़ाव होंगे। अब अनुमति दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनिया श्रृंखला की दूसरी कड़ी। वाचन स्वर देवेंद्र त्रिपाठी और निशा भारद्वाज। आलेख और प्रस्तुति पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन और प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना और निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए यह आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

0: इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिये में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
2: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
3: Thank you very much.
2: Thank you. I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
3: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
2: Absolutely. Mr. Tandon.
4: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में जी, उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, टैक्स में छूट, जीएसटी का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वदिन योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
2: जैसे भी शरद जी ने
4: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
2: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो there has been a significant expansion of the middle class in the last 12 years with more than 25 crore people exiting multidimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
3: I think it's a huge achievement because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. और देखिए हुआ क्या कि पॉवर्टी इंडेक्स की जो डेफिनेशन बदला गया. यू नो वी चेंज द डेफिनेशन बिकॉज आप पॉवर्टी को पहले कैसे डिफाइन करते थे इतने रुपए रोज का. आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है यू नो ऑन न्यूट्रिशन ऑन हेल्थ आपके पास घर नहीं है टुमारो यू गेट अ हाउस यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीइंग यू नो सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट. यू नो जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत. सो आई थिंक नाउ देर आर टॉयलेट्स एट. सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस बट ही इज एबल टू अफोर्ड एंड लिव अ लाइफ स्टाइल विच एनी अदर नॉर्मल मिडिल क्लास लिव्स. सो आई थिंक दैट हैज बीन द पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट पॉवर्टी बिकॉज दोज पीपल are financially fine. They may be earning whatever they earn. But today they have facilities which are probably been enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
2: The facilities that are very basic facilities. Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get.
3: No, but the thing is that me and you can call them basic. But for them it was a luxury at one point of time. And today they feel that these were basic amenities which I was lacking. And it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana. You know, the whole sanitation program which has been done. You know, Anubha, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just named all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं इससे लोग

0: इनकम। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती है वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई, ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले आप कहां खड़े थे। शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion। तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस, सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे।
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है, रोटी कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी। तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है।
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं, आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की। वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है, और जैसे अभी बात हो रही थी अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो GDP के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी GST, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके PLI योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी।
2: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है।
0: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनुभा। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभा वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं
1: बिल्कुल,
0: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इमेमोरियल, सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड। A lot of youngsters, and today, just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
1: yes.
0: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here, government became an angel.
1: Right.
0: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today, I'm telling you, when from being job seekers,
1: yes.

0: to being job creators. When I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees. You borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs. You know, you'll be surprised, the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as a very, very active GDP.
1: In fact, actually,
0: we did an analysis recently which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP, but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar, you also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati hai, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, I mean, people have opened their arms and embraced. पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ गया है।
1: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है. बिकॉज यू नो सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन यू नो अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स. सो इन द लास्ट 12 इयर्स व्हेन वी लुक एट द टैक्स रिफॉर्म्स दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, इफ वी लुक एट द जीरो टैक्स लिमिट एंड वेदर लाइक यू मेंशन द जीएसटी, नॉट जस्ट द इंट्रोडक्ट of GST, but after that, last year we saw the GST 2.0 also. How have these tax-related reforms in the past decade impacted middle class? Sir Tandon, what would you say to that?
2: देखिए, इसमें एक और पहलू भी है कि जो पेंशनर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाया जाता है उस महंगाई के इंडेक्स के साथ मिलाकर. तो टैक्स रिफॉर्म जो है, आपने जिनके जिक्र किया, उससे भी हम लोग अपनी मिडिल क्लास की बात करें, हम लोगों को 40-40, 50-50 हजार रुपए साल का टैक्स बचा है. तो हम भी मिडिल क्लास हैं सब लोग, तो ये जो लाभ मिला है मिडिल क्लास को और जो टैक्स के बारे में जितनी भी बातें हुई हैं, तो ये सब कुछ मिलाकर अगर देखें तो मैं समझता हूँ मिडिल क्लास आज बहुत खुश है. और शायद मिडिल क्लास की 4-5 लेयर्स को भी अगर अपर मिडिल क्लास की अगर अभी बात छोड़ भी दें, तो लोअर मिडिल क्लास को मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा होगा.
1: शरद जी, यू नो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स, इट्स नॉट जस्ट द एग्जेम्पशन, यू नो दैट द एग्जेम्पशन लिमिट हैज, यू नो, इन फैक्ट चेंज 4 times, इट इज इंक्रीज 4 times सिंस 2014, बट इट्स ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स, इट्स द प्रोसेस ऑफ यू नो द ट्रांसपेरेंसी दैट हैज बीन ब्रॉट इन दिस होल प्रोसेस. सो वट वुड यू से टू दैट, हाउ हैज इट मेड द लाइव्स ऑफ द मिडिल क्लास, यू नो, मच ईजियर? एंड नॉट मोर देन that, would you say that you know, the fact that the government has made the process so easy, and if we look at the number of ITRs filed, in fact last year more than 8 crore ITRs were filed, that's also showing the government, the Modi government's trust in the people, in their honesty, and it's a salute to the middle class.
0: All right, we call that a sabka vishwas. A government has gained that vishwas where people come forward and file. And I'll give you a very interesting, you know, dynamics of this whole tax, you know, number which you spoke of. About 9 crore returns were filed. And, you know, the real taxpayers, the people who actually paid tax, they were about 3 crore or so. But then because it's mandatory to file the return, so people participated in that activity, people came forward, and they have now understood with 12,75,000 rupees of income for the first time in India is tax exempt. You know, we did a case study of a couple who were both earning, one was earning about 5 lakhs and the other was earning about 7 lakhs, about 12 lakhs of earnings. Now they were not able to save for earlier for investments, for SIPs, for health insurance. Combined together, they save tax about a lakh of rupees. Now this lakh of rupees is going into health insurance, is going into insurance, is going into their retirement planning as well. And you know, it'll be unfair, Anubha, if when we talk of tax and we don't talk of the tax savings made by GST. Somebody asked me that only 3 crore people in India pay tax. I said, no, every citizen of this country pays GST because that's indirect taxation. So this GST 2.0 has put money in the pockets of people. And because primarily we are a consumption-driven economy, 55 to 60% of our economy comprises of me and you, and Mr. Tandon goes and buy goods from the shopkeepers, from service providers. So I think that has taken a big boost. And in the current scenario, when global economy is facing challenges, it is the Indian consumption, Anubha, which is driving the growth of the country.
1: Let's move on to the next, you know, area which I think has impacted the lives of the middle class in a very significant manner, which is digitization. And we all know that Prime Minister Modi is a big votary of digitization. So what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems, Mr. Kohli?
0: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
1: Financial and inclusion?
0: Absolutely. You know, Jandhan Yojana, more than 56 crore accounts. And these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. Yeah. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
1: Yes.
0: I think this has been transformational. And a lot of countries around the world now want to emulate that example.
1: Absolutely.
0: So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
1: Ashok ji, aap kuch kehna
2: chahiye? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Janadhan, Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ है.
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
0: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पर हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है. और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ कर
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
0: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे when I go to a village, I find the things they use, the way they talk, what they wear, the lifestyle they lead is pretty much like a normal town citizen. And there are so many learnings which are happening. Prime Minister recently made an appeal which said ki aap online classes lijiye. Kaise ye COVID mein hum karte, padhai ki likhai band ho jani thi agar ye connectivity nahi hoti. Bachchon ka koi nuksan COVID mein nahi hua. Aaj bhi Pradhan Mantri ji, hum apne videshi mudra bachane ke liye unhone kaha ki aap online classes lijiye. Kyon keh pa rahe hain? Kyunki unko pata hai ki uske peeche internet और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज
1: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम
0: जो किया, काम किया है, हमें उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
2: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह

0: बदल दिया गया है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है।
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
2: Oh, it's done in a huge way because we pick up anything. For example, highways. Any middle class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours an Uber for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubhav, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा। आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा। अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे। आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी, अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है। आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट में पहुंच रहे हैं, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। द थिंग्स वी यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री।
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान पर, अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
0: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड, अनुभव, रिलेट्स टू विकसित भारत 2047। और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी, तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को को याद करें और आज उसको इस परिपेक्ष में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के

0: चुके हैं, क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था। क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। वुमेन यू नो आर द बैकबोन ऑफ एनी मिडिल क्लास फैमिली। व्हाट इन योर opinion in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse har vargh ko hua hai, lekin vishesh taur se mahilaon aur kisanon aur yuvaon se jude hue jo hain. Ab aap dekhiye, agar hum बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी भी, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टूडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्व्ड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुमा नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है, और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहां तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है, तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक

0: वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
2: देखिए, जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप्ड की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूं, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
2: It was a pleasure.
0: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on Air. This program is also available on our YouTube channel News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने। गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है आज अर्पना। 11:46 हो चुके हैं, तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं दो मधुर गीतों के साथ। पहला गीत होगा मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। संगीत जो है इसका ओपी नैयर का दिया हुआ है। फिल्म का नाम है 12 o'clock। और इसके बाद आप सुनेंगे अगला गीत जो लता जी की आवाज में होगा और इसमें संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत मेरे मनमीत।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

11:54 और 51 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, गीत मेरे मनमीत। अगला गीत आप सुनेंगे शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध है, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत है, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में होगा ये गीत। फिल्म का नाम है चोरी चोरी।

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: तो बताइए फिर कि हमें पूछना है या नहीं पूछना कि आप हमारे कौन हैं। ये पूछने की जरूरत तो हमें पड़ती ही नहीं है क्योंकि हम हमेशा आपके साथ रहते हैं और ऐसे ही दिन रात आप भी हमारा साथ देते हैं क्योंकि ये है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इसी गीत के साथ अर्पना को दे इजाजत एफएम गोल्ड पर। अब आप सुनेंगे समाचार। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिये में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने इसे योगासन के वैश्विक खेल मानचित्र पर महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजकों तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं।

0: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय संबंधी केंद्रीय सलाहकार समिति की नई दिल्ली में उच्चस्तरीय राष्ट्रीय बैठक हुई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए योजना के वांछित परिणाम के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक आकांक्षी अनुसूचित जाति समुदायों तक पहुंचने के लिए पीएम अजय योजना का दायरा विस्तारित किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर दो दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel or ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, "This is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers."
2: ATF price stabilization fund mein
3: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
2: Laga tha because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
1: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Regional Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Prime Minister Narendra Modi has stated that yoga is gaining tremendous popularity across the world. In a social media post, the Prime Minister said that he will join the first World Yogasan Sports Championship 2026 virtually tomorrow. The championship will be held in Ahmedabad, Gujarat. Mr. Modi said the platform has brought together yoga enthusiasts from around the world. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar co-chaired the 10th India-Laos PDR Joint Commission meeting with Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Laos People's Democratic Republic, Thong Sawan Phomvihan, in New Delhi. During the meeting, both sides held detailed discussions on various aspects, including trade and investment, health, energy, digital connectivity, development partnership, capacity building and culture. UK Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs Yvette Cooper arrived in New Delhi on a two-day visit to India. Ms. Cooper is scheduled to call on Prime Minister Modi tomorrow. She will also meet External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar tomorrow. National Payments Corporation of India has officially partnered with Acleda Bank to launch Unified Payments Interface or UPI acceptance in Cambodia.

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन सकते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिकांत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आपने फिल्म राजपूत से किशोर कुमार की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत सुना। इन आंखों के साये में जरा आराम तो कर लेने दो, इन आंखों के साये में जरा आराम तो कर लेने दो, थक चुकी हूं दुनिया की धूप में चलते चलते।

अभी आपने हेमलता की आवाज में फिल्म अखियों के झरोके से ये गीत सुना। कहीं दूर तक चलना था, कहीं दूर तक ही चले आए। कहीं दूर तक चलना था, कहीं दूर तक ही चले आए कि इस दिखावे की दुनिया से हम बहुत परे हो गए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ अंजू। ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने आपको गीत सुनाया था उसे गाया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम था दूसरा आदमी।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ड्रीम गर्ल से ये गीत सुना। तुमसे मिलकर जाना कि जिंदगी क्या होती है, तुमसे मिलकर जाना कि जिंदगी क्या होती है, वरना वरना तो अंधेरे में भटकती हर राह सुनी होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिये में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले पहले विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। श्री शाह के दौरे के सिलसिले में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय प्रशासनिक और सुरक्षा बैठक आयोजित की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पोस्वान को पराजित किया। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और लेकर आई हूं कार्यक्रम गीत सुहाने। तो रहिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में, सुनेंगे बेहद ही मधुर गीत। शुरुआत कर रही हूं फिल्म स्वामी से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

तेरी यादें तेरी बातें बस तेरे ही फसाने हैं। तेरी यादें तेरी बातें बस तेरे ही फसाने हैं। हाँ कबूल करते हैं कि हम तेरे दीवाने।

मेरी नजर से ना देखना कभी खुद को, मेरी नजर से ना देखना कभी खुद को, उम्र गुजर जाएगी तुम्हें नजर उतरवाने में।

बंद आंखों से भी दिखता है उजाला तेरा, बंद आंखों से भी दिखता है उजाला तेरा, पर लोग कहते हैं कि ये सोए हैं, हम सोए कहाँ हैं, जागे हैं हम।

तेरी मदहोश नजरों के जादू का असर गहरा सा हुआ है, तेरी मदहोश नजरों के जादू का असर गहरा हुआ है

अभी आपने कुदरत फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत सुना। न जाने कब तेरी आदत सी लग गई, हम तो यूं ही हर रोज मिला करते थे। तूने तो कभी इजहार भी ना किया, न जाने कब हम तेरे आशिक बन गए।

तुम जमाने के हसीन नजारे देखो, हमारी आंखों को तो बस तुम्हारा दीदार चाहिए। बेशक दुनिया दीवानी है खूबसूरत नजारों की, और हमें तो बस तुम्हारा मासूम चेहरा दिखना चाहिए।

तेरी सूरत के सिवा कोई मंजर नहीं भाता है, तेरी सूरत के सिवा कोई मंजर नहीं भाता है, अब तो ख्वाबों में भी कोई दूसरा नहीं आता है। इस कदर तड़प है दिल में तुम्हें देखने की, आए ना देखूं तो उसमें भी तेरा अक्स नजर आता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिये में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जागरूकता बढ़ाने, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन मजबूत बनाने, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीसीआई ने कंबोडिया में यूपीआई भुगतान सुविधा आरंभ करने के लिए कंबोडिया के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक एसीएएलईडीए बैंक के साथ साझेदारी की है। भारत आने वाले कंबोडियाई नागरिक जल्द ही अपने घरेलू बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ऐप का इस्तेमाल कर पूरे भारत में लाखों यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे के दौरान पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।

शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो स्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 2:11 और 10 सेकंड। मैं हूं आपके साथ अंजू। समय हो और बता दिया है और आगे सफर बढ़ाते हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं रात सुरमई।

हम तो अजनबी थे, कब खास हो गए पता ही नहीं चला। ये इश्क है, बस इसे यूं ही हो जाने दो।

रूठेगी अगर तकदीर तो उसे भी मना ही लेंगे, रूठेगी अगर तकदीर तो उसे भी मना ही लेंगे, और वादा है तुमसे हर हाल में एक ना एक दिन तुम्हें हम अपना बना ही लेंगे।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यूनिंग किया है उन्हें हम बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अंजू। कार्यक्रम है रात सुरमई।

जुबान से जो न कह पाए वो नजरों का फसाना है। जुबान से जो न कह पाए वो नजरों का फसाना है। और तुम्हें ही छुपकर तुम्हें ही देखना ये इश्क का बहुत पुराना बहाना है।

रात का अंदाज कुछ मध्यम सा होने लगा है, दिल तुम्हारी यादों के समंदर में खोने लगा है। अब भी आ जाओ कि अंधेरा होने को है, तुम्हारे बिना ये दिल फिर से रोने को है।

ये जादू तो यूं ही बरकरार रहेगा क्योंकि स्टूडियो में आ चुकी हैं माधुरी हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए और जल्द ही आपसे मिलूंगी। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, ये भी आपको बताते चलें, क्योंकि माधुरी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि जल्दी से ये सीट खाली हो तो मैं बैठूं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, सुनिए समाचार, उसके बाद सुनेंगे आप 3:10 से हमराही। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राय बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल विधानसभा में रतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो स्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, "This is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers."
3: ATF price stabilization fund mein
4: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. Mr. Vaishnaw also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip to in Odisha. Prime Minister Narendra Modi has stated that yoga is gaining tremendous popularity across the world. In a social media post, the Prime Minister said, "Today he will join the first World Yoga Sena Sports Championship 2026 virtually. The championship will be held in Ahmedabad, Gujarat." Mr. Modi said, "The platform has brought together yoga enthusiasts from around the world." United Kingdom Secretary of State for Foreign Commonwealth Affairs Yvette Cooper arrived in New Delhi on a two-day official visit to India. Ms. Cooper is scheduled to call on the Prime Minister Narendra Modi today. She will also meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar this evening. The Ministry of External Affairs said her visit will provide an opportunity to further strengthen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership. In a major political development in West Bengal, Rita Pratap Banerjee has been appointed as a leader of the opposition in the West Bengal Legislative Assembly. The appointment follows the Assembly Speaker's reported recognition of a rebel group of Trinamool Congress legislators as a separate legislature party. A total of 21 people lost their lives after a fire broke out at a guest house in the Malviya Nagar area of New Delhi yesterday. Delhi police said that the deceased include 9 Indian nationals and 12 foreign nationals. The police said a case has been registered and an investigation is underway. They further informed that Lovekesh Bajaj, the owner of the building in which the fire broke out, has been detained. Meanwhile, Delhi Chief Minister's office said that the lapses that culminated in the tragic fire in the guest house will be examined with utmost seriousness and accountability will be fixed wherever it lies. The United Arab Emirates has expressed its solidarity with India following a deadly guest house fire in New Delhi that claimed several lives and left others injured. In a statement, the UAE Ministry of Foreign Affairs has conveyed its condolences to the families of the victims and reaffirmed its support for India in the aftermath of the tragedy. The newly sworn in Karnataka Chief Minister T.K. Shivakumar has announced free bus passes for all students in his first cabinet decision. Briefing the media, the Chief Minister said, students can register and obtain free passes. He also announced measures for employment generation for youth registered with employment exchanges, stating that the private sector will be encouraged to provide job opportunities. Additionally, the Chief Minister announced a grant of 2,000 crore rupees with the Greater Bangalore Authority to improve road infrastructure. National Payments Corporation of India has officially partnered with ACLEDA Bank to launch Unified Payments Interface UPI acceptance in Cambodia. The Ministry of Finance said that the first phase enables millions of Indian travellers to make seamless QR payments at over 4.5 million Cambodian merchants with a two-way corridor to follow. It said that the subsequent phases, the corridor will become fully bidirectional. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the pre-quarterfinals of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wing Hong Yang. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही का ये सफर लेके माधुरी है आज की रात आप सभी के साथ। नमस्कार।

चलो मीत चलें दिन और रात के सरहद के पार, जहां तुम रात को दिन कहो तो मैं मुस्कुरा दूं, और जहां सूरत से तुम्हारी दोस्ती रहे और चांद से मेरी नाराजगी।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। समय बता दें, रात्रि के 3:22 और हो गए हैं पूरे 15 सेकंड।

हमसे जाओ ना बचा कर आंखें, यूं गिराओ ना उठा कर आंखें, खामोशी दूर तलक फैली है, बोलिए कुछ तो उठा कर आंखें।

खुले आसमां का पता चाहते हैं, परिंदे हैं हम और क्या चाहते हैं, उड़ेंगे हवा में खुद के परों से, उड़ानों में सारी फजा चाहते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर हमराही।

0: 90.
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जब दिल किसी के प्यार में खो जाए तो फिर सच में जिया कहाँ लगता है। आवारा है गलियों में मैं और मेरी तन्हाई, जाए तो कहाँ जाए, हर मोड़ पे है रुसवाई। ये फूल से चेहरे हैं, हंसते हुए गुलदस्ते, कोई भी नहीं अपना, बेगाने हैं सब रस्ते। राहें हैं तमाशाई, राही भी तमाशाई, मैं और मेरी तन्हाई, और इस तन्हाई में ये मोहब्बत का सबब।

0: रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरे में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को चुपके से दवा मिल जाए। और इस शेर की ही तरह अगला गीत है हमारा, ये कहते सुनते कब ये रात बीत जाए, कब कोई बात बन जाए, कब कोई बात बिगड़ जाए, और कब कोई बात बिगड़ के फिर समर जाए।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए
2: सुनिए कहिए कहिए ना।

जी हाँ, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा और कहते सुनते हमराही का ये सफर भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। रंजिश ही सही, दिल को दुखाने के लिए आ आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए।

और इसी के साथ हमराही का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने

0: लिए लागू रहेगा।
1: ETF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ETF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ETF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस दुर्घटना पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और भारत सरकार और लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for the domestic and international operations. Briefing media in New Delhi Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, this is a self-sustaining revolving fund

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम अरुणिमा के साथ मैं हूं माधुरी। नमस्कार।

एक कविता की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं जो यकीनन दिल को छू लेंगी। जानती हूं जीवन मैदानों से ज्यादा विस्तृत है, हथेलियों से ज्यादा सुंदर है और धातु

उसे ज्यादा कठोर है। जीवन का अनुवाद किसी भी भाषा में सिर्फ जीवन है। जीवन विन्यास है ऋतुओं का, नदियों का, उन रास्तों का जिनसे होकर हम काम पर जाते हैं। वो मुझे प्रिय हैं, शब्दों से ज्यादा, आंसुओं से ज्यादा।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना

आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

एक और छोटी सी कविता है जिसे लिखा है नरेंद्र वर्मा ने, आप तक पहुंचा रही हूं। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 4:31 और हो गए हैं पूरे 47 सेकंड। ये सफर है अरुणिमा का।

आनंद परम की ये कुछ पंक्तियां हैं आपके लिए। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।

दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है।

और अरुणिमा के इस आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही प्यारी और जानी मानी कविता आप सभी के लिए लेकर आई हूं। सोहन लाल द्विवेदी की लिखी ये कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक

0: 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में रुकी विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में पूर्वी दक्षिण पूर्वी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि बाकी का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस दुर्घटना पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और भारत सरकार तथा लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलानबतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। 4 दिन की प्रतियोगिता में भारत की ओर से पुरुष फ्रीस्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धाओं में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
2: ATF price stabilization fund mein
3: a self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
2: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
1: The UN Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Orissa. Varanasi, the parliamentary constituency of Prime Minister Narendra Modi and one of the world's oldest living cities, is once again set to witness a historic international event. After successfully hosting G20 meetings, Varanasi will now host the second meeting of the BRICS Culture Working Group today and tomorrow. Representatives from 11 countries, including China, Brazil, Egypt, Ethiopia and Indonesia, will take part in this meeting. The meeting will bring together senior diplomats, policy makers and cultural experts. A special exhibition of Kashi's world-famous GI tagged and ODOP One District One Product products will also be organized during the meeting. Prime Minister Narendra Modi has stated that yoga is gaining tremendous popularity across the world. In a social media post, the Prime Minister said today he will join the first World Yoga Asana Sports Championship 2026 virtually. The championship will be held in Ahmedabad, Gujarat. Mr. Modi said the platform has brought together yoga enthusiasts from around the world. Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw is scheduled to arrive in Kolkata on Saturday to expedite the progress of various stalled railway projects in West Bengal. The Chief Public Relations Officer, CPRO of Eastern Railway, Shibaji Maji, informed Akashwani News that the Railway Minister will hold a high-level meeting with the state's Chief Minister Subhendu Adhikari at the Nabanna Sabhaghar. The general managers of Eastern, Southeastern, Northeast Frontier and Metro Railways will also attend the meeting. Mr. Maji stated that discussions will focus on various railway projects within the state, which is expected to further strengthen the center-state relationship regarding railway development. Furthermore, Mr. Maji mentioned that members of the Parliamentary Standing Committee on Railways are also scheduled to arrive in Kolkata on Saturday afternoon and will hold a meeting with various railway-associated organizations later that evening. United Kingdom Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Yvette Cooper, arrived in New Delhi on a two-day official visit to India. Ms. Cooper is scheduled to call on the Prime Minister Narendra Modi today. She will also meet External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar this evening. The Ministry of External Affairs said her visit will provide an opportunity to further strengthen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership. In football, hosts India have booked their place in the final of the SAFF SAF Women's Championship after defeating Bhutan 1-0 in the semi-final at Margao, Goa yesterday. Sanfida Nongrung scored the match-winning goal in the 58th minute to propel world number 69 India into their first SAF Women's Championship final in 6 years. The five-time champions India will now face defending champions Bangladesh in a title clash on Saturday at 6:30 p.m. Indian time. Bangladesh secured the third consecutive final appearance after defeating Nepal 2-1 in the other semi-final. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। रात का अंधेरा छटने लगा है, नई सुबह आने को है। आइए स्वागत करते हैं इस सुंदर सी नई सुबह का नई ऊर्जा के साथ। माधुरी का स्वीकार कीजिए, सुप्रभात।

रात चाहे कितनी भी अंधेरी या मुश्किल क्यों न रही हो, सुबह का सूरज हमेशा नई उम्मीदों के साथ उगता है। कल जो गलतियां हुई या जो काम अधूरे रह गए उन्हें भूलकर आज एक नई शुरुआत करने का दिन है। ये सोचना कि आज का दिन मेरा है, आपको भीतर से मजबूत कर देगा।

सुबह उठते ही सबसे पहले इस बात के लिए भगवान या ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें कि आपको जीवन का एक और खूबसूरत दिन मिला है। आपके पास जो कुछ भी है

परिवार, रहने के लिए घर, सेहत, सांसें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें। कृतज्ञ रहने से मन में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक चीजें जो हैं वो हमारी ओर बढ़ती हैं।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है भोर सुहानी का। आपको पता है आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं। सुबह खुद से कहें कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं सक्षम हूं और मैं आज के दिन के हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर कर सकता हूं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं ना, तो मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं और मुश्किलें भी आपके लिए आसानियां बन जाती हैं।